मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 जुलाई 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56:40 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम विब 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर 6 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।
2: अब जैसे जालंधर है, यहाँ की पहचान खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तख्त श्री केशगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारी संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

0: बैतोली अंबाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देवभव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंचे। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिसे सिंधु को वॉकओवर मिल गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ,
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे?
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूँ।
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
3: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ, 8700014242।

0: 2-4-2 पर।
1: श्रोताओं, आइए करते हैं इस खूबसूरत सी सुबह की शुरुआत रोज की ही तरह भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना के साथ। जब मन में सच्ची श्रद्धा, भक्ति और समर्पण हो तो मन के भाव जो हैं वो पवित्र हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में ईश्वर का कीर्तन भजन मन को असीम शांति, प्रसन्नता और संतोष देता है।

ये संसार हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखता है। कहते हैं हम जैसा करते हैं, जैसा भाव रखते हैं, ठीक वैसे ही हमें फल की प्राप्ति होती है। कभी अच्छा समय, कभी खराब समय, ये सभी हमारे जीवन में आते रहते हैं। पर यदि हम ईश्वर में आस्था बनाए रखें और सत्मार्ग पर चलें, तो हरि हमारी सब बाधा हर लेते हैं। और ज़रूरत होती है तो बस सच्चे मन से पुकार की।

ये संसार क्षणभंगुर है और ये शरीर नश्वर, तो फिर इस पर कैसा अहंकार। जीवन के उद्देश्य को समझें और कर्म करते चलें, फल की इच्छा ना करें।

0: इस भक्ति संगीत रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, विचार बिंदु। आज सुनिए सरोजनी नायडू के विचार।
1: मुझे जिसके हाथों ने पालना झुलाया है, जिसके कंठ ने मधुर लोरियां गाई हैं, मैं जो भारत माता का प्रतीक हूं, मुझको अब ये दायित्व तो सौंपा गया है कि मैं स्वाधीनता की अग्निशिखा उज्ज्वलित करूं। मैं तो स्त्री हूं और मेरी एक साधारण सी घरेलू योजना है, एक साधारण सी परिकल्पना है, वो ये कि भारत माता को उसके घर में सर्वोच्च स्वामिनी का गरिमापूर्ण उचित स्थान दिलवा सकूं। वो स्वयं ही बने अपने साधनों की भाग्य विधाता और अपने अतिथियों के सम्मान सत्कार का निर्णय भी उसका अपना हो। भारत माता की निष्ठावान पुत्री होने के नाते अगले वर्ष में मेरा काम यही होगा कि मैं अपनी माँ का घर व्यवस्थित कर सकूं। अनेक धर्मों, संप्रदायों और समुदायों के जो दुखदायी झगड़े इस संयुक्त परिवार की जड़ें हिला रहे हैं, उसके लिए संकट बन रहे हैं, उन झगड़ों को सुलझा सकूं और उसके

0: हीन से हीन और महान से महान बच्चे के लिए, घर की सीमा के भीतर हर अतिथि के लिए, हर अपरिचित आगंतुक तक के लिए उचित स्थान, उचित लक्ष्य, उचित प्रयोजन निश्चित कर सकूं। ये उद्गार थे भारत माता की समर्थ बेटी सरोजनी नायडू के, जब सन 1925 में कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन में वे कांग्रेस की सभापति के रूप में भाग ले रही थीं। बंगला और उर्दू के कवि तथा प्रतिभाशाली वैज्ञानिक पिता डॉ. अघोरनाथ चटर्जी तथा बंगला में मधुर गीतों की संरचना करने वाली स्नेहमयी माँ की बेटी सरोजनी का बचपन ऐसे परिवार में बीता था जो पिता के वत्सल हास्य तथा माता के ममतामय गीतों में गूंजता रहा। हैदराबाद की मिलीजुली संस्कृति का परिवेश, घर में बंगला, हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु भाषाओं का प्रयोग, कला से प्रेम, विद्या के प्रति गहरा लगाव और जीवन को आनंद पूर्वक जीने का उत्साह, परिणाम स्वरूप बालिका सरोजनी ने मात्र 12 वर्ष की आयु में ही मद्रास प्रांत से मैट्रिक परीक्षा में सर्वप्रथम स्थान पाया। दुर्भाग्यवश इसके बाद ही उनका स्वास्थ्य इतना खराब होने लगा कि उन्होंने अध्ययन तो खूब किया, ज्ञानार्जन भी बहुत किया, किंतु आगे कोई परीक्षा नहीं दे सकी। 11 वर्ष की अल्पायु से ही वे कविताएं रचने लगी थीं। कालांतर में वे द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द वर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग आदि पुस्तकों के रूप में प्रकाशित भी हुई और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है, किंतु काव्य की कोमलता के साथ साथ उनके स्वर में जुझारू योद्धा की ललकार भी थी। उनके शब्दों में जादू था। बड़ी बड़ी सभाएं हों या छोटी गोष्ठियां, वे नारी जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा निरंतर देती रहती। एक ओर दुर्बल स्वास्थ्य, दूसरी ओर विस्मयकारी कर्मठता और अथक परिश्रम लोगों को अचरज में डाल देता। वे एक कोमल नारी, चमत्कृत कर देने वाली वक्ता, एक प्रतिभाशाली लेखिका, एक जिंदा दिल इंसान, एक अथक समाज सेविका और एक समर्पित देशभक्त थीं। स्वाधीनता संग्राम के दौरान नमक सत्याग्रह के दिनों की बात है। धरसाना क्षेत्र में वे सत्याग्रहियों के जत्थे का नेतृत्व कर रही थीं। ऊपर आग बरसाता सूरज, नीचे तपती बालू, उनके जत्थे को पुलिस ने घेर रखा था। उन तक न खाना पहुंचाया जा सकता था, न पानी। प्यास से तड़पते सत्याग्रहियों के बीच पुलिस ये सोचकर पानी की गाड़ियां खींच कर ले गई कि वे लोग जरूर पानी के लिए गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन न पानी की एक बूंद भी मांगने के लिए कोई आवाज उठी, न कोई हाथ आगे बढ़ा, क्योंकि उनकी नेता ने उनसे पहले ही कह रखा था, गांधी जी का शरीर जेल में है, किंतु उनकी आत्मा आप लोगों के साथ है। देश की आन, उसकी प्रतिष्ठा आपके हाथों में है। कुछ भी क्यों ना हो, आप लोगों की ओर से हिंसा का प्रयोग ना होने पाए। आप पर मार पड़ेगी, अत्याचार होंगे, पर कोई हाथ ना उठे, चोट से बचने के लिए भी नहीं, और उनके सामने झुकना तो हरगिज नहीं है।
1: विचार बिंदु में भी आप सुन रहे थे श्रीमती सरोजनी नायडू के विचार। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुने श्रीमती प्रतिभा पांडे से प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत। विषय है वर्षा ऋतु में मधुमक्खियों की देखभाल।
1: किसान भाई, हम कहीं देखा फसल उत्पादन के साथे साथे हमारे बहुत से किसान भाई हैं मौन पालन भी कर रहे थे। मौन पालन करे वाले किसान भाई वर्षा ऋतु में अपन किस तरह से ओकर देखभाल करें कि उनका जो मौन पालन के व्यवसाय बाटे वो अच्छा से कर सकें। एक बिना जानकारी दे के खातिर आज हमारे बीच में हैं जिला उद्यान अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पांडे जी। आप विषय के जानकार हैं तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बाटे। तो हमारे किसान भाई के बताओ

0: कि जो मौन पालन बाटे खास करके जो वर्षा ऋतु बाटे कैसे करें।
1: नमस्कार किसान भाइयों, किसान भाइयों, वर्षा ऋतु में जो मधुमक्खियां हैं उनके जो छत्ते होते हैं, उनके जो डिब्बे होते हैं, उनमें कई प्रकार के कीटों जैसे चींटियों, छिपकलियों, बर, ततैया और मोमी पतंगा, गिरगिट, ड्रैगन फ्लाई, मेढकों, इन सब का प्रकोप बढ़ जाता है। ये जो आपके जो मधुमक्खी के जो बॉक्स होते हैं, जो बक्से होते हैं, उन पे ये अटैक करते हैं और जो उत्पादन है शहद का उसको ये प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं नॉर्मल रूप से देखा जाए तो वो हैं चींटियाँ। ये चींटियाँ जो आपके जो बक्स मधुमक्खी के जो बॉक्स होते हैं, बक्से होते हैं, इनका जो पैर होता है, स्टैंड होता है, इसके माध्यम से चढ़ करके ये आपके मधुमक्खी के बक्सों में प्रवेश कर जाती हैं और फिर वहाँ पर ये जो शहद होता है उसको तो वो चूसती ही हैं, साथ में शहद बनाने वाली मधुमक्खियों को भी नुकसान करती हैं। तो किसान भाइयों, इनसे बचाव के लिए सबसे बड़ा जो आसान सा उपाय है वो ये है कि आपके जो मधुमक्खी के बक्से हैं उनको बढ़िया, उनका जो स्टैंड है, जो पैर है, उसमें आप एक चींटी अवरोधक प्याली ज़रूर रखें और उसमें आप पानी भरें। इसकी वजह से जो चींटियां हैं वो उस स्टैंड के माध्यम से आपके जो मधुमक्खी के बक्से हैं उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगी और जब प्रवेश नहीं कर पाएंगी तो आपके छत्ते वो सुरक्षित बचे रहेंगे। और इन जो चींटी अवरोधक प्याली है उसमें का जो पानी है वो आप उसको प्रतिदिन बदलते रहिए। और किसान भाइयों, जो दूसरा कीट जो नुकसान पहुंचाता है आपके मधुमक्खियों को और छत्तों को वो है पतंगा। ये मधुमक्खी के जो बॉक्स होते हैं उनमें प्रवेश करके और ये मधुमक्खियों पे ना अटैक करके जो छत्ते होते हैं उनको अटैक करता है, उन पर ये उनको खाता है जो छत्ते होते हैं और एक तरह से ये सुरंग बनाता है उन छत्तों में और फिर उनकी जो मेन जो स्ट्रक्चर होता है उनको वो नष्ट कर देता है छत्तों को। तो इस तरह से ये जब छत्तों को नष्ट कर देता है तो उसमें काम कर पाना मधुमक्खी के लिए मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से ये जो पतंगा है ये भी नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए किसान भाइयों, आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपने जो छत्ते हैं उनकी निरंतर साफ़ सफाई रखें और देखें कि उसमें दरारें ना पड़ने पाएँ, और अगर छत्तों में दरारें पड़ गई हैं तो उनको आप वरूदा तथा फेविकोल से उसको उन दरारों को भर दें तो आपको काफ़ी हद तक ये जो पतंगा है इससे राहत मिलेगी। और मेन चीज़ ये है कि आप ये देखें कि आपका जो मधुमक्खी का बक्सा है उसमें कहीं से कोई छेद ना हो, क्योंकि अगर कहीं से आप बक्सा मजबूत ले आएं, क्योंकि अगर कहीं से भी छिद्रयुक्त बक्सा हुआ तो उस छिद्र के माध्यम से ये सभी कीट पतंगे उसके अंदर आसानी से प्रवेश कर जाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जो भी बक्सा लाएं वो मजबूत ले आएं। और ये जो पतंगा की अभी मैं आपको बता रही थी किसान भाइयों, तो उसमें यही होता है कि जो पतंगा है ये प्रवेश ना करने पाए और ये आप देखते हैं कि मधुमक्खी नहीं है आपके बक्से में, खाली फ्रेम पड़े हुए हैं, तो भी वो उसमें से बड़ी आसानी से ये पतंगा उन जो फ्रेमों के जो छत्ते हैं उनमें सुरंग बना करके उनको नष्ट करता है। उसके लिए आप ये देखें कि अगर आपके पास खाली फ्रेम पड़े हुए हैं तो आप उनको सबको उठा करके जो बड़ी पॉलीथीन आती है उसमें लपेट करके रख दें और कोशिश करें कि उन पॉलीथीन में रखे हुए उन फ्रेमों को आप एक ड्रम में रखें और उसको एयर टाइट करके रखें ताकि उसमें कोई मॉइस्चर की संभावना ना रहे, उसे सुरक्षित उसमें पड़ा रहे। इसके अलावा आप उसमें गंधक का धुआं भी दे सकते हैं तो इससे भी जो ये कीट पतंगे हैं, पतंगे वगैरह, ये सब उसमें फटकने नहीं पाते। और किसान भाइयों, एक अन्य जो कीट है वो है बर्माइट। ये इसकी ये विशेषता होती है कि ये जो नर मधुमक्खी होती है उसके ऊपर चढ़ करके और उसके ऊपर घूमती रहती है, तो जिसके वजह से जो अंदर की जो कार्य प्रणाली है उसको ये प्रभावित करती है और जो नई मधुमक्खियाँ होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। और इससे बचाव के लिए ये है कि आप एक जो थाइमोल दवा आती है जो कि शुष्क ठोस पदार्थ है और ये गंधहीन होता है, और इसका 1 ग्राम

0: आप बक्से के अंदर डाल दें तो ये जो बर्माइट कीट है इससे बचाव हो जाएगा। और अन्य जो कीट है किसान भाइयों वो है ततैया, जिसे आप साधारण भाषा में बर्र या बर्रे कहते हैं, और इसका भी प्रकोप जो होता है वो मधुमक्खी के बक्सों में वो जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच तक होता है। इस बर्र का या ततैया का ये काम होता है कि जो भी मधुमक्खी अपने बक्से से बाहर निकलने का प्रयास करती है उस पर ये अटैक कर देता है, या जो मधुमक्खी बाहर निकलकर फूलों से रस चूस रही है उस पर ये अटैक करके उसको मधुमक्खियों को नष्ट कर देता है। और तो इस प्रकार ये उसकी काफ़ी मात्रा में जो बर्र है वो मधुमक्खियों की संख्या कम कर देता है, और जब मधुमक्खियों की संख्या कम हो जाती है तो अंदर का जो कार्य प्रणाली है वो प्रभावित होती है और मधु उत्पादन पे भी उसका असर पड़ता है। तो सबसे आसान उपाय ये है किसान भाइयों कि अगर आप देख रहे हैं कि आपके जहाँ मधुमक्खी के डिब्बे बॉक्सेस वगैरह रखे हैं उसके आसपास जो बर्र है उनका अगर ये अपना छत्ता वगैरह बना रहे हों तो उनको आप नष्ट कर दीजिए, और एक पिंजरा आता है बर्रों को पकड़ने वाला उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक अन्य जो चीज़ है जीव है जो वो है चिड़िया, एक पक्षी है जिसे साधारण भाषा में चिड़िया कहते हैं। और किसान भाइयों आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ मधुमक्खी के डिब्बे होते हैं उनके आसपास के जो पेड़ होते हैं उनमें ये बैठी मिलती है, या फिर आसपास के जो तार होते हैं उस पर ये बैठी मिलती है, और इसकी पूंछ काफ़ी लंबी होती है और काले रंग की होती है। ये जो चिड़िया होती है ये मधुमक्खियों को नष्ट करती है, इसके लिए भी आप पूरा प्रयास करिए कि आपके जो बक्से हैं उनके आसपास भी ये फटकने ना पाएं।
1: इसमें कौन कौन से रोग बीमारी बाटे, अगर कुछ रोग बीमारी लग जाते तो कर किसान भाई अपन मधुमक्खी पालन करत तो उसे कैसे निजात पाऊँ?
0: मधुमक्खी के कई रोग हैं, उनमें है एक है एक्रीन रोग जिसको कहते हैं। यह रोग एक प्रकार का सूक्ष्म आंतरिक परजीवी एक्रैपिस के कारण होता है जो कमेरी एवं रानी मधुमक्खी की श्वास नली में घुसकर शरीर से खून चूसकर अपना भोजन लेती है। और एक्रीन रोग से प्रभावित मधुमक्खियां जो होती हैं वो मौन ग्रह के द्वार पर रेंगती हुई सी चलती हैं। अगर आपको ये दिखाई दे कि मधुमक्खियां मौन ग्रह का जो द्वार है उस पर रेंगती हुई सी चल रही हैं, उनकी जो चाल है थोड़ी एबनॉर्मल है, तो आप समझ लीजिए कि वो एक्रीन रोग से ग्रसित हैं। और ये आप किसान भाइयों ये ध्यान रखें कि जो रोगग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें मधुमक्खियों का माइग्रेशन ना करें, और क्योंकि सावधानी ही बचाव है, इस मंत्र का भी आप प्रयोग अवश्य करें। और रोगी मधुमक्खी के अंडे एवं लार्वा वाले छत्ते स्वस्थ मधुमक्खियों को ना दें, मधुमक्खियों को शक्तिशाली बनाए रखें, और मौन ग्रह में लूट एवं लड़ाई ना होने दें। जैसे आपस में मधुमक्खियां लड़ जाती हैं तो इस तरह का आप देखें कि ये चीज़ ना होने पाए। रोगी मधुमक्खियों को स्वस्थ मधुमक्खियों से ना मिलाएं, और माइट से प्रभावित मधुमक्खियों का उपचार जो है वो आप अवश्य करें। उसमें आप ये करें किसान भाइयों कि जो प्रभावित मधुमक्खियां हैं उनके ऊपर सल्फर पाउडर 200 मिलीग्राम प्रति फ्रेम की दर से साप्ताहिक अंतराल पर 4 बार बुरकाव यानी छिड़काव आप कर दें, और 2-3 ग्राम तंबाकू की पत्ती का धुआं सप्ताह में 2 बार करें।
1: किसान भाई तो निश्चय रूप से सब बातन के ध्यान रखें, तो जो भी किसान मौन पालन करता है उनका निश्चय रूप से बढ़िया लाभ मिले। जानकारी दे के खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई अभी सुन रहे थे श्रीमती प्रतिभा पांडे से प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत। वर्षा ऋतु में मधुमक्खियों की देखभाल

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर मोनिका अग्रवाल की वार्ता, सर्दी जुकाम का आयुर्वेदिक उपचार।
1: मौसम में जरा सा भी बदलाव होने पर सर्दी खांसी जैसी बीमारी हमें जकड़ लेती है। सर्दी होने से हमारा नाक गला सब बंद हो जाते हैं, हमें सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। कई बार सर्दी ठीक भी हो जाती है तो खांसी लंबे समय तक तंग करती रहती है, और ये सूखी खांसी भी होती है, और ऐसा एहसास होता है कि हमारे गले में कुछ अटक सा गया है। खांसने के बावजूद भी

0: नहीं रहा है। हम बात करेंगे कि ये सूखी खांसी के बारे में और सर्दी जुकाम के बारे में कि कैसे इन सब से निजात पाएं, इन सब के कारण क्या होते हैं। नाक और गले की एलर्जी है अगर किसी तरीके से आपको, या फिर अस्थमा या टीबी जैसे सांस की बीमारियां हैं तो वो भी एक वजह बनती है। सर्दी फ्लू या किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन से भी हो जाता है, या फिर हाई बीपी के इलाज के लिए खाई गई दवाएं खाने से भी आपको कभी कभी सूखी खांसी आने लगती है, और बहुत बलगम बनने के कारण भी खांसी आती है। इसमें हम कुछ आयुर्वेदिक उपचार कर सकते हैं जो बड़ा इजी है कि जब मौसम बदले तो उसमें इन सब चीज़ों का सेवन करने से हम सर्दी जुकाम खांसी से बच सकते हैं। जैसे जो शहद होती है उसमें कई एंजाइम ऐसे पाए जाते हैं जो खांसी वगैरह से राहत देते हैं। अगर हम शुद्ध शहद को 1 चम्मच दिन में 3 बार का सेवन करें तो इससे भी हम इससे निजात पा सकते हैं। गर्म पानी में नमक मिला के इसका गरारा करना चाहिए। काली मिर्च सब जानते होंगे, काली मिर्च पीस कर और घी में भून लें, और उसको क्या करें, थोड़ा थोड़ा 1/4 चम्मच से भी थोड़ा कम सुबह शाम लेने से, शहद के साथ भी ले सकते हैं और ऐसे आप हल्के गर्म पानी से भी ले सकते हैं, इससे आपको आराम मिलता है। त्रिकटू, त्रिकटू चूर्ण बोलते हैं, इसमें सौंठ, मरीच, काली मरीच और पिपली होता है। इसको अगर हम चाय में डाल के पिए तो भी इसमें आराम मिल जाता है। तुलसी का काढ़ा बनाना चाहिए। छोटी पिपली आती है, उसको अगर हम घी में भून के पीस के 1/4 चम्मच का सेवन करें तो इससे भी आराम मिल जाता है। तुलसी के पत्ते को पीस कर अदरक और शहद मिलाकर चाटने से भी हमें सर्दी जुकाम खांसी नहीं होती है। अदरक को पानी में अच्छी तरीके से उबाल कर उसमें 2 चम्मच शहद मिला के सेवन करने से भी हम सर्दी जुकाम खांसी से बच सकते हैं। हल्दी को पानी में उबाल के उसमें 1 चम्मच काली मिर्च और थोड़ा सा दालचीनी डाल के उबाल लें और फिर उसको पिएं, इससे भी हम सर्दी जुकाम खांसी से बच सकते हैं। नींबू बहुत फायदेमंद है। 2 चम्मच नींबू के रस में 1 चम्मच शहद डाल के दिन में 4 बार लेने से गले की खराश दूर हो जाती है। लहसुन हमारे किचन में पाया जाता है। लहसुन एक एंटीबैक्टीरियल पदार्थ है, गले की खांसी को तुरंत ही गायब करने में मदद करती है। 1 कप में 2-3 लहसुन की कलियों को उबालें और हल्का ठंडा होने पर शहद मिलाकर इसको लेना चाहिए, या फिर 1/2 चम्मच प्याज के रस में 1 छोटा चम्मच शहद मिक्स कर लें और दिन में 2 बार लें, और इसके बाद भी ना ठीक हो तो आप चिकित्सक से संपर्क कर लीजिए। इसमें नस्य बहुत इफेक्टिव होता है। अड़ू तेल आता है मार्केट में, हर जगह अवेलेबल हो जाता है। ये 4-4 बूंद सुबह शाम खाली पेट इसको नाक में डालने से, नस्य नामी है, नाक में डालने से और इसके से नस्य करने से आपको सर्दी जुकाम में जो सर दर्द हो जाता है उससे राहत मिलती है। पीनस आपने सुना होगा, इसको पुराना जुकाम को कहते हैं। इसमें नाक से पानी बहने लगता है। इसमें भी अड़ू तेल का नस्य बहुत इफेक्टिव होता है, जिसे शिरोविरेचन भी कहते हैं। सरसों के तेल में कपूर डाल के सूंघने से सर्दी जुकाम के कारण सिर दर्द जो होता है बहुत राहत मिलती है। धूपन चिकित्सा होती है। इसमें अगर आप एक कपड़े को हल्दी और तेल का पेस्ट बना के उसमें डिप करके और फिर उससे थोड़ा धुआं लें दोनों नाक में, तो बंद नाक तुरंत खुल जाते हैं। और कुछ पौष्टिक आहार का भी सेवन करना चाहिए, जैसे विटामिन सी और विटामिन ए वाले पदार्थ, जैसे आंवला, मौसमी, संतरा, नींबू, अमरूद, अनार। इन सब में होता क्या है कि जो विटामिन सी और ए होते हैं, इसमें सफेद रक्त कणों में इनके सेवन से वृद्धि होती है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं और साथ में रिच एंटीबायोटिक बन जाते हैं, जिसकी वजह से सर्दी जुकाम खांसी में हमें आराम मिलता है। इन छोटे छोटे आयुर्वेदिक उपायों को अपना कर हम सर्दी जुकाम खांसी से बच सकते हैं।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मोनिका अग्रवाल की वार्ता, सर्दी जुकाम का आयुर्वेदिक उपचार। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, ये जानकारी दे दें हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की।

रात 9:30 पर पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती और 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुनिएगा 7 बजे से, फिल्मों से भजन 7:10 पर।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे सुबह 7:30 पर संदीप चक्रवर्ती का संतूर वादन और दोपहर 12:15 पर श्री राम शंकर का ख्याल गायन होगा। नमस्कार प्रयागराज का समय होगा 8:45। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 9:11:30 पर और रात 8:00।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर दिलशाद अहमद से और शाम 7:45 पर दिव्या श्रीवास्तव से भजन और गीत सुनिएगा। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकमाधुरी में 10:05 पर कलाकार होंगे पन्ना लाल यादव, श्रीकांत वैश्य और दोपहर 2:30 पर कल्पनाथ, जगदीश यादव और संगम लाल यादव और साथियों से आप लोकगीत सुन सकते हैं। शाम 5:00 धरती के गीत कार्यक्रम में अनीता राय से लोकगीत सुनिएगा।

सुबह 10:30 पर सुनेगा हमारे संग्रहालय से। आज इसमें सुनिएगा प्रयागराज के सुप्रसिद्ध साहित्यकार जगदीश गुप्त से श्री अजामल जी की भेंट वार्ता। 11 बजे कार्यक्रम एक ही कलाकार से। अपने फोन कॉल्स पर आधारित अपनी पसंद के फिल्मी गाने सुनिएगा कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। प्रस्तुति होगी मधु कुमार की 12:30 पर। 15:15 ग्रामीण अंचल की बहनें सुनेंगी स्मृति गुप्ता की बातचीत संयुक्त परिवार बनाम एकल परिवार, साथ ही जूही मिश्रा से लोकगीत।

युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी होगा 5:15 पर, 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे परिवार कल्याण की बात के अंतर्गत डॉक्टर आशुतोष से की गई बातचीत। विषय होगा बारिश के मौसम में नाक कान और गले में होने वाली आम समस्याएं और उनका निदान। साथ ही जगदीश यादव और साथियों से लोकगीत। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर बसंत कुमार त्रिपाठी की वार्ता जन कवि नागार्जुन की रचनाओं में सामाजिक चेतना। और 8:30 पर सबरस कार्यक्रम होगा।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर। थोड़ी देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः सायंकाले पंजाबस्य जालंधर नगरात् आभासीय माध्यमेन देशस्य 20 राज्येषु पुनर्विकसितानां 75 रेलस्थानकानां उद्घाटनम् अकरोत्। एतेषां स्थानकानां अमृत भारत स्थानक योजनायाः अन्तर्गतं आधुनिकीकरणं जातम्। एषा योजना विश्वस्य बृहत्तमासु स्थानक पुनर्विकास योजनासु अन्यतमा अस्ति। प्रायः 70.5 लाख कोटि रूप्यकाणां व्ययेन विकसितानि एतानि स्थानकानि यात्रिसौविध्यैः समलंकृतानि सन्ति। पुनर्विकसितेषु स्थानकेषु पंजाबस्य जालंधर कैंट SAS नगरम, श्री मुक्तसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब इत्येतेषां स्थानकानां समावेशः अस्ति। तद् अतिरिक्तं

0: गुजरात ओडिशा दक्षिण रेल क्षेत्राणाम् अनेकानि स्थानकानि अपि अत्र सम्मिलितानि सन्ति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री करटोली अम्बाला रेल सेवां अमृतसर वाराणसी संत रविदास एक्सप्रेस चेत्येताभ्यां हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। ह्यः जालंधरे प्रधानमंत्रिणा लोकार्पितानि राष्ट्राय समर्पितानि च एतानि पुनर्विकसितानि स्थानकानि एते द्वे रेलसेवे च रेलमार्गावसंरचना परियोजनानां भागाः सन्ति। एतासां परियोजनानां व्ययः 70.4 लाख करोड़ रुपयाधिकः अस्ति। अवसरेस्मिन् प्रधानमंत्री अवदत् यत् 75 पुनर्विकसित रेलस्थानकानाम् उद्घाटनं भारतीय रेल विभागस्य विगतेषु कतिपय वर्षेषु अभवत्, तीव्र परिवर्तनस्य द्योतकं च अस्ति।
1: केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना, और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: पूर्वाह्ने एव प्रधानमंत्री हरियाणा राज्यस्य जिंद रेल स्थानकात् भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन इत्यनेन चालित रेलयानाय अपि हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। एतत् रेलयानं जिंद सोनीपत रेलस्थानकयोः मध्ये संचरिष्यति, अथ 91 किलोमीटर मिता दूरता प्रायः द्विहोरायां पूर्णं करिष्यति। वाणिज्य उद्योगमंत्री पीयूष गोयलः ह्यः एस्टोनिया देशस्य राजधान्यां ताल्लिन नगरे तत्रत्य विदेशमंत्रिणा मार्गुत साह्यकना इत्यनेन सह मेलनं विहितवान्। उभाभ्याम नेतृभ्याम भारत एस्टोनिया देशयोः मध्ये व्यापार निवेश अंकिकीय परिवर्तन साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी चेत्येषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य सुदृढीकरण विषये विचार विमर्शः कृतः। अनन्तरं साक्यकना इत्यस्य उपस्थितौ मन्त्रिणा भारत एस्टोनिया व्यापार मञ्चम् अपि अभिसंबोधितम्। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः गतरात्रौ पश्चिमबङ्गालराज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां सिलिगुडी इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। सिलिगुडीनगरस्य बागडोगरा विमानस्थानके आगमनावधौ पश्चिमबङ्गालस्य मुख्यमन्त्रिणा सुवेन्दु अधिकारिणा तस्य स्वागतं विहितम्। श्रीशाहः अद्य जुमागाछ नगरस्य सीमाचौकी इत्यत्र VSF इत्यस्य 18वां बटालियन् इत्यस्य भ्रमणं करिष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीय क्रीडिका तथा द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधुः अद्य प्रातः टोक्यो नगरे जापान ओपन क्रीडायाः महिला एकलस्य उपांत्य चक्रीय स्पर्धायां चीन देशस्य चेन युफेई सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

जगत के समस्त जीव मनह रोग से ग्रस्त हैं। काकभूषुंड कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, सभी जीव हर्ष

विषाद, भय, प्रीति और वियोग के दुख से दुखी हैं। ये रोग सबको व्याप्त हैं, किंतु इनकी प्रतीति विरलों को ही होती है। विषय वासना के रूप में यह रोग मुनियों के हृदय में भी उपजते हैं। इनके निदान के लिए एकमात्र संजीवनी जड़ी है भक्ति, किंतु इस औषधि के लिए आवश्यकता होती है एक साधन की, और वो साधन है श्रद्धा युक्त सुबुद्धि। इस उपचार से ये रोग मिट जाएं

इस औषधि के लिए आवश्यकता होती है एक साधन की, और वो साधन है श्रद्धा युक्त सुबुद्धि। इस उपचार से ये रोग मिट जाएं तो मिट जाएं, अन्यथा करोड़ों उपाय करके भी मन रोगों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। मन के स्वस्थ होने से आत्मिक बल बढ़ता है और उसके फलस्वरूप माया मोह से विराग उत्पन्न होता है, जिसकी परिणति प्रभु प्रेम में होती है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। स्वर था हरिहरन का और संगीत था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्मों से भजन। पहला भजन हमने लिया है फिल्म दो आंखें बारह हाथ से। आवाज है लता मंगेशकर की।

अजीज नजान और कंचन की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म रफू चक्कर का ये भजन। गीत लिखा था गुलशन बावरा ने और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को किया रवाना। जालंधर से प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन की सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए कर रही है काम। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की दुकानें बंद रखने के दिए निर्देश। और प्रदेश में आज से मानसून के और सक्रिय होने का अनुमान। अगले 4 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण

0: महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ भारतीय रेल के इतिहास में बड़ा कदम है।
1: भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: इसके बाद प्रधानमंत्री ने पंजाब के जालंधर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1,570 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों में पुनर्विकसित 75 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इनमें लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन सहित पनकी धाम, विंध्याचल, फतेहपुर, शामली, मोदीनगर और धामपुर रेलवे स्टेशन शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अमृतसर वाराणसी रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। इस सेवा से भारत के दो सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री के ग्रीन ग्रोथ के संकल्प को नई गति देने के साथ ही विकसित भारत की यात्रा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बिजनौर में 1,003 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिजनौर की बेटियों को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें 100% रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही मिलेंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है।
2: आपने डबल इंजन सरकार के कार्य को पिछले 10 वर्ष के अंदर देखा है। आपने देखा होगा पहली बार हो रहा है विकास और समृद्धि का लाभ कैसे मिलता है। डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने आने के तत्काल बाद सबसे पहले काम किया था अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का कार्यक्रम, कृषक दुर्घटना बीमा योजना, भेदभाव कोई नहीं, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शामली के कैराना में 581 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 89 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने शामली और कैराना के बदलाव को रेखांकित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार के सुरक्षा मॉडल, एक्सप्रेसवे की रफ्तार और गन्ने की मिठास से यह क्षेत्र देश दुनिया में चमक रहा है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश का पहला एकीकृत निजी टेक्सटाइल पार्क शामली में बनने जा रहा है, जिससे 8,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा।
2: प्रदेश का पहला एकीकृत निजी टेक्सटाइल पार्क यहीं पे बनने जा रहा है और बहनों भाइयों 8,000 नौजवानों को उसमें सीधे सीधे नौकरी और रोजगार प्राप्त होगा। कि ये कार्य इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि आपका समर्थन हमारी सबसे बड़ी आज की ताकत है।
0: मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद में भी 868 करोड़ रुपए लागत की 90 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गाजियाबाद में जिला प्रशासन तथा मेरठ और सहारनपुर मंडल के पुलिस अधिकारियों के साथ आगामी श्रावण मास की कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी विभाग अपनी तैयारियां पूरी कर लें और पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्री योगी ने सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों से अफवाह फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई तथा अफवाहों का समय पर प्रभावी खंडन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से की जाए तथा सुरक्षा और स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम रहें। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण और सिंचाई विभाग को यात्रा मार्ग गड्ढा मुक्त करने तथा साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कांवड़ शिविरों में पेयजल, शौचालय, बिजली, स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई और सात्विक भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की दुकानें बंद रखने तथा डीजे

0: की आवाज और कावड़ की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से अरुण।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। भारत और यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत उत्तर प्रदेश से यूनाइटेड किंगडम के लिए ताजा चौसा आमों की पहली खेप निर्यात को कल लखनऊ से रवाना किया गया। प्रदेश के उद्यान और कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक फ्लैग ऑफ समारोह में इस खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस खेप में 12 क्विंटल चौसा आमों को यूनाइटेड किंगडम भेजा गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों की पहुंच अब विदेशी बाजारों तक हो गई है।
2: योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तरोत्तर राज्य की उपज को दुनिया की बाजारों तक पहुंचा करके किसानों का मूल्य संवर्धन किया जा रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि राज्य के किसानों की आमदनी दोगुनी की जाए। इस दृष्टि से भी उत्तरोत्तर हमारे उद्यान विभाग के द्वारा आम के साथ साथ अनेक फसलों को दुनिया की बाजारों तक पहुँचाया जा रहा है।
1: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज का 21वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को 26 पदक प्रदान किए गए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि बेटियां नए भारत में नारी शक्ति का प्रतीक बन रही हैं।
3: यह सुखद है कि हमारी बेटियां निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। यह नए भारत की नई तस्वीर जहां नारी शक्ति भागीदार नहीं बल्कि नेतृत्व का प्रतीक बन रही। मैं सभी पदक विजेताओं उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों और उनके टीचर्स को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।
1: प्रदेश में आज से मानसून के और सक्रिय होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं कुछ जिलों में कल देर रात से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। गोरखपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को किया रवाना। जालंधर से प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन की सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए कर रही है काम। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की दुकानें बंद रखने के दिए निर्देश। और प्रदेश में आज से मानसून के और सक्रिय होने का अनुमान। अगले 4 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इसमें सुनिए श्री संदीप चक्रवर्ती का संतूर वादन, राग है चारुकेशी। तबले पर संगत की है श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री संदीप चक्रवर्ती का संतूर वादन, राग था चारुकेशी। तबले पर संगत की थी श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव ने। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के

0: सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
1: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया।

0: राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
1: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से यह कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को
3: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
1: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
4: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है, और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था, बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाया।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंची।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज

0: है। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
1: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या ये है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने SIR से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, SIR में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में PV सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम संजय मट्टू। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off 2 new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. In Japan Open Badminton, PV Sindhu faces Chen Yufei of China in semi-final of women's singles in Tokyo, and in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi, Vikas Bhi, the stations incorporate elements reflecting local culture, heritage and architecture. On the occasion, Mr. Modi flagged off the Kartoli-Ambala train service, which will improve connectivity across Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. He also flagged off the Sant Ravidas Express between Amritsar and Varanasi, establishing a direct rail link between two of India's most revered spiritual and cultural centres.

0: deliver internationally recognized learning opportunities, these workshops will equip participants with the latest coaching methodologies, technical knowledge, and officiating standards. The initiative aims to enhance the knowledge and skill of coaches and technical officials while promoting structured hockey education across India. The India Meteorological Department has issued red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Sanjay. Prime Minister Narendra Modi's visit to Haryana and Punjab are prominently noticed on the front pages of all national dailies. On his visit to Jind in Haryana, the statesman notes, PM launches India's first hydrogen train. Highlighting his visit to Punjab, the front page lead in the Tribune states, PM slams AAP over law and order, graft, attack on Akalis, signals solo poll run. The Times of India's front page lead quotes the Supreme Court as saying, Election Commission can delete doubtful voters, can't decide citizenship. The Hindustan Times carries a story on the Joint Parliamentary Committee reviewing the bill to automatically remove ministers, chief ministers and prime ministers arrested for over 30 days. The paper writes, Parliamentary panel on PM, CM's removal bill defers draft report. Drawing attention to possible plans to introduce plastic currency in India, the Times of India reports, in step towards plastic notes, RBI floats expression of interest for polymer substrates. And finally, the passing away of legendary cricketer Sir Garfield Sobers is widely noticed in the press. The Indian Express writes in its obituary, legendary all-rounder with many firsts. He didn't know how special he was. And with that, it's back to you, Sanjay.
0: Thank you, Sarabjit. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off two new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. PV Sindhu enters into final of Japan Open badminton tournament. And in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्कीम के तहत पूरे मुल्क में 75 रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह किया, जिनकी हाल ही में जदीदकारी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने दो नई रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। वजीर दाखला अमित शाह आज मगरबी बंगाल में बीएसएफ की बाहरी सरहदी चौकी का दौरा करेंगे। वो हिफाजत इंतजामात का जायजा लेंगे और तरक्याती इकदामात का आगाज करेंगे। अक्वामे मुत्तहदा की इंसानी हकूक से मुतालिक एजेंसी ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली बेचैनी पर तशवीश जाहिर की है। उसने मुजाहिरीन की अमवात की तफ्तीश के लिए आवाज उठाई है। टोक्यो में जापान बैडमिंटन ओपन में पीवी सिंधु खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। और फीफा आलमी कप में आज रात मायामी में तीसरे मुकाम के प्लेऑफ मैच में फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल शाम पंजाब के शहर जालंधर से 20 रियासतों के 75 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह किया। इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन स्कीम ABSS के तहत जदीद बनाया गया है। ये प्रोग्राम स्टेशनों को जदीद बनाए जाने के दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्रामों में शामिल है। मुसाफिरों की सहूलतों के लिए की गई इन स्टेशनों की जदीदकारी पर तकरीबन 1,570 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इन स्टेशनों को विरासत भी विकास भी के जज्बे के साथ नए सिरे से तैयार किया गया है और इस अमल में मकामी सकाफत विरासत और फन तामीर का ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया है। इस मौके पर जनाब मोदी ने करतौली अम्बाला ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसे पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के राबते

0: इजाफा होगा। वजीर आजम ने अमृतसर और वाराणसी के दरमियान संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसकी वजह से भारत के सबसे ज्यादा काबिल एहतराम रूहानी और सकाफती दो मराकज के दरमियान बराह रास्त रेल खिदमात शुरू हो गई हैं। वजीर आजम ने चार लेन वाले ग्रीनफील्ड दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे के 30.9 किलोमीटर के छठे पैकेज का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर जनाब मोदी ने कहा कि इन 75 तजदीद शुदा रेलवे स्टेशनों से भारतीय रेलवेज के जरिए पिछले कुछ बरसों में की गई अक्सर तब्दीली की अक्कासी होती है।
1: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। साथियों, जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले दिन में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली मुसाफिर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन जिंद और सोनीपत रेलवे स्टेशन के दरमियान चलेगी और 79 किलोमीटर का फासला महज 2 घंटे में तय कर लेगी। जनाब मोदी ने जिंद में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपए के बहुत से कौमी तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और उन्हें मुल्क के लिए वक्फ किया। वजीर आजम ने चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपये से ज़्यादा लागत के तरक्याती कामों का आगाज़ किया, जिसमें हिफ़्ज़ान सेहत, तालीम और सड़क बुनियादी ढांचा शामिल है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज मगरबी बंगाल के जुमागच इलाके में BSF की 18वीं बटालियन की बाहरी सरहदी चौकी का दौरा करेंगे। ये चौकी भारत बांग्लादेश सरहद के करीब वाक़ है। वो BSF से मुतालिक बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर दाखला सिलीगुड़ी में एक मीटिंग की सदारत भी करेंगे, जिसमें रियासत में सरहद पर बंदोबस्त और सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात का जायज़ा लिया जाएगा। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: जनाब अमित शाह मगरबी बंगाल के 3 रोज़ा दौरे के लिए कल रात बागडोगरा पहुँचे। आज वो शुमाली बंगाल में सरहदी हिफाजती दस्तों के 2 कैंपों का दौरा करेंगे और एक प्रहरी सम्मेलन से खिताब करेंगे। शुमाली बंगाल के सरहदी इलाकों से मुतालिक मामलात पर उत्तराखंड में कई मीटिंगों का इनेकाद करेंगे। वज़ीर आला सुरेंद्र अधिकारी और रियासती सरकार के सीनियर अफसरान इन मीटिंग में शिरकत करेंगे। जनाब शाह आज शाम कोलकाता चले जाएंगे। कल वो सीनियर पुलिस अफसरान के साथ एक मीटिंग में रियासत में नज़्म व ज़ब्त की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। वो कौमी लाइब्रेरी में एक तकरीब में शिरकत करेंगे और बिस्वा बंगला कन्वेंशन सेंटर से धौलागढ़ में अमूल डेयरी प्लांट की संग बुनियाद रखे जाने की एक तकरीब में भी शिरकत करेंगे। कोलकाता से संदीप उन्नास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कल टेलिन में एस्टोनिया के खारजी उमूर के वजीर मार्गस सखना से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, डिजिटल तब्दीली, साइबर सलामती और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों के शोबों में भारत एस्टोनिया इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने भारत यूरोपीय यूनियन आज़ादाना तिजारती माहिरे से मुतालिक बातचीत के कामयाब अख्ताम के बाद नए मौाक़े पैदा करने के इम्कान पर भी तबादला ख्याल किया। जनाब सखना की मौजूदगी में भारत एस्टोनिया कारोबारी फोरम से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत की डिजिटल सलाहियतों और आलमी दर्जे की मैन्युफैक्चरिंग के इम्तिजाज को भारत यूरोपीय यूनियन आज़ादाना तिजारती माहिदा फ्रेमवर्क की मदद मिलने से दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग मिल सकता है और भारत यूरोपीय यूनियन साझेदारी मजबूत हो सकती है। जनाब गोयल ने एस्टोनिया के कारोबारियों को भारत में सरमायाकारी करने की दावत दी और इस बात को नुमाया किया कि भारत की इस्लाहात, शफाफ, मुस्तहकम और मसाबिकत पर मबनी कारोबारी माहौल तश्कील देने पर मरकूज हैं। स्काई रूट एरोस्पेस आज सुबह विक्रम 1 को पहली बार इसके मदार में पहुंचाएगा। प्राइवेट कंपनी के जरिए तैयार किया गया ये भारत का पहला रॉकेट है जो सयारचों को खला में ले जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मिशन को भारत के खलाई सफर में एक तारीखी नया बाब करार दिया। उन्होंने कहा कि 4 सतहों वाले इस रॉकेट को तेज़ रफ्तार से और मांग किए जाने पर सैयारों को खला में ले जाने की खिदमात फराहम करने के मकसद से तैयार किया गया है। वजीर आजम ने कहा कि इस मिशन से मुल्क के नौजवानों की सलाहियत, अज़्म और कारोबारी जज्बे की अक्कासी होती है। साथ ही साथ इससे भारत के खलाई शोबे की असलाहत नुमायाँ होती हैं, जिनसे इख्तरा और कारोबारी जज्बे के लिए नए मौाक़े पैदा हो रहे हैं। अक़वामे मुत्तहिदा की इंसानी

0: की साबिक आलमी चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के दस्तबरदार होने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची थीं। फीफा आलमी कप में आज रात मायामी स्टेडियम में यूरोपीय हरीफ फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा मुकाम हासिल करने के लिए प्लेऑफ मैच होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 2:30 बजे शुरू होगा। तीसरे मुकाम के लिए प्लेऑफ मैच को आलमी कप के हिस्से के तौर पर साल 1934 में टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन में शामिल किया गया था। इसके बाद से सिर्फ साल 1950 के एडिशन में ये मैच नहीं हो सका था। इस दौरान कल रात न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा आलमी कप का फाइनल मैच होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। हॉकी इंडिया आज से मुल्क भर में मुल्कगीर सतह पर कोचिंग और इंतजामी उमूर के तौर तरीकों से मुतालिक वर्कशॉप का आगाज करेगा, ताकि मुल्की सतह पर हॉकी के फरोग के लिए इको निज़ाम को मुस्तहकम किया जा सके। ये थीं खबरें, और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग।
1: शुक्रिया। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किए जाने की खबर को शह सुर्खी बनाया है। ये ट्रेन हरियाणा के जिंद से सोनीपत तक चलेगी। फॉरेस्ट सर्विस के अफसरान महज जंगलात के मुंतजिम नहीं हैं, बल्कि कुदरती विरसे के भी मुहाफिज हैं। इस बात का इजहार ख्याल सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ट्रेनी अफसरान से मुलाकात के दौरान किया। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने पहले सफ़े पर जगह दी है। सतीश गोलछा की जगह अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाए जाने की खबर को रोजनामा इनकलाब समेत दीगर अखबारों ने खसूसी तौर पर शाये किया है। खबरों के मुताबिक वजारत दाखिला का हुक्म जारी होते ही उन्होंने चार्ज संभाल लिया है, जबकि रोजनामा इनकलाब ने अमरीका और ईरान की तरफ से एक दूसरे के ठिकानों पर हमले जारी रहने की खबर पर तवज्जो मरकूज की है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्कीम के तहत पूरे मुल्क में 75 रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह किया, जिनकी हाल ही में जदीदकारी की गई है। वजीर आजम ने दो नई रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। वजीर दाखिला अमित शाह आज मगरबी बंगाल में BSF की बाहरी सरहदी चौकी का दौरा करेंगे। वो हिफाजत इंतजाम का जायजा लेंगे और तरक्याती इकदाम का आगाज करेंगे। अकवा मुतहदा की इंसानी हकूक से मुतल एजेंसी ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली बेचैनी पर तशवीश जाहिर की है। उसने मुजाहिरीन की अमवात की तफ्तीश के लिए आवाज़ उठाई है। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। और फीफा आलमी कप में आज रात मायामी में तीसरे मुकाम के प्लेऑफ मैच में फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।

श्रोताओं, कहा जाता है कि प्रकृति बोलती नहीं, फिर भी कुछ कह जाती है। उगते सूरज की लालिमा, गंगा यमुना की लहरों का मधुर संगीत हो, बरगद पर लौटते पक्षियों की चहचहाट, सावन की पहली फुहार, मंदिर की आरती की गूंज और माँ की स्नेह भरी आवाज, ये केवल ध्वनियां नहीं, ये जीवन की धड़कन है। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या हम सचमुच इन्हें सुनते हैं? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मोबाइल की घंटियां, वाहनों का शोर और मशीनों की आवाजें तो हमारे कानों तक पहुंचती हैं, लेकिन प्रकृति की ये मधुर पुकार किसी अपनों की अनकही पीड़ा, किसी बुजुर्ग की चुप्पी या किसी बच्चे की मासूम जिज्ञासा, क्या हम उन्हें भी उतनी ही तन्मयता से सुन पाते हैं? शायद नहीं। यही एहसास हमें दिलाने के लिए हर वर्ष 18 जुलाई दो ऐसे महत्वपूर्ण अवसर लेकर आता है जो हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। पहला है विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड लिसनिंग डे, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। पहला हमें सिखाता है ध्यान से सुनना, और दूसरा सिखाता है सुनी हुई बात को समझकर मानवता की सेवा करना। यानी सुनना भी एक कला है, और सुनकर किसी का हाथ थाम लेना सबसे बड़ी मानवता है।

तो आइए आज के इस विशेष अंक में इन दोनों प्रेरक दिवसों की भावना को आत्मसात करते हैं। क्या आपने कभी सुबह सूर्योदय से पहले प्रयागराज के संगम तट पर कुछ क्षण बिताए हैं? यदि हाँ तो आपने अनुभव किया होगा कि वहां शब्द नहीं बोलते, ध्वनियां बोलती हैं। लहरों का संगीत, घाटों पर बजती घंटियां, शंखनाद, उड़ते पक्षियों का कलरव और श्रद्धालुओं के मुख से निकलता हर हर गंगे का उद्घोष।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। तो हम बात कर रहे थे लहरों का संगीत, घाटों पर बजती घंटियां, शंखनाद, उड़ते पक्षियों का कलरव और श्रद्धालुओं के मुख से निकलता हर हर गंगे का उद्घोष। इन सब के बीच मन स्वयं शांत हो जाता है। यही सुनने की शक्ति है। इसी शक्ति के महत्व को समझाने के लिए हर वर्ष 18 जुलाई को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। ये दिन प्रसिद्ध कनाडाई संगीतकार, शिक्षाविद और पर्यावरण चिंतक आर मरे शेफर के जन्म

दिवस पर मनाया जाता है। उन्हें ध्वनि पर्यावरण अध्ययन का जनक माना जाता है। उन्होंने पूरी दुनिया को यह समझाया कि जिस प्रकार हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने ध्वनि पर्यावरण की भी रक्षा करनी चाहिए। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2010 में वर्ल्ड लिसनिंग प्रोजेक्ट द्वारा इस दिवस को आयोजन किया जा रहा है। हर वर्ष इसकी एक विशेष थीम निर्धारित की जाती है, जिसके माध्यम से लोगों को अपने आसपास की ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनने, समझने और संरक्षित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। लगातार बढ़ता ध्वनि प्रदूषण केवल हमारी सुनने की क्षमता को ही प्रभावित नहीं कर रहा, बल्कि तनाव, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप और मानसिक अशांति जैसी समस्याओं का कारण भी बन रहा है। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति की ध्वनियों के बीच बिताएं तो मन स्वतः शांत होने लगता है। इसलिए आज ये दिन हमें याद दिलाता है कि सुनना केवल कानों का कार्य नहीं, ये मन और संवेदनाओं का भी विषय है। प्रयागराज केवल तीर्थों का नगर नहीं, ये संवादों का नगर भी है। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम हमें सिखाता है कि अलग अलग धाराएं भी मिलकर मधुर संगीत रच सकती हैं। कुंभ के अवसर पर करोड़ों लोग आते हैं, भाषाएं अलग होती है, वेशभूषा अलग होती है, लेकिन सबके हृदय में आस्था की एक ध्वनि गूंजती है। यही भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है।

श्रोताओं, कभी कभी परेशान व्यक्ति की सलाह की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल एक ऐसे इंसान की आवश्यकता होती है जो उसे बिना टोके पूरे मन से सुन सके। और यहीं से जन्म लेती है समझ, विश्वास और मानवता। इसी मानवता की सबसे प्रेरक मिसाल हैं नेल्सन मंडेला। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये मानवता, समानता और सेवा का भी उत्सव है। आज ही के दिन वर्ष 1918 में दक्षिण अफ्रीका के मेजो नामक छोटे से गांव में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को ये सिखाया कि नफरत पर प्रेम और बदले पर क्षमा की विजय ही संभव है। उनका बचपन सामान्य था, लेकिन उनका सपना असाधारण था। एक ऐसा समाज जहां किसी व्यक्ति का सम्मान उसके रंग से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होता हो। अश्वेत नागरिकों के साथ भेदभाव किया जाता था। मंडेला ने इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपने जीवन के 27 वर्ष जेल में बिताए। सोचिए, 27 वर्ष, एक पूरी पीढ़ी जितना समय। लेकिन इन वर्षों ने उनके विचारों को कमजोर नहीं होने दिया, बल्कि और अधिक मजबूत बनाया। जब वे जेल से बाहर आए तब पूरी दुनिया ये देखना चाहती थी कि क्या वे बदले की भावना से भरेंगे, लेकिन मंडेला ने ये कहा कि क्षमा ही भविष्य का रास्ता है। यही एक महान नेता की पहचान होती है। वर्ष 1993 में

उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति एफ डब्ल्यू डी क्लार्क को संयुक्त रूप से नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया और वर्ष 1994 में वे दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित अश्वेत राष्ट्रपति बने। उनका नेतृत्व केवल दक्षिण अफ्रीका तक ही सीमित नहीं रहा।

वे पूरी मानवता के प्रेरणा स्रोत बने। इसी योगदान को सम्मान देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2009 में यह निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये दिवस पहली बार 2010 में मनाया गया। 67 मिनट सेवा का संदेश। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि इस दिवस को दुनिया भर के लोगों से केवल 67 मिनट समाज सेवा करने का आग्रह क्यों किया गया? क्योंकि नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के लगभग 67 वर्ष मानव अधिकारों, न्याय, समानता और शांति के लिए समर्पित किया। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से अपील की जाती है कि वे कम से कम 67 मिनट किसी निस्वार्थ सेवा में लगाएं। ये सेवा कोई भी हो सकती है, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाना, किसी वृद्धाश्रम से समय बिताना, वृक्षारोपण करना, रक्तदान करना, या फिर किसी अकेले व्यक्ति की बात पूरे मन से सुन लेना। कभी कभी यही सबसे बड़ी सेवा होती है। मंडेला का एक अत्यंत प्रेरक कथन है कि शिक्षा दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। ये विचार आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित कर रहा है।

श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम को पसंद किया है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल से प्राप्त सूचना के अनुसार नीरा त्रिपाठी जी ने पप्पू राजा, रामचंद्र मखीजा, श्याम प्रताप सिंह, केपीएस चौहान, शशांक जायसवाल, राजेश वर्मा, रवि त्रिपाठी, विक्रम मालवीय, राम कुमार रेवार, शिवम मिश्रा। तो श्रोताओं, कल फिर से मिलते हैं कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज में एक नए विषय के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पहला गाना हमने लिया है फिल्म धुरंधर से। आवाज है अरिजीत सिंह की, गीत लिखा है शाश्वत सचदेव ने और संगीत दिया है इरशाद कामिल ने।

0: 001-4242।
1: ओ 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: फिल्म संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं फिल्म माँ का ये गाना। आवाज है श्रेया घोषाल की, शब्द रचना मनोज मुंतशिर की है और संगीत दिया है रॉकी शिव ने।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700।

अभी आप सुन रहे थे दिव्य कुमार को फिल्म चिड़िया में। गीत लिखा था मेहरान अमरोही ने, संगीत दिया था शैलेंद्र बारवे ने। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए फरुखाबाद और फतेहपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फरुखाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गौरव यादव का।
1: प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने बीते दिनों फरुखाबाद जनपद का एक दिवसीय दौरा किया। अपने दौरे में उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जनप्रतिनिधियों के साथ कानून व्यवस्था, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित की योजनाओं के संदर्भ में समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि सभी योजनाएं तय समय में पूरी कर ली जाएं, किसी भी तरह की समस्या होने पर उन्हें अवगत कराया जाए, किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनसेवा लोक सेवा में 24 घंटे निस्वार्थ भाव से काम करती है,
2: विकास के लिए संकल्पित होकर के काम करती है और कभी भी कोई टेट का चुनाव हो, देश का चुनाव हो, अलग से तैयारी महसूस नहीं करती, क्योंकि हमारा संगठन, हमारे कार्यकर्ता सब लोग मिलकर के अपने अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं।
1: फरुखाबाद जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने जनपद में संचालित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज एवं कोल्ड स्टोरेज में फायर सेफ्टी के इंतजाम चेक करने हेतु सिटी मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फायर सेफ्टी अधिकारी को निर्देशित किया। साथ ही ये भी बताया कि नोटिस देकर इन सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के नक्शे भी चेक कराए जाएं।
3: जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल है, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स है, जिसमें फायर टेंडर के मूवमेंट की जगह नहीं है या फिर जो मानक के विपरीत बनाए गए हैं, उनका पूरा सघन अभियान चला के सर्वे कर लें और जो बिल्कुल मानक के विपरीत है उनको नोटिस देके पहले पूछा जाए नक्शा पास कराया गया है नहीं, तत्पश्चात कार्रवाई की जाए।
1: पुलिस अधीक्षक आरती सिंह द्वारा लोगों के चोरी एवं खोए हुए 125 एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद कर लोगों को वापस किए गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फतेहगढ़ जनपद पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त प्रयास से मोबाइल फोन बरामद कर लोगों को वितरित किए गए। इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत लगभग 28 लाख रुपए है। वहीं अपने चोरी एवं खोए हुए मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। फरुखाबाद जनपद में 1 जुलाई से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 2026 का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने किया। जिलाधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया गया। जन सहभागिता से अभियान को सफल बनाने का आह्वान भी किया गया। संचारी रोगों के प्रभावी रोकथाम, स्वच्छ वातावरण के निर्माण तथा जन सामान्य को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। यह अभियान जनपद में 31 जुलाई तक संचालित किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि संचारी रोगों की रोकथाम केवल स्वास्थ्य विभाग का दायित्व नहीं है, बल्कि सभी विभागों और प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से ही संभव है। अपने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान के दौरान निर्धारित कार्य योजना के अनुसार सभी गतिविधियों का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग अपने दायित्व का गंभीरता से निर्वहन करें ताकि अभियान का लाभ अंतिम

0: व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया एवं अन्य संचारी रोगों के बचाव, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सामुदायिक सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से व्यापक स्तर पर एंटी लार्वा छिड़काव, फॉगिंग स्रोत निस्तारण, साफ सफाई का अभियान चलाया जाएगा। फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति एवं 100% कन्विक्शन के तहत जनपद पुलिस ने 6 माह में 304 लोगों को दिलाई सजा। पुलिस ने 212 मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर शासन की जीरो टॉलरेंस के तहत अपराधियों को सजा दिलाई। पुलिस ने 6 मुकदमों में 16 अपराधियों को कराया आजीवन कारावास। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों पर हुई कार्रवाई पर मीडिया को जानकारी दी।
1: शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जनपद फतेहगढ़ में लगभग पिछले 6 महीने में 212 मुकदमों को चिन्हित किया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा प्रभावी पहल करते हुए लगभग 304 अभियुक्तों को सजा कराई गई है। इनमें से 9 ऐसे मुकदमे हैं जिसमें 16 लोगों को आजीवन कारावास भी हुआ है।
2: फरुखाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फतेहपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नितेश श्रीवास्तव का।
3: फतेहपुर जनपद में जल संरक्षण एवं तालाब के पुनर्जीवन के उद्देश्य संचालित मिशन 300 अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने विकासखंड एराया के ग्राम पंचायत बुधवन में तालाब के पुनर्जीवन एवं खुदाई कार्यकाल स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि तालाब की और अधिक गहराई तक खुदाई कराई जाए, जिससे अधिक मात्रा में वर्षा जल का संचयन हो सके। उन्होंने तालाब के चारों ओर व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जल स्रोतों का दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके और पशु पक्षियों के लिए पानी की उपलब्धता हो सके। उन्होंने कहा कि जनपद में मिशन 300 अभियान के अंतर्गत 240 तालाबों पर पुनर्जीवन एवं खुदाई कार्य प्रारंभ हो चुका है। इन कार्यों के जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा भारत सरकार के केस धरन अभियान के उद्देश्यों को भी गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि वर्षा जल का अधिकतम संरक्षण सुनिश्चित होने पर भूजल स्तर में सुधार होगा और किसानों सहित आमजन को इसका प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव के 2 अन्य तालाबों के पुनर्जीवन की मांग किया, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि तालाबों में यदि अतिक्रमण है तो अतिक्रमण मुक्त कराते हुए पुनर्जीवित की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ की जाए।
4: तालाबों को चिन्हांकन कराते हुए इसके ऊपर खुदाई का काम शुरू कर दिया जाए। वन में मिशन 300 के अंतर्गत चिन्हित तालाब को देखा गया पूरी टीम के साथ, तहसील की टीम थी, तो यहां पर खुदाई शुरू हो गई है और इसको और डीप करने के निर्देश दिए गए हैं।
3: फतेहपुर जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक द्वारा 12वीं वाहिनी पीएसी परिसर में आयोजित 30वीं अंतर वाहिनी पीएसी पूर्वी जोन वॉलीबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता के अंतर्गत वॉलीबॉल एवं सेपक टकरा खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वी जोन की विभिन्न वाहिनियों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने खिलाड़ियों के परिचय प्राप्त कर उन्हें खेल भावना, अनुशासन एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं शारीरिक दक्षता, मानसिक मजबूती तथा टीम भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा पुलिस बल के कर्मियों को सदैव स्वस्थ एवं ऊर्जावान बनाए रखने के लिए सहायक होती है। फतेहपुर में एक पेड़ माँ के नाम की थीम पर आयोजित वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ राज्य मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग कृष्णा पासवान, नोडल अधिकारी डॉक्टर सारिका मोहन और जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स के वैदिक रीति रिवाज से पूजन कर हरिशंकरी के पौध रोपित कर किया गया। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक 12वीं वाहिनी पीएसी के चयन नायक ने पौध रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य है कि हमें पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पौधरोपण अवश्य करना चाहिए और पौधरोपण के साथ साथ इसकी देखभाल भी करें। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पौधों की महत्ता सबने देखी है, इसलिए पौधारोपण बहुत जरूरी है। फतेहपुर जनपद में चल रहे विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर मच्छर जनित और मौसमी बीमारियों के लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी दे रही है। इस अभियान में टीवी कुष्ठ रोग के मरीजों की भी खोज की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदय भान सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश को 2026 में टीवी मुक्त किया जाए। यही वजह है कि इसके उन्मूलन के लिए इसे विभिन्न अभियानों से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में जहां भी कमी मिलेगी तो जिम्मेदारों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत 7 से 8 विभाग जुड़े हुए हैं।
5: जो दस्तक अभियान है, इसमें घर घर जाके टीम जाएंगी और वहाँ पर बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे टीबी है और हमारा कुष्ठ रोग है और कोई बुखार के मरीज हैं, दस्त के मरीज हैं, इन सारे मरीजों की खोज की जाएगी। ऑनलाइन लिस्ट करके इन्हें उस इकाई पर संदर्भित किया जाएगा जहाँ पे इनका उपचार होता है। इसमें टीबी भी शामिल है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि टीबी को हमें 2026 तक भारत को टीबी मुक्त करना है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी लखनऊ है।
1: लखनऊ मीडियम वेव के चैनल से विज्ञापनों के माध्यम

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: अभी आप सुन रहे थे देश गान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में।
1: सामाईन आदाब, खुश आमदीद। उर्दू के तमाम सामाईन की खिदमत में आपका मेज़बान मोहम्मद उमैर हाजिर है शेर व शायरी की खूबसूरत महफिल के साथ। सामाईन, आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में सजी है लफ्ज़ों की महफिल, जज्बातों का गुलदस्ता यानी मुशायरा। आज के मेरे साथ शिरकत फरमा हैं, उनमें शामिल हैं शायरा सना महमूद आबादी, हज़रत खुमार बाराबंकवी और मजाज की सरजमी से तशरीफ़ फरमा हैं जनाब शुएब कंतूरी, और उर्दू अदब के गहवारे लखनऊ की सरजमीन की नुमाइंदगी कर रहे हैं जनाब संजय मिश्रा शौक़ साहब। तो सामाईन, मुशायरे के आगाज़ के लिए मैं दावत सुखन देता हूँ। सीतापुर की सरजमीन से तशरीफ़ लाई शायरा सना महमूद आबादी को कि वो आएँ और अपने खूबसूरत कलाम से इस महफिल में चार चांद लगाएँ।
2: अस्सलामु अलैकुम सामईन हजरात, मैं आपकी खिदमत में चार मिसरे हाजिर करना चाहती हूँ। मोहब्बत को फसाना कर रहा

0: बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भी चार मिसरे हाजिर कर रही हूँ। तमाम उम्र तेरा इंतजार कर लूंगी,
1: तमाम उम्र तेरा इंतजार कर लूंगी,
0: तमाम उम्र तेरा इंतजार कर लूंगी, तो झूठ

0: तुझे गले से लगाऊंगी, प्यार कर लूंगी, तुझे गले से लगाऊंगी, प्यार कर लूंगी,
1: प्यार कर
0: लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भी चार मिसरे हाजिर कर रही हूँ।
1: इरशाद
0: गए।

0: अंदाज है।
1: अपना कहाँ से

0: और जिसके लहजे में वफा रूह से खुशबू आए, जिसके लहजे में वफा रूह से खुशबू आए, ऐसे हमदम पे सना जाना लुटाऊं कैसे, ऐसे हमदम पे सना जाना लुटाऊं कैसे।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब। सामाइन, अभी आपने मुशायरे के आगाज़ में सना महमूदाबादी के खूबसूरत कलाम को समाप्त फरमाया। जो समा उन्होंने बांधा है उसे और हवा देने के लिए मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ दावत सुखन देता हूँ बाराबंकी से तशरीफ़ लाए शायर जनाब शुएब कंतूरी को, कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से महफिल को रोशन करें।
2: सामाइन, बग़ैर किसी तमहीद के ग़ज़ल का मतलब पेश ख़िदमत है।

0: करें हुस्न मतलब पेश कर रहा हूँ। कोई किसी से अहद वफा जब किया करे,
1: कोई किसी से अहद वफा जब किया करे,
0: कोई

0: करें।
1: बहुत उमदा भाई बहुत।
0: तो चाहिए कि पास जबा भी रखा करे मजबूरियों पा।
1: बहुत खूब।
0: और उमर भाई बतौर खास ये शेर
1: इरशाद
0: हो फिक्र

0: करे
1: बहुत
0: किसको पड़ी है जो मेरे हक में दुआ करे। और मैं भी तो कब से बैठा हूँ साइल की।

0: शानदार
1: के हुस्न का सदका करे, फिर उसकी बेवफाई का कोई गिला करे। और मख्ता बतौर खास के देता है जब वो हसबे जरूरत हर एक शेद,

0: फिर उसकी बेवफाई का कोई गिला करे।
1: बहुत उम्दा। सामाइन, ये थे शुएब किंतूरी बेहतरीन लबो लहजे में। उन्होंने इस अदबी सफ़र को आगे बढ़ाया। ये महफिल अपने आखिरी मरहले में है और इसमें और जोश और रंग भरने के लिए अब मैं मधु कर रहा हूँ मशहूर और मारूफ शायर जनाब संजय मिश्रा शौक को कि वो आएं और अपने कलाम से इस महफिल में ऐसा रंग भरें कि हर सामाइन के जहन में ये महफिल हमेशा के लिए बस जाए। माइक पर जनाब संजय मिश्रा शौक साहब।
2: गज़ल पेश कर रहा हूँ।
1: इरशाद।
2: कैद में जहन की रफ्तार उलझ जाती है।
1: कैद में जहन
2: की रफ्तार उलझ जाती है जब भी जंजीर की झनकार उलझ जाती है।
1: वाह वाह वाह।
2: जब्त जब अपनी हदें तोड़ के बाहर निकले घर की दीवार से दीवार उलझ जाती
1: है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। दोबारा।
2: जब्त जब अपनी हदें तोड़ के बाहर निकले घर की दीवार से दीवार उलझ जाती है।
1: वाह वाह।
2: शेर पेश कर रहा हूँ कि रोज होती है मेरी जंग मेरी सांसों से।
1: वाह वाह। रोज
2: रोज होती है मेरी जंग मेरी सांसों से जिंदगी मौत से हर बार उलझ जाती है।
1: वाह वाह वाह। क्या
2: शब में तन्हाई के आसेब से लड़ते लड़ते शब में तन्हाई के आसेब से लड़ते लड़ते मैं जो थक जाऊं तो तलवार उलझ जाती है। शब में तन्हाई के आसेब से लड़ते लड़ते मैं जो थक जाऊं तो तलवार उलझ जाती है। मैं अना बेचने बाजार में निकलूं कैसे।
1: वाह।
2: मैं अना बेचने बाजार में निकलूं कैसे खुद मेरे पांव से दस्तार उलझ जाती है। जिसमें मफहूम से हर वक्त उबलता है लहू जिसमें मफहूम से हर वक्त उबलता है लहू खुरदुरे लफ्जों की जब धार उलझ जाती है। रिश्ते नातों का तुम एहसास दिलाया न करो ये मेरे जहन की रफ्तार उलझ जाती है। ये मेरे जहन की रफ्तार उलझ जाती है। मुझको तूफान का मौजों का कोई खौफ नहीं नाव से खुद मेरी पतवार उलझ जाती है।
1: वाह वाह वाह।
2: मुझको तूफान का मौजों का कोई खौफ नहीं नाव से खुद मेरी पतवार उलझ जाती है। कैद में जहन की रफ्तार उलझ जाती है जब भी जंजीर की झनकार उलझ जाती है। और ये गज़ल और पेश कर रहा हूँ कि मैंने कोयल से कहा दिल न दुखा चुप हो जा अंदर अंदर है उदासी की फजा चुप हो जा। अंदर अंदर है उदासी की फजा चुप हो जा। छेड़ता था जो तेरे हिजर के नगमे अक्सर छेड़ता था जो तेरे हिजर के नगमे अक्सर ओढ़ कर सो गया मिट्टी की रिदा चुप हो जा। मुस्तकिल जंग करोगे तो बचोगे साईं मुस्तकिल जंग करोगे तो बचोगे साईं सब चरागों की मुखालिफ है हवा चुप हो जा। रात जो शख्स था जरदार की गाड़ी के तले रोने वाले पे वही चीख पड़ा चुप
1: हो जा। वाह वाह।
2: रात जो शख्स था जरदार की गाड़ी के तले रोने वाले पे वही चीख पड़ा चुप हो जा। हमसे जिस शख्स ने छीने थे हमारे आंसू आज गर्दन को दबा कर ये कहा चुप हो जा।
1: वाह।
2: हमसे जिस शख्स ने छीने थे हमारे आंसू आज गर्दन को दबा कर ये कहा चुप हो जा। कुछ न कहने से तेरे काम बनेंगे

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं दिलशाद अहमद। पहले सुनते हैं भजन, रचना है मल्लूक दास की।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं दिलशाद अहमद से आज भजन, और भाई ये सुनते हैं इनसे एक और भजन। रचना है मीराबाई की।

मोहम्मद दिलशाद अहमद के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत का पहला निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अपनी पहली परीक्षण उड़ान के लिए तैयार है। इसे हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। ये रॉकेट मिशन आगमन के तहत सुबह 11:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में ही डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये 4 चरणों वाला रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों, खासकर युवाओं से इस ऐतिहासिक मिशन को देखने और टीम स्काई रूट की सफलता की कामना करने की अपील की है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शन

अधिकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चौथे नंबर की चार चेन यू की खिलाफ पहला गेम 21-19 से जीता। वहीं दूसरे गेम में वो 15-10 से आगे थी, तभी चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का फैसला किया। इसके बाद सिंधु को विजेता घोषित किया गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है।

0: 30 मिनट पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। वहीं बिहार, कर्नाटक, केरला, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में आज बारिश की संभावना है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म और उमस भरा मौसम बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पन्ना लाल यादव और साथियों से, साथ ही श्रीकांत वैश्य से लोकगीत। पहले सुनते हैं पन्ना लाल यादव और साथियों से देवी गीत।

0: श्रीकांत वैश्य के गाए इस लोक भजन के साथ ही कार्यक्रम लोक माधुरी अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। लीजिए सुनिए हमारे संग्रहालय से प्रयागराज के सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर जगदीश गुप्त से श्री अजामिल की भेंटवार्ता।
1: हिंदी साहित्य में कवि, लेखक, चिंतक और चित्रकार तथा एक सदा विजयी मार्गदर्शक कर्मयोद्धा के रूप में निरंतर सक्रिय डॉक्टर जगदीश गुप्त आज किसी परिचय के मोहताज नहीं। उनका व्यक्तित्व और विशाल हृदय सिर्फ साहित्य और कला के बाहरी सरोकारों तक कभी सीमित नहीं रहा।

0: बल्कि मनुष्य और मनुष्यता के पक्ष में लड़ी जा रही किसी भी लड़ाई में वे अपने जुझारू तेवर के साथ हमेशा हमारे साथ हमारे बीच मौजूद रहे। रचनाकर्म डॉक्टर जगदीश गुप्त के लिए हमेशा दुनिया को बदलने और उसे बेहतर और बेहतर बनाने की दिशा में संभावनाएं तलाशने का सशक्त माध्यम तो रहा ही है, यह उनकी गहरी आस्था से भी जुड़ा रहा है। इसीलिए अपने सभी रचनाओं में, चाहे वे शब्दों में रही हों, रेखाओं में रही हों या उनकी अपनी वाणी में, डॉक्टर जगदीश गुप्त को उसमें धड़कते हुए और बेचैन देखा जा सकता है। खेल खेल में भले ही उन्होंने बहुत कुछ महत्वपूर्ण रच डाला हो, लेकिन शब्दों और रेखाओं के चितेरे डॉक्टर जगदीश गुप्त के लिए रचनाकर्म कभी खिलवाड़ नहीं रहा। सच तो यह है कि डॉक्टर जगदीश गुप्त ने पूरे जीवन को एक बड़ा रचनाकर्म मानकर बड़ी शिद्दत से उसे जिया और कई कई बार मृत्यु को भी ठेंगा दिखाकर वे मुस्कुराते रहे। देश के तमाम साहित्यिक पुरस्कारों को अपनी सहृदयता से स्वीकार करके उन्होंने सारे पुरस्कारों को सम्मानित किया। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर जगदीश गुप्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आकाशवाणी के साथ डॉक्टर साहब के बड़े गहरे संबंध हमेशा से रहे हैं, और इतना ही नहीं, डॉक्टर साहब के पास आकाशवाणी को अपनी रचनाओं के माध्यम से संवारने और सहेजने के अविस्मरणीय अनुभव हैं। आकाशवाणी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आज ये बेहद सुखद होगा कि हम उनके साथ उस अतीत को देखें, जाने जिसमें हमारे इलाहाबाद की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत की जड़ें मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आज की इस अनौपचारिक बातचीत के लिए हम स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी को सफलतापूर्वक काम करते, अपनी जिम्मेदारी निभाते 50 वर्ष बीत गए। इसकी प्रसारण यात्रा का बड़ा हिस्सा आपने भी इसके साथ कदम से कदम मिलाकर तय किया है, साथ ही इसे समय समय पर आपने बेहद नजदीक से देखा, परखा और खंगाला है। आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा को, इसकी उपलब्धियों को आप आज किस तरह से देखते हैं?
1: मैं उस समय की याद करता हूं जब आकाशवाणी शब्द पहली बार स्वीकार किया गया
0: जी।
1: अग्गे जी ने कहा कि आकाशवाणी क्या होती है, विरोध किया उन्होंने, कहा कि ये तो पौराणिक शब्द है, आकाशवाणी के कुछ भिन्न चीज होनी चाहिए। लेकिन ये हुआ कि यही शब्द स्वीकार हो गया
0: जी,
1: और आकाशवाणी का अर्थ बदल गया
0: जी।
1: आकाशवाणी आकाश से आई हुई वाणी नहीं है, इसी पृथ्वी तल पर से आकाश की ओर गतिशील वाणी के रूप में आ गई
0: जी।
1: अब मैं उससे जुड़ा हूँ, ये सही है, 50 वर्ष का बड़ा समय होता है, अर्धशती बड़े से अनुभव हुए हैं। सबसे पहले मैं नेहरू जी का स्मरण करता हूँ
0: जी।
1: कई कारणों से मैं पहले उनका नाम लेता हूँ, क्योंकि वो वैसे तेवर के कवि थे, जो जो नहीं रुचता था वो नहीं करते थे
0: जी। हाँ,
1: साहित्य का संदर्भ हो, वो हमेशा विनय और शक्ति के साथ रहते, आकाशवाणी में वो नहीं आए
0: जी। हाँ,
1: क्यों नहीं आए ये एक अलग विषय है, लेकिन ये सत्य है कि वो आकाशवाणी में नहीं आए। फिर भी उनकी रचनाएं प्रसारित हुई और आकाशवाणी ने बराबर चेष्टा की
0: जी
1: कि वे आए। कवि की मानसिकता और आकाशवाणी की मानसिकता एक नहीं है। आकाशवाणी कुछ सीमाएं रखकर आदमी को बुलाती है, साहित्यकार को बुलाती है
0: जी।
1: बहुत बार ऐसा होता है कि जो कुछ वो कहना चाहता है वो आकाशवाणी की नीति के अनुकूल नहीं होता
0: जी,
1: और तब ये कठिनाई होती है कि वो अपने कहे को

0: छोड़ दे, इरेज कर दे, या
1: फिर स्वीकार ले,
0: स्वीकार न करे। लेकिन मैंने ये देखा कि ऐसा भी होता है, बहुत बार परिवर्तन करना पड़ता है और कोई मैं अहंकार की भाषा नहीं बोलता। मैंने देखा ठीक है, जिस दिन मैं आकाशवाणी में आया हूँ तो उसकी मर्यादाएं मानना कोई अनुचित बात नहीं है। हाँ, दूसरा रास्ता है कि आकाशवाणी में आऊँ ही नहीं, यानी अलग का मार्ग अपनाऊँ। मगर एक मार्ग पंत जी का भी था, पंत सुब्रतानंद पंत आकाशवाणी में उस समय जुड़े जब कोई नहीं सोचता था
1: जी,
0: और उनके कारण दिनेश शर्मा और बहुत से लोग जुड़े। हमारे पंत जी के माध्यम से आकाशवाणी साहित्यकारों पर छा गई। अगर पंत जी संघर्ष न करते या विरोध करते तो इतनी सफलता आकाशवाणी को नहीं मिलती। एक संदर्भ में कहना चाहता हूँ, एक समय था कि आकाशवाणी का अनुबंध पत्र अंग्रेजी में होता था
1: जी।
0: हम लोगों ने लड़ाई की, 3 साल तक हम अनुबंध पत्र स्वीकार नहीं करते थे।
1: अच्छा जी।
0: हाँ, और कोई कार्यक्रम नहीं स्वीकार किया
1: जी।
0: मैं, भारती और सब लोग थे, ज्यादातर परिमल के लोग थे
1: जी,
0: हमने स्वीकार नहीं किया तो नहीं किया। जब विवश होकर आकाशवाणी ने अपनी नीति बदली और अनुबंध पत्र हिंदी में आया
1: जी,
0: तब मैंने स्वीकार किया और हम लोगों ने स्वीकार किया
1: जी।
0: तो ये भाषा की लड़ाई भी आकाशवाणी में हुई
1: जी,
0: और भाषा की लड़ाई तो अस्तित्व की लड़ाई है। मैंने उसको केवल भाषा की लड़ाई नहीं माना, मैं मानता हूँ कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। अपनी भाषा का स्वाभिमान अगर नहीं है तो क्या अर्थ है।
1: तो डॉक्टर साहब, इसे भी एक उपलब्धि के रूप में आप स्वीकार करते हैं?
0: हाँ।
1: कि ये जो हिंद भाषा की लड़ाई आपने आकाशवाणी में रह करके जीती, तो ये भी एक तरह की उपलब्धि है।
0: हाँ।
1: आपकी दृष्टि में और क्या उपलब्धियां रहीं कि आकाशवाणी ने अपने श्रोताओं को किस तरह से सहेजा है, किस तरह से और बनाया है? क्योंकि अब तो आज आकाशवाणी को सुनने वाले बहुत बड़ा वर्ग है।
0: हाँ, ये मैं कहूँ कि आज जो दूरदर्शन और संचार माध्यम आ गए, उनसे एक आकाशवाणी की स्थिति द्वयम दर्जे की मान ली गई। लेकिन मैं मानता नहीं हूँ, इसको नहीं मानता, इसलिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आकाशवाणी में ही सुलभ होती
1: जी।
0: सामान्य जन का आकाशवाणी से जुड़ता है, हर एक के पास रेडियो नहीं है, हर एक के पास संचार माध्यम के और
1: साधन
0: नहीं है।
1: जी हाँ,
0: आकाशवाणी या रेडियो या ट्रांजिस्टर
1: जी
0: साज स्वरूप है
1: जी। हाँ,
0: तो इसलिए व्यापक जन समाज आकाशवाणी से जुड़ता है और उच्च वर्गीय जो मानसिकता है उससे आकाशवाणी आज भी मुक्त है।
1: आकाशवाणी की मौलिकता को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपको लगता है कि ये दूरदर्शन की अपेक्षा कहीं ज्यादा मौलिक है आकाशवाणी?
0: असल मौलिकता एक भिन्न दृष्टि है, मौलिकता तो रचना में होती है
1: जी,
0: बाकी तो प्रस्तुति है
1: जी।
0: अगर रचना मौलिक है तो जहाँ भी है वो श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन आकाशवाणी ये विचार करके नहीं चलती कि ये रचना मौलिक है या अमौलिक है, ये उसके पास कोई आधार नहीं है ये तय करना कि रचना कवि की कहाँ तक मौलिक है कहाँ तक नहीं, या एक बार पढ़ी गई तो दोबारा नहीं पढ़ी जाएगी, ऐसा भी नहीं है
1: जी।
0: तो कहीं ना कहीं मौलिकता का प्रश्न

0: आकाशवाणी का केंद्रीय प्रश्न नहीं है
1: जी,
0: लेकिन ये कि रचना की अपनी ही रचना है, ये बात महत्वपूर्ण है
1: जी।
0: यानी हमने हजारों रचनाएं लिखी
1: जी,
0: कौन सी चीज ऐसी है जो आकाशवाणी में हम पढ़ सकते हैं? हमको सोचना पड़ता है। हमारी बहुत सी कविताएं ऐसी हैं कि जो मैं आकाशवाणी में नहीं पढ़ सकता
1: जी।
0: मैं जानता हूं कि ये यहाँ आके पढ़ूंगा तो लगेगा कि ये कोई न कोई आपत्ति आ जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि जिस माध्यम को मैंने स्वीकार किया है उसे संकट में डालूं।
1: जी
0: ये कोई कमजोरी की बात नहीं है, ये विवेक की बात है। या तो मैं न जाऊं, और जाता हूं तो उसकी मर्यादा का सम्मान करूंगा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आपको किसी ऐसे सार्थक आकाशवाणी प्रसारण का स्मरण आता है जबकि आपको लगा हो कि ये प्रसारण, इस तरह का प्रसारण अगर किया जाए तो ये आम श्रोता की ताकत बन सकता है, आम जनता की ताकत बन सकता है और आकाशवाणी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर
0: दो सकता। तीन चीज़ें कहूँगा मैं। जब डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी थे तो उनसे संवाद करके जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई वो आकाशवाणी में प्रसारित हुई
1: जी।
0: इसी तरह से आकाशवाणी मंचीय प्रस्तुतियाँ करती थी और राम की शक्ति पूजा भी मंचीय प्रस्तुति के रूप में आए और बहुत शक्तिशाली
1: प्रस्तुति
0: थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हास्य और व्यंग्य और तरह तरह के मनोरंजक प्रसंग भी आकाशवाणी में, जो आकाशवाणी में यहाँ नहीं हो सकते वो मंच पर होते हैं और उसको प्रसारण किया जाता है
1: जी।
0: तो ये एक क्षेत्र विस्तार हो जाता। आकाशवाणी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्र विस्तार किया, इसमें कोई संदेह नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता था कि सार्थक आकाशवाणी प्रसारण से क्या आशय लिया जाए जबकि उस हालत में जबकि ये आकाशवाणी का जो प्रसारण है वो जनता की ताकत बने, श्रोताओं को लगे कि ये जो प्रसारण है ये उसका मार्गदर्शन कर सकता है, वो आपकी दृष्टि में क्या हो सकता है?
0: जहाँ तक मैं समझता हूँ आकाशवाणी मार्गदर्शन के लिए नहीं है, क्योंकि एक सरकारी तंत्र है और सरकारी तंत्र की मर्यादाएं होती हैं, सीमाएं होती हैं। फिर भी क्योंकि ये केवल सरकारी तंत्र नहीं है, जनता तक प्रसारित होता है, तो वो एक दूसरा पक्ष है जनता का। मैं उसको प्रथम पक्ष नहीं मानता
1: जी,
0: लेकिन इतना मानता हूँ कि भाषा महत्वपूर्ण है। अगर भाषा हमारे विचारों को संवहन नहीं करती, हमारी रचनाओं को प्रसारित करने में साधक नहीं है, तो एक प्रश्न उठता है कौन सी भाषा आकाशवाणी के लिए उपयुक्त भाषा है और कहाँ तक को ग्राह्य है
1: जी।
0: दूसरा प्रश्न था कि विचार कहाँ तक स्वीकार्य हो
1: जी।
0: मैं समझता हूँ कि ये कठिनाई है
1: जी,
0: हमारे सब विचार आकाशवाणी स्वीकार नहीं कर सकती
1: जी।
0: और मैं जानता हूँ कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ लिखा और यहाँ के जो सहयोगी थे उन्होंने कहा कि ये नहीं, ये कविता रख दें। यानी कविताएं मैं ज्यादा रहता था, अनुभव से जानता हूँ कि हर कविता यहाँ पर स्वीकार्य नहीं होती
1: जी।
0: हम मेरी ही कविताएं हैं लेकिन उसमें ये चुनाव हो सकता है कि ये कविता आकाशवाणी में पढ़ी जाए और इतनी वरीयता दें
1: जी।
0: तो निषेध नहीं है लेकिन विवेक है, निषेध नहीं है विवेक है। विवेक क्यों है? इसलिए कि आकाशवाणी की सीमाएं हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, इन सीमाओं में रहकर भी कभी आपको क्या ऐसा लगा कि कोई ऐसा प्रसारण आपने किया है कभी कि आप उसको आज तक भूल नहीं पाए हैं? और ऐसे कौन से लोग रहे जिन्होंने जिन्हें जो कि आपको सहयोग करते रहे और आप

0: के नज़दीक आए, आप उनके नज़दीक गए और आप उन्हें भी नहीं भूल पाए। हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा आकाशवाणी इलाहाबाद के उस अतीत में चलें जिसको कि आपने एक लंबे समय तक देखा है, जाना है।
1: गिरजा कुमार माथुर का नाम नहीं भूलूंगा मैं, वो यहाँ थे
0: जी,
1: और प्रभाकर माचवे भी यहाँ थे
0: जी हाँ,
1: दोनों के नाम मैं नहीं भूलूंगा। गिरजा कुमार माथुर तो स्टेशन असिस्टेंट डायरेक्टर थे
0: जी
1: इस नाते, और वो खुले मन के व्यक्ति थे
0: जी हाँ।
1: उनकी पत्नी शकुंत माथुर भी बराबर सही हम लोगों को सहयोग देती थी
0: जी हाँ,
1: आती थी जाती थी। पंत जी के काल में
0: जी
1: साहित्यकारों का वर्चस्व बढ़ा
0: जी हाँ,
1: और बाद में ये तो नहीं कहूँगा कि घटा, लेकिन फिर उतना बड़ा व्यक्तित्व तो सामने नहीं आया
0: जी हाँ।
1: महादेवी जी सीधे आकाशवाणी से नहीं जुड़ी, उनके साहित्यकार संसद में कुछ कार्य होते थे
0: जी हाँ,
1: जिसमें वो आकाशवाणी वहाँ पहुँच करके अपना
0: रिकॉर्डिंग कर लेते थे उसकी जी हाँ।
1: उसमें मखनलाल जी भी आए, दिनकर जी भी आए और वंशल गुप्त भी आए और क्या नहीं आए।
0: डॉक्टर साहब, आप इतने बड़े बड़े साहित्यकारों का नाम ले रहे हैं, इससे ये तो तय हो जाता है कि वो सारे के सारे साहित्यकार आकाशवाणी की के महत्व को स्वीकार करते थे, उस माध्यम की ताकत को पहचानने की कोशिश में लगे हुए थे और संभावनाएं देख रहे थे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे?
1: ऐसा है कि वाणी शब्द अनेक रूपों में सामने आता है
0: जी हाँ,
1: वो आकाशवाणी में वाणी मुख्य है
0: जी,
1: आकाश मुख्य नहीं है
0: जी।
1: आकाश तो फैला देता है वाणी को
0: जी हाँ,
1: केंद्रित वाणी तभी है जब साहित्य के रूप में आती है
0: जी,
1: और जन शक्ति का जन शक्ति की ग्रहणशीलता सार्थक होती है
0: जी। कोई ऐसा प्रसारण आपको याद आ रहा है जो आपने किया हुआ आकाशवाणी से और आप अभी तक नहीं भूल पाए उसे?
1: बहुत बार ऐसा होता है कि काव्य पाठ, सामूहिक काव्य पाठ हुए
0: जी,
1: और बहुत से कवि बाहर के भी आए और यहाँ के भी आए
0: जी।
1: हमारे मित्र कृष्णचंद वर्मा बराबर, युक्तिबुद्ध दीक्षित
0: जी,
1: और बहुत से लोग ऐसे थे। ग्रामीण कार्यक्रम बड़े अच्छे लगते थे मुझे
0: जी,
1: आज भी मैं ग्रामीण कार्यक्रम
0: को सुनते हैं आप?
1: सुनता हूँ
0: जी,
1: और लगता है कि जो वो कैलाश गौतम वो भी उसी रास्ते में हैं
0: जी हाँ।
1: तो ये लोग जिस तरह से बोलते हैं
0: जी,
1: वो जनता से जुड़ जाता है।
0: अच्छा जी,
1: वैसे हम नहीं बोल सकते
0: जी,
1: तो ग्रामीण कार्यक्रम जो है, गांव का कार्यक्रम आकाशवाणी की विशेषता है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, ये आकाशवाणी के माध्यम से किसी रचना का पाठ करते समय आपको व्यक्तिगत रूप से किस तरह का आनंद प्राप्त हुआ, कैसा लगा आपको?
1: मैं जब रचना सुनाता हूँ, पढ़ता हूँ, ऐसा कहना ठीक नहीं
0: जी,
1: पढ़ना
0: ठीक है, आकाशवाणी पे तो सुनाई ही जाएगी,
1: सुनाना में अंतर है थोड़ा
0: जी हाँ, जी हाँ।
1: तो जब मैं रचना सुनाता हूँ तो कहने को तो माइक सामने होता है, मगर इतना विवेक और इतनी चेतना मुझ में रहती है कि ये केवल मैं अपने सामने एक यंत्र को नहीं सुना रहा हूँ
0: जी,
1: यंत्र से प्रसारित होने वाली वाणी हमारे श्रोताओं तक
0: जा रही है,
1: और कोई त्रुटि हो जाती है तो सजग हो जाता हूँ, और जो निर्दोष वाणी है वो मुझे परितोष देती है
0: जी। बिल्कुल सही कहा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये रचना के प्रसारण में जब इस क्या इस माध्यम से संप्रेषणीयता बढ़ती है, या आपको लगता है कि इसमें कुछ कहीं दोष आया, कहीं घट गया?
1: ऐसा है

0: की आकाशवाणी की कुछ सीमाएं हैं, कुछ शक्ति हैं
1: जी।
0: सीमाएं हैं कि वह दिखा नहीं सकती
1: जी,
0: आज दूरदर्शन दिखा सकता है, सुना सकता है, आकाशवाणी केवल वाणी तक सीमित है
1: जी।
0: लेकिन वाणी में भी मैं मानता हूं कि शब्द के अंदर एक चित्र तत्व रहता है
1: जी,
0: और मैं मानता हूं कि कविता चित्र चित्रात्मक
1: होती है।
0: तो इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी वर्णन कर रहा है
1: जी
0: और लगता है कि सब कुछ सामने आ गया। तो नाट्य प्रस्तुतियां जो आकाशवाणी की होती हैं वो बहुत सफल होती हैं। कई बार मैंने देखा कि बहुत उसका लोक रंजन भी होता है और प्रस्तुति भी मंच बड़े बड़े मंचों पर प्रस्तुतियां हुई मैंने देखी, वो मैं समझता हूँ कि स्मरणीय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, अनेक प्रस्तुतियाँ स्मरणीय हैं।
1: लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कवि है, कोई रचनाकार है, रचना तो बहुत अच्छी लिखता है लेकिन उसका पाठ, वो उसका वाचन उतना बढ़िया नहीं कर पाता, और वाचन के माध्यम से वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँच जाती है, आप इस बारे में क्या कहेंगे?
0: बहुत बार ऐसा भी होता है कि रचना किसी की है और सुनाता दूसरा है
1: जी हाँ,
0: ऐसा भी आकाशवाणी में होता है। कभी कभी वो नहीं आ पाता है तब दूसरा सुनाता है, कभी कभी वो स्वयं असमर्थ है
1: जी,
0: वृद्ध है, नहीं सुना सकता, तब दूसरा सुनाता है। तो आकाशवाणी का ये एक दायित्व तो बनता है कि रचना का प्रसारण तो हो, आवश्यक नहीं है कि जिस लिखने वाले के मुख से हो
1: जी।
0: और ये मैं तो जानता हूँ कि ऐसा हुआ है।
1: डॉक्टर साहब, एक सार्थक आकाशवाणी प्रसारण आपकी दृष्टि में क्या है, आप किसे कहेंगे? आप तो बहुत दिनों से रेडियो भी सुन रहे हैं।
0: सार्थक शब्द बड़ा विचित्र है
1: जी,
0: जहाँ पैसा मिले वो सार्थक ये तो शब्द है लेकिन आकाशवाणी बिना पैसे के प्रसारण नहीं करती
1: जी,
0: तो सार्थक के शब्द में भी है
1: हाँ,
0: लेकिन जिस अर्थ में आप सार्थक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है कि फालतू चीज नहीं
1: जी,
0: यानी रचना जो है श्रवणीय हो
1: जी,
0: एक शब्द है श्रवणीयता
1: जी,
0: तो प्रसारणीय होना एक बात है, श्रवणीय
1: तभी होनी चाहिए
0: जी हाँ, तो श्रवणीयता को मैं महत्व देता हूँ, सार्थकता से अधिक श्रवणीयता महत्वपूर्ण।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आपने कभी रेडियो को ध्यान में रखकर के कोई रचना लिखी है, इस माध्यम को विशेष रूप से ध्यान में रखकर?
0: जब इन लोगों ने ऐसा किया, एक बार नाटक भी मुझको कहा कि
1: अच्छा,
0: आप मंच के लिए नाटक लिख दीजिए
1: जी,
0: तो मैंने लिख दिया
1: जी,
0: नाटक तो मैंने लिखता नहीं
1: जी,
0: मगर वो प्रस्तुत हुआ
1: जी हाँ,
0: और बुरा नहीं हुआ
1: जी,
0: उस दिन लगा मुझे कि चाहूं तो लिख सकता हूँ।
1: अच्छा जी, तो उसमें कौन सी ऐसी विशेष बात थी जिसको कि विशेष रूप से इस माध्यम के लिए लिखते समय आपने बल दिया, ध्यान दिया उस पर, कोई एक
0: बात? तो उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है
1: जी हाँ,
0: आकाशवाणी में उच्चारण की त्रुटि अक्षम्य है
1: जी हाँ,
0: और गलत पढ़ जाए तो भी आपत्तिजनक है
1: जी,
0: और जो धारा प्रवाह अगर नहीं बोल सकता तो भी आपत्तिजनक है, और अगर अंतरंग तत्व से युक्त नहीं है तो भी प्रभावशाली नहीं।
1: डॉक्टर साहब, आकाशवाणी केंद्र ने तो हमेशा आपसे प्रेरणा ली है, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आकाशवाणी के किसी प्रसारण से आपको प्रेरणा मिली हो, आपको ये लगा हो कि इस तरह का माध्यम का उपयोग किया जाना चाहिए?
0: बहुत बार ऐसा होता है कि ये लोग घर जाकर के रिकॉर्ड कर लेते हैं
1: जी,
0: जब मैं स्टूडियो

0: जो नहीं आ पाता तो ये घर जाकर रिकॉर्ड करते हैं। तो भैया जो घर आके करता है तो उसकी क्या मर्यादा है, जब मेरे घर आ गए तो स्वीकार है, मान्य है, और ये आदर देते हैं, यही आदर पाते हैं। आकाशवाणी आदर देने की भावना से युक्त है।
1: अच्छा जी,
0: हाँ, मैंने पाया, अपने अनुभव से पाया कि आकाशवाणी में साहित्यकारों का अनादर नहीं होता।
1: आप अपनी सहमति की बात कर रहे थे कि इससे क्या आपकी सहमति है, दूरदर्शन और दूसरे अन्य चैनलों के आने से ये आकाशवाणी केंद्र जो है वो द्वयम दर्जे पर आ गया है, ऐसा एक कहा जा रहा है।
0: मैं नहीं मानता, माध्यम बदल गया है, ये तो सही है, नए माध्यम आ गए हैं, लेकिन आकाशवाणी का प्रसारण विस्तार पाता रहा है, आज भी विस्तार पा रहा है। हमारा अनुभव है कि जिन क्षेत्रों में आकाशवाणी की वाणी पहुंचती है उतनी और
1: दूरदर्शन नहीं पहुंच पा रहा है।
0: नहीं, ये उच्च वर्गीय है, जाने क्यों, मुझे लगता है कि वर्ग भेद है, आकाशवाणी जनवाणी है।
1: बहुत अच्छी बात कही आपके, आकाशवाणी जनवाणी,
0: जनवाणी है, जी। और दूरदर्शन जो है वो सचमुच आकाशवाणी है।
1: जी, तो ये थी डॉक्टर जगदीश गुप्त से हुई हमारी बातचीत। ये बातचीत हमें कई स्तर पर प्रेरित करती है। हम आकाशवाणी के संदर्भ में एक तो इलाहाबाद के पुराने अतीत को देखें और उससे कुछ सबक लें, कुछ जानें, और ये देखें कि हम किस किस स्तर पर कहां कहां कुछ छोड़ आए हैं, इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी हमें लगता है। हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब।
0: शुभम शुभम।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रयागराज के सुप्रसिद्ध साहित्यकार जगदीश गुप्ता से श्री अजामिल की भेंटवार्ता। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

मीडिया वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ज और एफएम 100.3 मेगा हर्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के कलाकार हैं इरशाद कामिल।

कहा जाता है कि इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं, उसके शब्दों से होती है, और जब शब्द दिल की गहराइयों से निकले तो वे केवल पढ़े नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। ऐसे ही शब्दों के जादूगर हैं इरशाद कामिल। इरशाद कामिल का नाम सुनते ही एक ऐसे रचनाकार की छवि सामने आती है जिसने साधारण शब्दों को असाधारण भावनाओं में बदल दिया। उनकी लेखनी हमें यही सिखाती है कि शब्दों की असली ताकत शोर मचाने में नहीं बल्कि खामोशी से दिल को छू लेने में होती है।

इशाद कामिल का जन्म पंजाब के मालेर कोटला में हुआ। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की और बाद में हिंदी साहित्य में पीएचडी की। साहित्य से उनका गहरा जुड़ाव ही उनकी रचनाओं की सबसे बड़ी पहचान है। वे मानते हैं कि लेखक का पहला कर्तव्य लोगों की भावनाओं को ईमानदारी से शब्द देना है। उनके व्यक्तित्व को कुछ पंक्तियों में यूं महसूस किया जा सकता है, शब्दों का सौदा नहीं करता, एहसासों का व्यापार नहीं करता, जो दिल से निकले वही लिखता हूँ, मैं झूठ का श्रृंगार नहीं करता।

श्रोताओं, आज के दौर में जहां शब्दों का इस्तेमाल अक्सर बहस जीतने के लिए किया जाता है, वहीं इरशाद कामिल ने शब्दों का इस्तेमाल लोगों के दिल जीतने के लिए किया। उनकी लेखनी हमें यही सिखाती है कि संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, बल्कि इंसान होने की सबसे बड़ी ताकत है।

0: उनकी सोच से प्रेरित एक छोटी सी शायरी प्रस्तुत है। रास्ते मुश्किल हो तो हिम्मत बढ़ा लेना, अंधेरा गहरा हो तो एक दिया जला लेना, जिंदगी हर मोड़ पर इम्तिहान लेगी, मुस्कुरा कर हर सवाल का जवाब बना लेना।
1: Thank you.

उनकी साहित्यिक प्रतिभा को देश विदेश में सम्मान मिला। उन्हें अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें 3 फिल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल हैं। वर्ष 2022 में उन्हें रूस का प्रतिष्ठित पुष्किन पुरस्कार मिला और वे ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय फिल्म गीतकार बने। ये उपलब्धि केवल उनकी नहीं बल्कि भारतीय भाषा और साहित्य की भी उपलब्धि है। इरशाद कामिल का जीवन हमें यही संदेश देता है कि सफलता पाने के लिए केवल

केवल प्रतिभा नहीं बल्कि धैर्य, निरंतर सीखने की इच्छा और अपनी जड़ों से जुड़ाव भी आवश्यक है। उन्होंने कभी कठिन शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश नहीं की बल्कि सरल शब्दों में गहरे विचार व्यक्त किए। यही एक सच्चे लेखनी की पहचान भी होती है।

अंत में मैं अपनी बात इन पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूँगी कि कलम जब सच्चाई से मिलती है तो इतिहास बनाती है, और जब संवेदनाओं से मिलती है तो इंसान के दिलों में हमेशा के लिए बस जाती है। आइए हम भी अपने शब्दों को इतना सुंदर, इतना सच्चा, इतना मानवीय बनाएं कि हमारी पहचान हमारी भाषा और हमारे विचार बन जाएं।

आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम आपने सुना अपनी रेडियो दोस्त दीप्ति के साथ, प्रस्तुति थी दीपक राय की। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त और साथियों को मिस्टर एंड मिसेस 55 में, और आइए आप सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल सुरों में नमक हलाल फिल्म का गीत। बादलों का शोर भी कितना हसीन होता है जब

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को फिल्म आया सावन झुमके में। सावन आया तो हवाओं ने पैगाम दिया और हर सूखी शाख को फिर से जीने का अरमान दिया।

और आइए अब सुनते हैं प्यासा सावन में लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर को। बादल भी आज कुछ यूं बरसे हैं जैसे तेरी यादों ने अरमान को छू लिया हो।

और आइए अब सुनते हैं आशा भोसले को फिल्म रेशमी रुमाल में। पहली बारिश की बूंदों ने जब जमी को छुआ, लगा जैसे

और आइए अब सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति को 1942 ए लव स्टोरी में। बारिश की हर बूंद एक कहानी कह जाती है, कभी हंसा जाती है, कभी किसी की याद दिला जाती है।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अब से कुछ देर में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये 4 चरणों वाला रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाईस्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आए फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
2: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य

अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ NDPS अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: final defeat against Spain. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से आपको अवगत करा दें। आज रात 9:30 पर चित्र भारती, रात 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 12:15 पर राम शंकर का ख्याल गायन हम आपको सुनवाएंगे। 12:30 पर श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश। पनघट कार्यक्रम में 1:15 पर ग्रामीण अंचल की महिलाएं सुनेंगी स्मृति गुप्ता की बातचीत संयुक्त परिवार बनाम एकल परिवार और जूही मिश्रा के लोकगीत सुनवाए जाएंगे। 2:30 लोकगीत के कलाकार होंगे कल्पनाथ और साथी, जगदीश यादव और साथी, संगमलाल यादव और साथी। शाम 5:00 धरती के गीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे अनीता राय के स्वर में लोकगीत। 5:15 पर यूजन अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी। 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे जगदीश यादव और साथियों के गाय लोकगीत के अलावा परिवार कल्याण की बात के अंतर्गत डॉक्टर आशुतोष की बातचीत सुनाएंगे। बारिश के मौसम में नाक कान और गले में होने वाली आम समस्याएं और उनका निदान। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर बसंत कुमार त्रिपाठी की वार्ता सुनवाएंगे जन कवि नागार्जुन की रचनाओं में सामाजिक चेतना।

7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी दिव्या श्रीवास्तव। इनके स्वर में हम आपको सुनवाएंगे भजन और गीत। 8:30 सबरस कार्यक्रम में होगा। ये थे आज के दिन भर के शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शिक्षा मनुष्य में आत्मविश्वास जगाती है। खुद शिक्षित बनिए और दूसरों को साक्षर बनाइए। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव

94.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं राम शंकर का ख्याल गायन राग शुद्ध सारंग।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राम शंकर का ख्याल गायन।

शुद्ध सारंग। तबला श्री श्रवण कुमार भट्ट का था और हारमोनियम पर शमशाद अहमद खान। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति है मधु कुमार की।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम सामी बात है
0: जी, बताइए कहाँ से बात कर रही हैं
1: जी। मैं कौशाम्बी से बात कर रही हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: सजना तेरे प्यार में हम परदे की हो गए।
0: फिल्म का नाम भी बता दीजिए।
1: दिल ने कहा
0: कुछ, दिल ने कहा
1: नहीं मैम, क्या बोलने
0: का। चलिए, तो आपकी पसंद का ये गाना हम सुनवाने जा रहे हैं। आपको किसी के नाम तो नहीं लेने?
1: जी नहीं मैम।
0: तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत हेलो फरमाइश कार्यक्रम में।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: आदरणीय मधु दीदी को सादर सप्रेम प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार जी। नमस्कार
1: दीदी, आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ।
0: राजू जी ने आगरा से हमें कॉल की है, तो राजू जी कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आज फिल्म का नाम तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन गाने के बोल हैं ओ सजना बरका बहार आई
0: जी। परख फिल्म का ये गाना है
1: जी।
0: तो भाई आपने बड़ा ही अच्छा गीत चुना है राजू जी, तो आपकी पसंद को पूरा करते हुए सुनवाइएगा ना।
1: जैसे मौसमी फल और मौसमी सब्जियां
0: जी
1: खानी चाहिए, वैसे ही मौसम के हिसाब से गीत
0: गाने भी सुनने चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अब मौसम तो इन्हीं गानों का है, तो चलिए भाई बहुत अच्छा चुनाव आपका है। परख फिल्म के इस गाने को हम लोग सुन ले। तो राजू जी आपको सुनवाने जा रही है परख फिल्म का ये गाना।
2: ओ सजना

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: प्रणाम आदरणीय मधु दीदी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। नमस्कार
0: नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: दीदी। मैं अच्छा हूँ, आपका आशीर्वाद, बांके बिहारी कृपा से घर परिवार में सब लोग आनंद से रहते हुए आकाशवाणी प्रयागराज से जुड़े रहते हैं, कार्यक्रम सुनते रहते हैं।

0: अच्छा लगता है, चाहे वो भक्त संगीत हो अथवा लोकगीत हो या फिर स्वास्थ्य चर्चा है, ये सब मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं कार्यक्रम
1: जी
0: आकाशवाणी प्रयागराज से जो प्रसारित होते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शारदा प्रसाद प्रजापति जी, मथुरा से हमारे साथ हैं। तो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है सावन को आने दो।
1: सावन को आने दो। अच्छा, इसका कौन सा गाना है?
0: इसका शीर्षक गीत है, तुम्हें गीतों में ढालूंगा, तुम्हें गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो, सावन को आने दो। बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारा
1: जी
0: गीत,
1: जी
0: जज्बा देख
1: बहुत ही
0: रहे आपकी
1: अच्छा
0: आवाज
1: गीत
0: में।
1: है और शारदा प्रसाद प्रजापति जी ने इसे पसंद किया है, तो आइए सुनते हैं।

0: इस समय श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: मैं जबलपुर एमपी से आपका

0: आदमी से होता है। सुख की बात कर रहा हूँ मैडम जी, कैसी है आप?
1: मैं ठीक हूँ।
0: प्रयागराज के
1: आकाशवाणी प्रयागराज की सारी टीम बिल्कुल ठीक है। और अशोक जी की ये पुरानी आदत है सबका हाल चाल पूछते जरूर है
0: जी।
1: तो अशोक जी आज कौन सा गाना चुना है आपने?
0: आज चला दीजिए सारे शहर में आपका कोई नहीं,
1: बैराग फिल्म का गाना।
0: आपका कोई नहीं, कोई नहीं।
1: तो लीजिए सुनिए बैराग फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताएं।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहे दीदी मनोज नामदेव।
0: मनोज नामदेव जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: नमस्ते दीदी, मैं तो बढ़िया हूँ और आपका आशीर्वाद है भगवान की कृपा से, बढ़िया हूँ दीदी मैं तो।
0: जी बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी जी दीदी, आप सुनवा दो, फिल्म का नाम रहेगा तुमसे अच्छा कौन, फिल्म का नाम रहेगा और गाने के बोल रहेंगे चांद तारे फूल सबलम।
0: तुमसे अच्छा कौन है टाइटल सॉन्ग सुनना है आपने?
1: बिल्कुल
0: सुनवाएंगे। मनोज जी ये बताएं कि आप किसी का नाम तो नहीं लेना चाहते हैं या कुछ कार्यक्रमों के बारे में कहना चाहते हैं तो जरूर बताएं।
1: जी बिल्कुल दीदी, हमारे श्रोताओं के नाम अगर ले तो उनका तो फोन लग ही जाता है, तो समय का अगर अपन सदुपयोग करके एक बात कहना चाहते हैं
0: कि
1: आकाशवाणी आपका इतना अच्छा कार्यक्रम आते रहते हैं, मैं बिल्कुल मोबाइल ऐप के जरिए सुनता हूँ, इतना ध्यान पूर्वक सुनता हूँ कि आपके जितनी भी अनाउंसर हैं बहुत मेहनत से कार्यक्रम बनाते हैं, तो मेरी ओर से सभी अनाउंसरों को खासतौर पे आपको दिल से धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपको आकाशवाणी प्रयागराज के कार्यक्रम बेहद पसंद आते हैं और आप सबका ये स्नेह है जो हमें और भी अच्छे कार्यक्रम तैयार करने की प्रेरणा देता है। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद दीदी आपको।
0: तो सुनवाते हैं ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति थी मधु कुमार की।

श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि आज रात 9:30 बजे चित्र भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा। ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि रॉकेट तेज और मांग के अनुरूप प्रक्षेपण सुविधा उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
2: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
1: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नीति को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ NDPS अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। ये कार्रवाई राज्य सरकार के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। PV सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यूफी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यूफी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही PV सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल PV सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय

0: गंगा, अरे ओ गंगा, अरे हम तोसे कहा राम राम गुइया।
1: राम राम जया बहनी, ओ पनगट सुने बैठी सब बहनी हरन के भी राम राम।
0: राम राम गंगा। और बतावा घरे द्वारे के का हाल चाल है गुइया?
1: बहनी घरे द्वारे के तो हाल चाल देखा ठीक बा। पानी बरसत बर रही रहे तो मौसम इतना बढ़िया बाबा गांव में कि पूछा जिन।
0: हाँ देखा, ये बारिश के मौसम में देखा, जब तक बारिश होती तब तक तो अच्छा लगे थे,
1: हाँ
0: पर जब देखा जैसे धूप निकल जाते तो लगा था कि
1: चीटी काटा दो। हाँ ऐसा चुनचुना था जैसे लगा था चीटी काटा दो
0: चीटी
1: दैया में।
0: काटा
1: और साझा होते मच्छर इतना ज्यादा है, मतलब अति कह दे थे कि पूछा जिन। हम तो
0: बिल्कुल
1: कहे कल गुरुवारी में जाए के धुआं सुलगाए है, नीमी पत्ती उत्ती बटोरे रहे हैं, तो हम क्या भाई जैसे मनाइन के लागत है वैसे गुरुवनों तो लागत है ना।
0: बिल्कुल। और का देखा, इनके गोरुन की सेवा तो एक अलग बात हो जाते, देखा है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो यानी कि तू कल सेवा कई दियो।
1: हमरे मच्छर काटत रहन तो हम सोचे गुरुओं नो काटत हुई बहनी तो ये नाते गए धुइया रुइया सुलगाए, गदेलन पढ़त रहन उन्हों सबके लगे सुलगाए, तो यही कुल चलत बा बहनी। बाकी तो ठीक ठाक बा। अब धान वान के सीजन चलत बाटे, अब धान के बेरन डाले रहे और उहे लगाई होत बा।
0: देखा पानी भी बरसा था तो बेहन अच्छा हो जाए।
1: हाँ लेकिन देखा जोन लीलावती काकी हैं तो वो हमरे खेते में बेरन डारे रहीन है, बेरन लई तो गईन लेकिन मतलब अब गोरू भाई राती में छूटा रहा हो तो चला गया वही में से, तो उनका ये रहा कि हम सभी जान बूझ के कह दे। आजकल बहनी भलाई युग जमाना ना इन्हें कितनों
0: बिल्कुल सही।
1: भलाई करा लेकिन मनई के ये लागत है कि बतावा मतलब ये काउ करिन। तो हम सोचे कि देखा आजकल भलाई तो करे के जमाना बान आए लेकिन तबो भलाई करे के चाहिए, और हमरे लिए अगर क्यों कुछ करत है तो हमरे मने में तो इतना कृतज्ञता के भाव आवत है कि फलाना मनई हमरे लिए ई कीहेस।
0: बिल्कुल। और देखा सही कहो गंगा, कि देखा कृतज्ञता का जो तू शब्द कहू, ये देखा बहुत बहुमूल्य शब्द है
1: बिल्कुल।
0: ना। आज के समय में कृतज्ञता अगर मन में है, तो देखा सब कुछ अच्छा है। और लोगन के प्रति अगर एक कहा जाता है ना कि भाव हमारा अच्छे हैं,
1: बिल्कुल।
0: है ना?
1: तोरे लिए अगर क्यों छोटा उसे काम किए वे तब ओकरे लिए धन्यवाद, एक एक शब्द धन्यवाद तो बनबे करत
0: बिल्कुल
1: है।
0: सही। और का तो देखा गंगा, जब अपने जीवन में जब हम सब अपने जीवन में लोगन के प्रति कृतज्ञता के भाव रखी थी, और देखा तो हमारे सबके जीवन इतना सुंदर और आसान बन जाते हैं कि ना कहा। जीवन
1: बिल्कुल
0: में देखा हर चीज फिर मतलब ऐसा खुशी वाला माहौल रहा थे। और देखा
1: बिल्कुल।
0: तू जैसे देख कितनी अच्छी, अभी तू बात बताओ कि देखा तू सोचो कि देखा जब मनई का लागत है कि भाई मच्छर काटा थे या उनका तकलीफ होते ये बारिश के
1: हाँ
0: मौसम में, तो देखा गोरु बछोरेन के लिए भी दिख तोरे मन मन में कृतज्ञता रही,
1: हाँ
0: है ना? तो देखा सही बात, तो सबसे बड़ी कृतज्ञता तो यही है कि देखा जब हम अपने प्रति लोगन के प्रति कृतज्ञ रही, तो काहे नहीं जोन हमारे आसपास जोन हमारे प्रकृति में जोन चीजें हैं उनके प्रति भी हम कृतज्ञ रही।
1: बिल्कुल। कहे से कि देखा उन्हीं से हमें सबका रोटी मिलत बा, रहे
0: बिल्कुल
1: के
0: सही।
1: जगह मिलत बा, मतलब पर्यावरण से सब कुछ हम मने के मिलत बा, तो
0: बिल्कुल
1: हर उ चीज के प्रति धन्यवाद करे के चाहिए जौन की यही यही समय जीवे के सहारा मने के बनत
0: सारा
1: है।
0: बिल्कुल सही। तो देखा गंगा, आज कसना यही पे बत कही कह लीन जाए जीवन में कृतज्ञता का महत्व।
1: बिल्कुल बहनी, बहुत बढ़िया ये विषय पर जरूर चर्चा होए के चाहिए। कहे से कि देखा कृतज्ञता के अर्थ है कि जे भी हमारे जीवन में जैसे अभी हम सब बात करते रहे कि कोनो भी रूप में योगदान दिए बा तो ओकरे प्रति हृदय से धन्यवाद के भाव रखे के चाहिए। खाली धन्यवाद कही देह से भी कृतज्ञता ना होत, बल्कि देखा ये महसूस करे होत है कि हम अकेले ना है, हमारे जीवन में जौन कुछ भी अच्छा बा ओमे अनगिनत लोगन के योगदान बा।
0: बिल्कुल सही। देखा गंगा, हमारे जीवन में जो ने माता पिता, गुरुजन, किसान, सैनिक, जो ने जितने डॉक्टर हैं, और
1: बिल्कुल
0: समाज में बहुते इन सब लोगन के बहुते बड़ा योगदान रहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: देखो उनकी मेहनत से हमारे जीवन आसान बन जाते हैं।
1: अभी देखा जोन रोटी हमरे थाली तक पहुंचत बा ओकरे

0: पीछे कितना जने के
1: मेहनत
0: है, मने मतलब किसानन के मेहनत बा, मजदूरन के मेहनत बा, जहाँ से ले आई थे हम सब, और महता सबसे बड़ा महतारी के बनाई के हमारे सामने तक वो चीज आवत बा, तो कितना जने से होत होत होत वो रोटी हमारे थाली में आए।
1: बिल्कुल सही। और देखा गंगा, जब देखा एक के साथ साथ ये तो देखा मनई के जो योगदान है वो तो देखा है, उसके साथ साथ देखा प्रकृति हमका कितना कुछ देती।
0: बिल्कुल
1: है ना, देखा हवा मिलत है हमका, पानी में मिलत है, अन्न मिलत है, हरियाली मिलत है, और देखा ऐसे जो ने पर्यावरण की जो ने रक्षा कर भी एक कृतज्ञता का चिन्ह है।
0: बिल्कुल, देखा जिकरे जो व्यक्ति के हृदय में कृतज्ञता होते ना, ओकरे जीवन में शिकायत कम और खुशी ज्यादा हो जाता।
1: बिल्कुल सही। और देखा जब शिकायत कम और खुशी ज्यादा हो जाता है तो देखा जीवन मां हर तरफ खुशी ही खुशी रहत है, और जीवन इतना सुंदरमय हो जाता है कि अपने आसपास मतलब एकदम देखा एक आदमी जो अकड़ है और अकड़ में चल रहा है, ओके साथ यदि कृतज्ञता का भाव रखा तो देखा जैसे कहा जाए ना पत्थर का भी पानी किया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: है ना?
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो अगर कोनो आदमी मतलब अगर अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है तो देखा अपनी कृतज्ञता भाव से मुका बदल सकी थी।
0: बिल्कुल।
1: और देखा कितना कुछ एक एक कितनी सारी कहानियां भी हैं, मतलब अपने आसपास हम लोग बहुत सारे उदाहरण भी हैं जो उनके जेके जैसे जो ने अच्छे भाव से कितनी बड़ी बड़ी चीजें बदल गई हैं,
0: बदल गए हैं। तो हमें ही लागत है कृतज्ञता के भाव रखे के चाहिए हमें सबका, और सबसे पहले उठ के ईश्वर के धन्यवाद करे के चाहिए कि वो हमें इतना बढ़िया जीवन दिए।
1: बिल्कुल।
0: देखा कुछ मने ऐसा जैसे संतुष्ट ना रहते ना अपनी जिंदगी से कि हमें तो ये ना मिला वो ना मिला, लेकिन अगर देखा वहीं कभी कभी हम जात रहे थे देखे थे कि कभी असहाय लोग हैं, क्यों चल ना पावत बा, क्यों बोल ना पावत बा, तब भी जिंदगी से संघर्ष करत हैं।
1: बिल्कुल सही। देखा कहा देखा एक कहानी है ना, कहा जाता है ना कि एक यदि कभी भी अपने जीवन पे जो है बुरा लगे कि अपने जीवन के प्रति कि काहे हमारे जीवन हम पैदा हुए, तो हमेशा वो आदमी के बारे में सोच लेना चाहिए जो उनकी जिनका कहा था ना कि पैर पैर नहीं है, हाथ नहीं है, तो एक बार जाए कि उनके जीवन के बारे में सोचेगा चाहिए
0: कि कैसे वो ये दुनिया में अपन रहे के लिए मतलब जद्दोजहद करत है।
1: बिल्कुल सही। और देखा गंगा छोटी छोटी बात माँ छोटी छोटी बात माँ परेशान होए से कुछ नहीं होते। जीवन में परेशानी जब आवत ही तब है हम सब लोग एक अनमोल हीरा बन के निकली थी, है ना? तो कभो भी छोटी छोटी परेशानियों से परेशान न होए का चाहिए, ओका ये समझे का चाहिए कि अभी परेशानी हमारे जीवन में आई है तो हमका कुछ अच्छा बदलाव हमारे जीवन में करके जाए।
0: बिल्कुल,
1: है ना?
0: और दूसरा चीज देखा, पहला धन्यवाद तो भगवान के हो गए, दूसरा जो हमारे माता पिता है।
1: बिल्कुल सही
0: है ना, इस दुनिया में हमें सबके लाए हैं तो उनके सबके सबसे बड़ा योगदान बा कि देखा जब हम सब छोट रहे चलब ना जानत रहे तो माई बाबू हाथ पकड़ के चलावत रहने, है ना? अब वो जब पुरनिया हो गए हैं तो हमार सबके बारी है कि हम उनका सबका हाथ पकड़ के चलाएं और उनके धन्यवाद रोज करी कि इस दुनिया में लाए के हमें यह लायक बनाएं कि हम कितने लोग के संभाल सके थे, ये समाज चलाए सके थे। तो और तीसरा हो गया गुरु। गुरु हमें इतनी अच्छी शिक्षा दे, कहा गब कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु खाली पढ़ावत भर ना है बल्कि देखा जीवन जिए भी सिखावत है। एक अच्छा शिक्षक जोन बा विद्यार्थियों के भविष्य के आकार देते, उनका स्वरूप देते, उनका सजावत है, उनमें रंग भरत है।
1: बिल्कुल है
0: ना?
1: बिल्कुल।
0: तो अगर गुरु ना हो सोचे आदमी तो ज्ञान के प्रकाश कबो भी हमारे जीवन में ना आए। तो यही बदे गुरु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता जीवन भर बनी रहे के चाहिए।
1: गंगा अपने जीवन में हर एक चीज के प्रति कृतज्ञ रहे का चाहिए, हर एक चीज के प्रति, हर एक इंसान के प्रति, और कभो भी कोनो भी इंसान के मन के लिए हमेशा जब भी आप कोनो के लिए कोनो खराब भाव रखें तो सबसे पहले उकी स्थिति में अपने आप का रख के देखें कि देखा वो जो उन स्थिति से गुजर रहा है पक्का मतलब वो परेशानी से गुजर रहा है, तो का हम उकी जगह हुई तो हमहू का वो परेशानी से हमार वही मन स्थिति हमार वही रही।
0: बिल्कुल।
1: तो यही लिए अपने आस पास अपने गुरुजन अपने माता पिता अपने परिवार अपने आराध्य उन सब के लिए कृतज्ञ रहे, उनके लिए मन में हमेशा एक अच्छा वाला भाव रखे तो देखा अपन जीवन खुद है बहुत सुंदर हो जाए,
0: सुंदर हो जाते। और देखो विज्ञान भी कृतज्ञता के समर्थन करे थे, जैसे आज के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो भी मानते हैं कि जो लोग प्रतिदिन धन्यवाद करते हैं उनका तनाव कम होता है।

0: आजकल सबसे बड़ी समस्या मानसिक तनाव होगी, तनाव कम होते वो ज्यादा खुश रहते हैं, उनके नींद अच्छी होते, रिश्ते मजबूत होते और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। मतलब कृतज्ञता खाली आध्यात्मिक गुण ही ना हो बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए औषधि भी है। तो यही बदे देखा कृतज्ञता कोनो जन्मजात गुण ना हो, एका अगर आदमी सोचे ना तो अपनी सोच से ओका विकसित कर सकत है और समाज में एक आदर्श स्थापित कर सकत है।
1: देखा गंगा अच्छी अच्छी बात होगी कृतज्ञता से। देखा जब बात अच्छी होगी तो कसना एक लोकगीत भी अच्छा सा सुन लिया जाए।
0: अरे बिल्कुल नेकी और पूछ
1: हाँ, तो चला सुनावती प्रीति मिश्रा बहनी कजरी है, चला सुना जाए
0: बहनी हरण भी सुना।

0: गंगा,
1: हाँ मैनी,
0: कितना अच्छा गीत रहा। और देखा कजरी जब अपने पनघटे पे हो जाती
1: मन एकदम झूम ही जाता है
0: हाँ झूम जाते हैं। देखा सावन की याद आवे लगती
1: बिल्कुल सही।
0: हाँ
1: अब मौसम भी देखा वैसे हो जाता है।
0: हाँ देखा बारिश के मौसम है ना, तो एकदम गाना इसे लगा कि दिल का छू के निकल
1: और
0: गया
1: तुम
0: है
1: एकदम हरी हरी पहन के आया हो, कितना नीक लगा था वो। देखा जैसे हरियर हरियर, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक एकदम हरियरी में डूबी
0: देखा यही लिए तो
1: लागत
0: कजरी
1: भर के सावन आ गया
0: हाँ देखा देखा कजरी सुनवाए दिया ना तो का तो गंगा जब अभी हम लोग कृतज्ञता की बात करते रहे ना, तो देखा जब परिवार की बात आवत है तो हम सब लोगन का परिवार, देखा भाई हम कहा भी कि देखा परिवार के लिए भी कृतज्ञ रहेगा
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: बहनी, देखा चार परिवार अगर है ना तो कितनी मजबूती रहा था, एकजुटता रहा था,
0: बिल्कुल
1: बड़ा फायदा होता है एकर। पहले देखा गदेलन कैसे पली जात रहे पता ही ना चलत रहा,
0: और
1: आज
0: क्या
1: मैंने एक लड़की हम परेशान बा कि कैसे एक
0: कैसे
1: पाल के
0: पाल ले,
1: बड़ा
0: बिल्कुल
1: करी।
0: बिल्कुल। तो देखा आज अपने पनघटे पे यही से जुड़ी एक वार्ता है, संयुक्त परिवार बनाम एकल परिवार। और इमा वार्ताकार हैं डॉक्टर स्मृति गुप्ता। तो चला सुना जाए कि इमा का बतावा गवा है।
1: चला सुना जाए, बहनी हरन भी सुने।
2: आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर परिवार और समाज से जुड़ा हुआ है, जैसे संयुक्त परिवार बनाम एकल परिवार। भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार केवल एक साथ रहने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि प्रेम, सहयोग, सम्मान और संस्कारों की पहचान रहा है। संयुक्त परिवार में दादा, दादी, माता पिता, चाचा चाची और बच्चे एक साथ रहते हैं। यहाँ बच्चों को संस्कार, बड़ों का अनुभव और परिवार का भावनात्मक सहयोग सहज रूप से मिलता है। कठिन समय में सभी एक दूसरे का सहयोग करना, उनका सहारा बनना और जिम्मेदारियां भी साझा होती हैं। वहीं आधुनिक युग में उनकी जीवन शैली, रोजगार, शिक्षा और शहरीकरण के कारण एकल परिवारों की संख्या तेजी से बढ़ी है। एकल परिवार में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, गोपनीयता अधिक होती है और पति पत्नी अपने बच्चों को अधिक व्यक्तिगत ध्यान दे सकते हैं। लेकिन कई बार बुजुर्गों का अकेलापन, बच्चों में सामाजिक अनुभव की कमी और कार्यरत दंपतियों पर बढ़ता मानसिक दबाव जैसी चुनौतियां भी सामने आती हैं। वास्तव में प्रश्न यह नहीं है कि कौन सा परिवार बेहतर है, महत्वपूर्ण यह है कि परिवार में प्रेम, सम्मान, संवाद और सहयोग कितना है। यदि संयुक्त परिवार में आपसी समझ नहीं है तो साथ रहकर भी दूरी बनी रहती है। वहीं यदि एकल परिवार अपने बुजुर्गों से जुड़े रहें, रिश्तों का सम्मान करें और पारिवारिक मूल्यों को बनाए रखें तो वे भी एक सशक्त और सुखी परिवार बन सकते हैं। परिवार केवल एक छत के नीचे रहने वाले लोगों का समूह नहीं है, यह हमारी पहली पाठशाला है जहाँ हम बोलना, चलना, प्रेम करना, सम्मान देना,

सहयोग करना और जिम्मेदार नागरिक बनना सीखते हैं। परिवार हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है और जीवन के हर सुख दुख में हमारा सबसे बड़ा सहारा होता है। भारत की पहचान सदियों से ही संयुक्त परिवार व्यवस्था रही है। संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि साझेदारी, यहाँ खुशियाँ भी साझा होती हैं और कठिनाइयाँ भी। यदि किसी सदस्य पर आर्थिक संकट आता है तो वह पूरा परिवार उसके साथ खड़ा होता है। यदि घर में कोई बीमार हो जाए तो उसकी देखभाल के लिए कई हाथ आगे आते हैं। बच्चों को अपने दादा दादी से कहानियां सुनने को मिलती हैं, जीवन के अनुभव और नैतिक मूल्य सीखने का भी अवसर मिलता है। आज भी गांव में और छोटे छोटे शहरों में संयुक्त परिवार अनेकों रूपों में दिखाई देते हैं। वहां परिवार केवल आर्थिक इकाई नहीं है बल्कि सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार भी है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। शिक्षा, रोजगार, औद्योगिकरण, शहरीकरण और वैश्वीकरण ने हमारी जीवन शैली को बदल कर रख दिया। नौकरी के अवसर बड़े शहरों में केंद्रित हुए हैं। इस कारण से युवाओं को अपने घरों से दूर जाना पड़ा। छोटे घर में सीमित संसाधन और व्यस्त जीवन के कारण एकल परिवार यानी पति पत्नी और बच्चे तक सीमित परिवारों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। बुजुर्ग हमारे परिवार की धरोहर हैं। एकल परिवार के भी अपने कई सकारात्मक पक्ष हैं। ऐसे परिवारों में निर्णय जल्दी लिए जा सकते हैं। पति पत्नी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जीवन की योजना बना सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और भविष्य पर व्यक्तिगत ध्यान देना अपेक्षाकृत आसान होता है। परिवार के सदस्यों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता भी अधिक मिलती है, विशेषकर कामकाजी महिलाओं के लिए। यदि परिवार में परस्पर सहयोग हो तो एकल परिवार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जीवन को व्यवस्थित करने का अवसर देता है। लेकिन हर व्यवस्था की तरह एकल परिवार की भी कुछ चुनौतियां होती हैं। आज महानगरों में रहने वाले अनेक बुजुर्ग अकेलापन का अनुभव कर रहे हैं। उनके बच्चे नौकरी या व्यवसाय के कारण दूसरे शहरों में, देशों में रहते हैं। दूसरी ओर छोटे बच्चों को देखने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए माता पिता को डे केयर या घरेलू सहायकों पर निर्भर होना पड़ता है। कार्यस्थल का तनाव, समय की कमी और सामाजिक दूरी कई बार मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालती है। कोविड-19 महामारी ने हमें परिवार के महत्व का एक नया पाठ पढ़ाया है। उसी कठिन समय में हमने ये महसूस किया है कि परिवार केवल आर्थिक सहारा नहीं बल्कि भावनात्मक सुरक्षा का सबसे बड़ा स्रोत भी है। जहां परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ थे, वहां कठिन परिस्थितियों का सामना अपेक्षाकृत अधिक सहजता से किया गया है। आज प्रश्न यह नहीं है कि संयुक्त परिवार श्रेष्ठ है या एकल परिवार। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या हमारे परिवार में प्रेम, संवाद, सम्मान और सहयोग बना हुआ है। यदि संयुक्त परिवार में लगातार विवाद, असम्मान और तनाव हो तो वह परिवार बच्चों और बड़ों दोनों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। वहीं यदि एकल परिवार अपने माता पिता और रिश्तेदारों से जुड़े रहें, समय समय पर मिलते रहें, एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझें और भावनात्मक संबंध बनाए रखें तो वे भी मजबूत पारिवारिक संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं। आज तकनीक ने दूरियों को कम कर दिया है। वीडियो कॉल, मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हम अपने प्रियजनों से नियमित रूप में जुड़े रह सकते हैं, नियमित रूप से उनके टच में रहते हैं। लेकिन यह भी सच है कि तकनीक कभी भी आत्मीयता का पूर्ण विकल्प नहीं बन सकती है। परिवार को समय देना आज भी उतना ही आवश्यक है जितना पहले था। विशेष रूप से बच्चों के विकास की बात करें तो परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण केवल विद्यालय नहीं करता बल्कि घर का वातावरण भी करता है। यदि घर में बुजुर्ग का सम्मान होगा तो बच्चे भी सम्मान करेंगे, सम्मान करना सीखेंगे। यदि घर में संवाद होगा तो बच्चे भी अपनी समस्याओं को खुलकर साझा करेंगे। यदि घर में प्रेम होगा तो समाज में संवेदनशील नागरिक तैयार होंगे। बुजुर्ग हमारे परिवार की धरोहर हैं। उनका अनुभव, धैर्य और जीवन दृष्टि नई पीढ़ी के लिए अमूल्य संपत्ति हैं। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे स्वयं को उपेक्षित या अकेला महसूस ना करें। इसी प्रकार
नई पीढ़ी की चुनौतियों को भी

0: समझना आवश्यक है। बदलती अर्थव्यवस्था, प्रतिस्पर्धा, रोजगार का दबाव और तेज जीवन शैली उनके सामने नई परिस्थितियां प्रस्तुत करती हैं। इसलिए पीढ़ियों के बीच संवाद और समझ का होना पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। परिवार तभी मजबूत होगा जब अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन किया जाए। यदि प्रत्येक सदस्य केवल अपनी अपेक्षाओं पर ध्यान देगा और अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएगा तो किसी भी परिवार में संतुलन बनाए रखना कठिन होगा। हम सभी अपने अपने परिवारों में कुछ छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं, जैसे प्रतिदिन कुछ समय परिवार के साथ बैठकर बातचीत करना चाहिए, सप्ताह में एक दिन बिना मोबाइल के परिवार के साथ बिताएं, बुजुर्गों के स्वास्थ्य और भावनाओं का ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें। बच्चों को केवल सफलता नहीं बल्कि संवेदनशीलता और संस्कार भी सिखाएं। परिवार में मतभेद हो तो संवाद के माध्यम से उनका समाधान खोजना चाहिए। ये छोटे छोटे प्रयास परिवार को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़े कदम सिद्ध हो सकते हैं। भारतीय संस्कृति सदैव वसुदेव कुटुम्बकम अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार है का संदेश देती है। जब हम पूरे विश्व को परिवार मान सकते हैं तो अपने घर के सदस्यों के बीच सम्मान और सहयोग बनाए रखना हमारा पहला दायित्व है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि संयुक्त परिवार हो या एकल परिवार, परिवार का वास्तविक आधार उसका आकार नहीं है बल्कि उनके सदस्यों के बीच विश्वास, संवाद और संवेदनशीलता, अपनापन, ये सभी चीजें हैं। आइए हम सभी यह संकल्प लें कि आधुनिक जीवन की व्यस्तताओं के बीच भी हम अपने पारिवारिक मूल्यों को जीवित रखेंगे, अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे और प्रेम, सहयोग तथा विश्वास से परिपूर्ण परिवार का निर्माण करेंगे।
1: गंगा दिखा
2: बनी
1: कितनी अच्छी जो उन्हें वार्ता रही।
2: हाँ।
1: और देखा स्मृति बहनी कितने अच्छे से फरियाए के बताई इनकी, देखा संयुक्त परिवार और एकल परिवार जो उन्हें देखा दोनों माँ कितना अच्छे से उनका मतलब अंतर बताई इनकी देखा।
2: बिल्कुल।
1: और फायदा और उनके नुकसान,
2: फायदा और नुकसान भी बताएं। तो सही बात है, अगर देखा सामंजस्य बिठाए कि दोनों मन ही अगर अच्छे से लय के चले तो बड़ा अच्छा जीवन बीते।
1: और का और देखा सब कुछ हल्के फुल्के माँ ले के चलेगा चाहिए, बहुत ज्यादा अपने सरे पे जो उन्हें एकदम बोझा ना लादे का चाहिए, आराम से खुशी से जीवन बितावे का चाहिए। एक जीवन मिला है उनका बिंदास राजा
2: रानी दिन की जिंदगी में कोनो पता ना है कब के कब तक बांटे तो ये नाते हंसी खुशी जिंदगी बितावो जब तक बा।
1: तो देखा जब तू हंसी खुशी की बात करूं तो चला तो का एक और जो उन्हें गीत सुनवाए दे रागिनी चंद्रा बहनी से।
2: चला सुना जाए।

0: जय बनी
1: गंगा
0: जैसे लागे देखा झूला पेंगा मारा था और गाना गावा था कितना बढ़िया रहा था पहले पेंगा वाला झूला रहा था।
1: अरे ना पूछा
0: पेंगा मार मार के कि केक खड़ा कहले झूला।
1: हाँ, और देखो कितना झगड़ा हाँ। होता कि हम खड़े और वो हम पेंग मारे
0: और वही में अगर झूला टूट जाए तब तो और बढ़िया हो जाता रहा।
1: और देखा पिंग मारा जाए और डरा जाए कि ऐसा ना कि झूला टूट जाए।
0: हाँ, और वही पे बैठ के कजरी जौन होत रही ना। हाँ, कितना बढ़िया लगा था।
1: अरे ना पूछा
0: वो दिन याद आ जाते कजरी उजरी सुन के ना।
1: अरे जाने तो गंगा उस समय के जौन पुआ होते ना वो एकदम याद दिलाए देते। वो बनत रहा पुआ एकदम खस्ता। तो देखा जब पुआ की बात आई तो कसना आज रसोई घर से तो चला ले चली और कुछ इमा आज है का

0: तू बताओ वो।
1: आज है देखा मूंग दाल सैंडविच, ठीक
0: अच्छा।
1: है, इतनी हल्की चीज भी जो सेहत के लिए भी सही बा और खाए में भी बहुत स्वादिष्ट बा, है ना। तो पहले सामग्री देखा, अगर नोट कर लें बहनी हरन, दो सैंडविच के बदे, हाँ, आधा कप पीली मूंग दाल 2-3 घंटा भिगाए दें, ठीक है। ओकरे बाद 4 ब्रेड ले लें, एक छोटा प्याज, एक छोटी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, ये सब, और एक दो ठो हरी मिर्च, ये सब के बारीक बारीक काट ला। अब एक छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस कैला चाहे घिस के रख ला, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, नमक अपने स्वाद के अनुसार,
0: बिल्कुल।
1: और एक दो बड़ा चम्मच हरा धनिया लेला कटा हुआ, और एक दो छोटा चम्मच तेल या घी जे में भी बनावा, और हरी चटनी रख ला विकल्प के तौर पे, ठीक बा, और मक्खन रख ला। अब देखा सामान रख ले इसमें नहीं, अब बनावे के विधि ये है कि जोन भीगी हुई मूंग दाल बा ओका पानी निकाल के धोई के ओका दरदरा पीस ला। अब एक तो कढ़ाही रख ला तेल गरम कैलो में, तब जीरा डाला, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च डाल के 2-3 मिनट तक भून दाओ का। अब जोन पीसे हो दाल मूंग दाल ओका डाल दो में हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक डाल के मिलाए दा अच्छे से। अब लगातार 5 और 7 मिनट पकावा होगा, जब तक जोन होकर मिश्रण बा वो सूख ही ना जाए और अच्छी तरीके से पक ना जाए। अब अंत में हरी धनिया मिलाए दो में। अब देखा ब्रेड पे चाहे तो मक्खन लगाए ला और चाहे हरी चटनी लगाए ला, जोन मूंग दाल के मिश्रण तैयार किए हो ओका दूसरी ब्रेड पे फैलाए के ढक दा। अब चाहे तावे पे या देखा एक ठो बनावे वाला आवत है सैंडविच, ओमे डाल के हल्का सुनहरा हो तक या कुरकुरा हो तक सेक ला। इतना बढ़िया सैंडविच बनके तैयार होते हैं। अब ओका परोसे के तरीका यह है कि चाहे हरी धनिया पुदीना के चटनी बनाए ला, चाहे टमाटर के सॉस जोन होते हैं ओका बनाए ला, दही के साथ गरम गरम परोसा, इतना बढ़िया मतलब लागत है कि पूछा जी, मन एकदम चटपटा हो जाता है।
0: देखा तू बारिश के मौसम में बताओ हो, हाँ। मन करा था क्या बहन बनाए के और खाए ले।
1: बिल्कुल।
0: तो बिल्कुल। देखा गंगा, देखा इतना स्वादिष्ट तू हमका सैंडविच खिलाओ, तो आज हम अब हम तो का एक अच्छा सा एक गीत सुनाई थी और सुना थे लता मंगेशकर जी की आवाज में,
1: चलो सुना जाए।

0: कितना बढ़िया गीत संगीत और इतनी मनोरंजन वाली बातें और मतलब स्वाद वाली बातें, इतना सब कुछ होने के बाद कितना निक लगे थे ना पंडित एकदम उजियार भर रहा था।
1: आज सखियन खूब खुश हुई है ये कि देखा पनघट प्यार।
0: तो देखा अपन पनघट ऐसा जगहिए हैं कि हाँ। मतलब यहाँ सखियन बात भी करत थी, जानकारी भी दे थी, देखा गौने गीत गौने भी हो जाता है तो मन एकदम खुश हो जाता है ना।
1: अरे रंग बिरंगा कार्यक्रम है रंगों से भरा हुआ।
0: तो चला अब ये पे बनी हरन के एक ईमेल संदेश भी सुनाई दिया जाए।
1: तो चला सुना दिया जाए।
2: बातन में होत है अपनेपन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे, बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे। ये हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है। बहनी हरिन हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
1: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
0: हमार ईमेल एड्रेस है
3: panghatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है PANGHATPROGRAMME@gmail.com। panghatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
0: हमार व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। तो सखियन देर कौने बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
4: बेसब्री से इंतजार रही।
1: गंगा
0: हाँ बहनी,
1: तो चला जो ने समय हुई चला है, राम राम करे की बेला भी आ चुकी है।
0: हाँ बहनी, देखा अपन घटी पे आए के बाद जाए के तो ना मन कहा।
1: एकदम सही कहो,
0: कितना बढ़िया से गीत गाओ नहीं बातचीत देखा हम सब सुने।
1: हाँ हाँ।
0: लेकिन अब जाए के तो पड़त है।
1: हाँ हाँ।
0: कहे से कि समय देखा होत बाप चले
1: हम के? तो काहे लगे देखा तो वहां जाए के मन नहीं करे,
0: मन हमार बिल्कुल ना कहा था। ये ना तो सोचे थे थोड़ी देर और रह जाएगा, लेकिन देखा समय होएगी वो तो बहनी हरन से राम राम किया जाए।
1: राम राम बहनी हरन।

0: अभी ग्रामीण अंचल की महिलाएं अपना कार्यक्रम सुन रही थीं। पनघट ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस। India's first privately developed orbital rocket Vikram 1 launched successfully from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota. Prime Minister Narendra Modi congratulates the Skyroot Aerospace team, calls it a defining moment in India's space journey. Defence Minister Rajnath Singh says India's zero tolerance against

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची।

0: समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
3: Congratulations in space for facilitating
1: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
3: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी
0: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
4: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के 2 बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
1: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
0: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
1: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2,030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये

0: पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अक्षित वैद्यान।
1: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोकगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कल्पनाथ और साथियों के स्वर में सबसे पहले देवी गीत।

0: लोकगीत के कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं जगदीश यादव और साथियों के स्वर में सबसे पहले खेमटा।
1: रानी रोवे नया सुहा बहाई

लोकगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संगम लाल यादव और साथियों के स्वर में सबसे पहले निर्गुण।

इसी के साथ ही आज का लोकगीतों का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में ठीक 3 बजे हैं। हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। अगली सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, हमारे नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम धरती के गीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर धरती के गीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रही हैं संगीता राय के गाए लोकगीत। तो लीजिए सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए देवी गीत।

0: और इसी के साथ ही धरती के गीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

गुड इवनिंग प्रयागराज, मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट आरजे साक्षी, सिर्फ और सिर्फ 100.3 एफएम पर। उम्मीद है आप सभी पॉजिटिव और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, अभी जब मैं आ रही थी तो रास्ते में मैंने देखा कि एक जेब्रा क्रॉसिंग पर लोग रेड लाइट होने के बावजूद अपनी बाइक्स तेज़ी से निकाल रहे थे। मुझे देखकर बड़ा दुख हुआ कि हम लोग 2 मिनट बचाने के चक्कर में अपनी लाइफ को कितनी

आसानी से रिस्क में डाल देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं, अरे जल्दी से सिग्नल तोड़ देते हैं, पुलिस नहीं देख रही। लेकिन वो 2 मिनट की जल्दबाजी किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। इसलिए दोस्तों, आज के सेगमेंट में हमारा टॉपिक है, यातायात के नियमों का पालन करना क्यों ज़रूरी है, वाई फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स इज़ इम्पॉर्टेंट। आज हम सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, बल्कि आपके सामने कुछ ऐसे आई ओपनिंग फैक्ट्स और डेटा रखेंगे, जिन्हें सुनकर आप अगली बार हेलमेट लगाने या सीट बेल्ट बांधने में कभी भी आलस नहीं करेंगे। और आपको प्रोग्राम सुनने में भी आलस ना आए, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हमारे पहले सेगमेंट का पहला सॉन्ग प्ले हो जाए। बट उसमें भी ट्विस्ट है दोस्तों। आज हमारे खास सेगमेंट आज की शाम आपके नाम में, हमारे खास कलाकार हैं एक्टर शाहिद कपूर। तो आइए सुनते हैं उनके फिल्म दिल मांगे मोर का सॉन्ग गुस्ताख दिल।

वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों, जब हम ट्रैफिक रूल्स की बात करते हैं तो लोग इसे बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में रोड सेफ्टी की क्या स्थिति है? तो चलिए मैं आपको कुछ आंकड़ों के साथ बताती हूँ। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ यानी MORTH की ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में हर साल लगभग 4,80,000 से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स रिकॉर्ड होते हैं। और सबसे डराने वाली बात यह है कि इन हादसों में हर साल करीब 1.7 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और अगर हम इसे रोज़ाना के हिसाब से कैलकुलेट करें तो इस रिपोर्ट के जो है ये हमें साफ बताती है कि भारत के सड़कों पर हर घंटे लगभग 55 एक्सीडेंट्स होते हैं और हर घंटे 20 लोग अपनी जान गंवाते हैं। अब ज़रा सोचिए आप कि जब तक हमारा आज का ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तब तक कई घर उजड़ चुके होंगे। और इसी क्रम में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट तो ये कहती है कि दुनिया के कुल वाहनों का केवल 1% भारत में है, लेकिन दुनिया में रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौतों में भारत का हिस्सा लगभग 10% से 11% है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि हम यातायात के नियमों को सीरियसली लेते ही नहीं हैं। अगर हम फिर से MORTH रिपोर्ट के डेटा को देखें तो भारत में होने वाले कुल रोड एक्सीडेंट्स में से लगभग 70% से ज़्यादा हादसे सिर्फ और सिर्फ ओवर स्पीडिंग यानी तय सीमा से तेज़ गाड़ी चलाने की वजह से होते हैं। लोग सोचते हैं कि स्पीड में थ्रिल है, लेकिन सच तो ये है कि स्पीड में सिर्फ किल है। और दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कारण है गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना। आजकल लोग ड्राइव करते समय रील्स स्क्रॉल करते हैं, चैटिंग करते हैं। ये डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग आपके रिएक्शन टाइम को ख़त्म कर देती है। अगर हम टू व्हीलर्स राइडर की बात करें तो डेटा के अकॉर्डिंग रोड एक्सीडेंट्स में मरने वाले लोगों में लगभग 44.8% लोग टू व्हीलर चलाने वाले होते हैं, और इनमें से एक बहुत बड़ी संख्या उनकी होती है जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता है। लोग हेलमेट पुलिस के चालान से बचने के लिए पहनते हैं, अपनी जान बचाने के लिए नहीं। और गाड़ी में बैठने वाले लोग सोचते हैं कि पीछे की सीट पर सीट बेल्ट लगाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन सेफ्टी गियर्स फॉर एग्जांपल हेलमेट और सीट बेल्ट दुर्घटना के समय आपकी जान बचने की संभावना को 50% तक बढ़ा देते हैं। दोस्तों, आज हमने जो आंकड़े आपके सामने रखे उनका मकसद आपको डराना नहीं बल्कि जागरूक करना है। वर्ल्ड बैंक के स्टडी के अकॉर्डिंग रोड एक्सीडेंट्स का सबसे ज़्यादा असर हमारे देश के युवाओं 15 to 29 ईयर्स की एज पर पड़ता है। ये वो उम्र है जब देश और परिवार को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए यातायात के नियमों का पालन करना कोई चॉइस नहीं बल्कि हमारी ड्यूटी है। याद रखिए दोस्तों, घर पर कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। जब आप सड़क पर होते हैं तो आप सिर्फ अपनी लाइफ के लिए ज़िम्मेदार नहीं होते बल्कि सड़क पर चल रहे इंसान की सुरक्षा आपके हाथ में होती है। हमेशा याद रखिए, दुर्घटना से देर भली। तो आइए अब हम लेते हैं एक छोटा सा और म्यूजिकल ब्रेक हमारे आज के खास कलाकार, जैसा कि आपको पता है, शाहिद कपूर जी की फिल्म दिल मांगे मोर के इस गीत के साथ।

दोस्तों, आज जब हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो हमें लगता है कि यह कितनी स्वाभाविक बात है। लेकिन दुनिया के इतिहास में एक ऐसा दौर भी था जहां इंसान का रंग तय करता था कि उसे सम्मान मिलेगा या नहीं। वेलकम बैक इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट प्रेरणापुंज। आज हम एक ऐसे ही वैश्विक महानायक, एक ऐसे ही अदम्य प्रेरणापुंज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने केवल रंग भेद के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी बल्कि पूरी इंसानियत को माफ़ी और शांति का पाठ पढ़ाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मंडेला डे के नायक नेल्सन मंडेला जी की। हम जानेंगे कि क्यों उन्हें दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपिता और मदी

कहा जाता है, और कैसे उनका जीवन आज के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी मशाल है। दोस्तों, नेल्सन मंडेला जी का जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था। वे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद यानी अपार्थेट के खिलाफ संघर्ष करने वाले सबसे प्रखर नेता थे। रंगभेद एक ऐसी क्रूर व्यवस्था थी जहां अश्वेत यानी ब्लैक लोगों को उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स से वंचित रखा जाता था। आधिकारिक ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार मंडेला जी ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसके कारण उन्हें अपने जीवन के बहुमूल्य 27 साल जेल में बिताने पड़े। ज़रा सोचिए दोस्तों, 27 साल एक छोटे से कमरे में जहां न तो ठीक से रोशनी आती थी और ना ही कोई सुविधा थी। इनमें से अधिकांश वर्ष उन्होंने कुख्यात रॉबिन द्वीप यानी रॉबिन आइलैंड की जेल में पत्थर तोड़ते हुए बिताए। लेकिन जेल की वो चार दीवारें भी उनके हौसलों को तोड़ नहीं सकी। साल 1990 में जब वे रिहा हुए तो उन्होंने बदले की भावना नहीं दिखाई, बल्कि देश को जोड़ने का काम किया। साल 1993 में उन्हें विश्व के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और 1994 में वे दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक और अश्वेत राष्ट्रपति बने। भारत सरकार ने भी उनके महान योगदान को देखते हुए उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा था। 27 साल जेल में रहने के बाद जब कोई इंसान बाहर आएगा तो उसके मन में कितना गुस्सा होगा। लेकिन दोस्तों, मंडेला जी ने सरकार में आते ही श्वेत और अश्वेत दोनों समुदायों को गले लगाया और एक रेनबो नेशन का निर्माण किया। उन्होंने साबित किया कि असली ताकत नफरत करने में नहीं बल्कि माफ़ करने में है। दोस्तों, उन्होंने कहा था, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। उनका मानना था कि कोई भी इंसान जन्म से किसी दूसरे इंसान के रंग, धर्म या बैकग्राउंड से नफरत नहीं करता। नफरत सीखी जाती है, और अगर नफरत सीखी जा सकती है तो प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। 2013 में 95 वर्ष की आयु में यह महान आत्मा हमेशा के लिए शांत हो गई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने उनके सम्मान में हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे घोषित किया, जो हमें याद दिलाता है कि हम सभी में दुनिया को बदलने की क्षमता है। तो आइए हम अब सुनते हैं हमारे प्रोग्राम का अगला गीत, हमारे आज के खास कलाकार शाहिद कपूर की फिल्म इश्क विश्क से।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: दोस्तों, अब वक्त हो गया है उस खास कलाकार के बारे में बात करने का जिनके गीत आप आज के कार्यक्रम में सुन रहे हैं, यानी बॉलीवुड के एवरग्रीन चॉकलेट बॉय और शानदार डांसर शाहिद कपूर। लेट्स टॉक अबाउट द बॉय नेक्स्ट डोर हु बिकेम द सुपरस्टार। दोस्तों, शाहिद ने अपने करियर की शुरुआत एक बैकग्राउंड डांसर के रूप में की थी। क्या आपको याद है ताल और दिल तो पागल है जैसी फिल्मों में श्यामक ड्रावर की ट्रूप में थिरकने वाले उस लड़के ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक दिन सिल्वर स्क्रीन पर राज करेगा। उनकी पहली फिल्म इश्क विश्क थी और उनका कॉलेज बॉय वाला चुटकुला अंदाज सबको भा गया। उसी मासूमियत और डांस के जादू को याद करते हुए हमने अभी हाल में सुना था उनकी फिल्म का गीत इश्क विश्क प्यार व्यार। और अब बारी है एक और एनर्जेटिक
4: मास्टरपीस।
5: बोले तो
6: हाट हाट
7: हवा यार, सौदा सौदा।
5: ओहो,
8: दोनों डील करा सील।
5: टाइट, टाइट, वेरी टाइट।

वेलकम बैक दोस्तों, यू आर लिसनिंग टू आज की शाम आपके नाम। उम्मीद है आप मज़े में होंगे। तो हम बात कर रहे थे शाहिद कपूर की। शाहिद इज़ नोन फॉर हिज वर्सटैलिटी। एक तरफ विवाह जैसी फिल्म में संस्कारी प्रेम का किरदार, तो दूसरी तरफ कमीने में डबल रोल करके उन्होंने सबको चौंका दिया। लोग कहते थे कि वो सिर्फ रोमांटिक फिल्में कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हैदर और उड़ता पंजाब जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा कर सबको गलत साबित कर दिया। फ्रॉम अ चॉकलेट बॉय टू इंटेंस कैरेक्टर्स, उनका यह सफ़र सच में इंस्पायरिंग है। चलिए इसी बात पर उनकी फिल्म का एक बेहतरीन रोमांटिक ट्रैक सुनते हैं।

और अब हम आ गए हैं आज के इस स्पेशल सेगमेंट के आखिरी पड़ाव पर। डांस हो, एक्टिंग हो या फिर स्क्रीन पर अपना 100% देना, शाहिद ने हमेशा अपनी क्राफ्ट को ऊपर रखा है। दोस्तों, हाल के सालों में उनकी फिल्म कबीर सिंह ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उनकी परफॉर्मेंस फिनोमिनल थी। शाहिद की सबसे बड़ी खासियत है उनका डांस और उनकी एनर्जी, एक जो आज भी वैसी ही है जैसे उनके करियर के शुरुआत में थी। एक कलाकार के रूप में उनका यह सफ़र हमें सिखाता है कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। तो चलिए शाहिद कपूर का एक और धमाकेदार डांस नंबर। कीप लिसनिंग, कीप रॉकिंग।

वेलकम बैक दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, जो कि है प्रश्न का। और इस सेगमेंट में, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपसे प्रश्न पूछते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमें अपना उत्तर हमारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। और हमारा कल का प्रश्न था, विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो इसका उत्तर है दोस्तों, प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 2024 के लिए भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 52वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से मार्च 2025 में सम्मानित किया गया था। दोस्तों, वह यह पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले और हिंदी साहित्य के 12वें लेखक थे। और दोस्तों, उनका जन्म 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ में हुआ था। साहित्य लेखन के अलावा वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में कृषि विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर भी थे। उन्हें साहित्य में जादुई यथार्थवाद यानी मैजिकल रियलिज्म का प्रतिपादक माना जाता है। उनकी रचनाओं में आम आदमी की सादगी, भावनाओं और समाज की गहरी झलक मिलती है। अगर उनकी प्रमुख कृतियों की बात करें, उनके कविता संग्रह की बात करें, तो लगभग जय हिंद, जो कि 1971 में आई, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, ये उनकी कविताएं हैं। और उनके प्रमुख उपन्यास की बात करें तो उनमें आता है नौकर की कमीज़, जो कि 1979 में आई। इस प्रसिद्ध उपन्यास पर फिल्मकार

रिकॉल द्वारा फिल्म भी बनाई जा चुकी है, और अलग उनके और भी उपन्यास हैं, जैसे दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे। और दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे आज के प्रश्न की, तो वो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? आप हमें अपना उत्तर भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि है yuvvani@gmail.com पर। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि है 8004926250 पर। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम जैसा भी लगता हो, आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि आपके फीडबैक हमें मोटिवेट करते हैं। और अगर आपका कोई सजेशन हो, वो भी आप हमें दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। मुझे यानी साक्षी पांडे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निजी क्षेत्र के पहले कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि यह निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस उपलब्धि पर स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। यह हादसा रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के साथ बचाव अभियान में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

0: संसद का मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जुमागाछा स्थित सीमा सुरक्षा बल शिविर का दौरा किया और बीएसएफ कर्मियों से बातचीत की। श्री शाह ने पौधा भी लगाया और प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर भी चर्चा हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि यह रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कांग को परात 41 डिग्री चया मगावर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिलेगा। बेस्ट डायरेक्शन का पुरस्कार आनंद एल रॉय को स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए दिया जाएगा। और खेलों में पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार देर रात 2:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती ये आप सुनेंगे रात 9:30 बजे। संगीत का खेल भारतीय कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम होगा जिसमें किसान भाई सुनेंगे परिवार कल्याण की बात कार्यक्रम। इसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे फिजियोथेरेपी कब और कितने लाभप्रद। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ दुबे से बातचीत होगी सुरेश कुमार की। शाम 7:31 पर डॉक्टर वसंत कुमार त्रिपाठी की वार्ता होगी जन कवि नागार्जुन की रचनाओं में सामाजिक चेतना। और सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर दिव्या श्रीवास्तव के गाए भजन और गीत प्रसारित किए जाएंगे। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। संसद के समक्ष मुद्दे ये कार्यक्रम होगा रात 9:30 बजे। रात 10 बजे रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम होगा और दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनेगा श्याम सिंह से की गई बातचीत। बैंगन और मिर्च की खेती में सामयिक कृषि कार्य। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर राधे श्याम कुशवाहा की वार्ता होगी ऑस्टियोपोरोसिस कारण लक्षण और उपचार। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन हम आपको सुनवाएंगे सुबह 7:30 बजे और दोपहर 12:15 बजे। नमस्कार प्रयागराज ये कार्यक्रम होगा सुबह 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में नमिता यादव के गाए भजन और गीत सुनिएगा सुबह 9:50 पर। अंकिता चतुर्वेदी के गाए भजन और गीत शाम 7:45 पर प्रसारित किए जाएंगे। आशा द्विवेदी शिवजीत गौतम और साथियों के गाए लोकगीत आप सुनेंगे लोकमाधुरी कार्यक्रम में सुबह 10:05 पर। आस्था सिंह वंदना सरोज और साथी और ओंकार नाथ इनके गाय लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे दिन में 2:30 बजे। बच्चों का कार्यक्रम बाल संघ होगा दिन में 11:15 बजे और बाल गोपाल कार्यक्रम शाम 5 बजे होगा। इसमें बच्चे सुनेंगे

नीरज त्रिपाठी से बाल कविताएं। श्रोता अपने अनुरोध पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनेंगे। हेलो अनुरोध, 1:15 पर प्रस्तुति मधु कुमार की होगी। शाम 5:15 युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी। शाम 6:30 ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम पंचायत घर होगा। इसमें ग्रामीण भाई सुनेंगे डॉक्टर सर्वेंद्र कुमार की वार्ता, DSR तकनीक द्वारा धान की खेती। श्रोता अपने पत्रों और संदेशों के उत्तर सुनेंगे। चिट्ठी आई है कार्यक्रम में। रात 8:00 श्रोताओं के पत्रों के उत्तर देंगी नेहा गुप्ता और आपके साथ होंगी वंदना राठौर। आज इतवार है। इस कार्यक्रम में रात 8:30 सुनिएगा सूरज कपूर की लिखी झलकी, नए किराएदार। तो ये थे कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। रक्तदान तकलीफ दे नहीं।

बजे सुनिएगा सूरज कपूर की लिखी झलकी नए किराएदार। तो ये थे कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। रक्तदान तकलीफ दे नहीं है, इसे देने में समय भी नहीं लगता। इससे किसी के जीवन की रक्षा हो सकती है, वो व्यक्ति आपका अपना भी तो हो सकता है। कृपया रक्तदान करें। रक्तदान महादान। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देशगान संवेद स्वरों में।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।
3: जे हम तुम चोरी से बंधे एक

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: तू शायर है, मैं तेरी शायरी।
2: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
1: तू आशिक है,
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
4: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। भारतस्य प्रथमं निजक्षेत्रे विकसितं कक्षीय प्रक्षेपणयानं विक्रम 1 श्रीहरिकोटा स्थितात् सतीश धवन अंतरिक्षकेन्द्रात् प्रणोदन प्रक्रियां सम्पूर्य सफलताम् अगात्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्कैरूट वैज्ञानिक वृन्दः श्लाघितः। सहैव विक्रम 1 इत्यस्य साफल्यं भारतस्य अंतरिक्षयात्रायाः ऐतिहासिकः क्षणः इति उद्घोषितम्। आतंकवादं प्रति भारतस्य शून्य सहिष्णुता न केवलं काचन उक्तिः अपितु कश्चन दृढः संकल्पः इति रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अवोचत्। गगनगर्जनं पुरस्सरं वृष्टेः कारणात् उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम राज्येषु श्वः यावत् अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया संचेतना। अपि च टोक्यो नगर्यां जापान ओपन प्रतियोगितायाः महिला एकल वर्गस्य अंतिम द्वन्द्वे ससंभ्रमं प्रविष्टा पीवी सिंधुः। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतस्य प्रथमं निजविकसितं कक्षीयान्तरिक्षयानं विक्रमप्रथमम् अन्तिमप्रणोदनप्रक्रियां सम्पूर्य कक्षायाम् उपग्रहान् सफलरूपेण प्रवेश्य स्वकक्षां प्राप्नोत्। अस्य यानस्य प्रक्षेपणम् अद्य मध्याह्ने 5:25 आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीहरिकोटायाः सतीश धवन अन्तरिक्षकेन्द्रात् समजायत।
5: 2-1-0
6: And we have lift off of Vikram 1, India's first private orbital launch
5: lift
6: vehicle.
5: Off, normal.
6: Vikram 1 ने अपनी उड़ान भरी प्रथम चरण का प्रज्वलन।
4: अस्माकं वार्ताहरेण विज्ञापितं यत् अनेन ऐतिहासिक पदक्षेपेण भारतं निजकक्षा प्रक्षेपण क्षमतां प्राप्तवत्सु विश्वस्य देशेषु तृतीयान्यतमो संजातः। मिशन आगमन इत्याख्येन अभियानेन विकसितम् एतद् अंतरिक्षयानं लघु उपग्रहाणां कृते अल्पव्ययुक्तं प्रक्षेपण सेवायै वर्तते। भारतीय अंतरिक्ष उपक्रमस्य जनकः डॉक्टर विक्रम साराभाई इत्याख्यस्य नामना व्यपदिष्टस्य अस्य विक्रम 1 यानस्य रचनायां त्रिस्तरीय दृढ प्रणोदक चरणानि सहैव अमोघ कक्षा प्रवेशाय रमण इत्याख्यः देवेन्द्रन गन्त्रं प्रयुक्तमस्ति। इदं यानम् उपग्रहान् पृथिव्याः निम्नकक्षायां स्थापयितुं पूर्णतया सामर्थ्यं भजते। अन्तरिक्षकक्षायाम् अस्य सफलप्रवेशात् परं प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी दूरभाषमाध्यमेन स्कैरूट एरोस्पेस दलस्य वैज्ञानिक

0: अनेकानां च अभिनन्दनं व्याहृतवान्। श्रीमोदी न्यगादीत् यत् विक्रम वन यानस्य अयं सफलोत्कर्षः अन्तरिक्षक्षेत्रे देशस्य आत्मनिर्भरता यात्रायां कश्चन प्रमुखः कीर्तिस्तम्भो वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् इयम् ऐतिहासिकी उपलब्धिः देशस्य यूनः नवीनोन्मेषाय अग्रे आगन्तुं प्रेरयिष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अब्रवीत् यत् भारतस्य आतङ्कवादं विरुध्य असहिष्णुता न केवलं वक्तव्यं नास्ति, अपि तु कार्याचरणस्य कश्चन दृढसङ्कल्पो वर्तते। अद्य नवदिल्ल्यां फॉरेस्ट फर्स्ट कॉन्क्लेव इत्यत्र सम्बोधयन् श्रीसिंहः स्पष्टीकृतवान् यत् भारतम् आतङ्कवादिनः न केवलं स्वसीम्नि प्रहरिष्यति, अपि तु आवश्यकतानुसारं तेषामाश्रयेषु प्रविश्य अपि दण्डयिष्यति। सः अभाषत यत् सिन्दूराभियानावधौ समग्रं विश्वम् अस्य साक्षी अभवत्, यत् तदभियानं तान्त्रिकयुद्धपद्धत्याः कञ्चन उत्कृष्टम् उदाहरणम् आसीत्।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: मंत्री सविशेषम प्रख्यापितवान यत् विगतेषु द्वादशसु वर्षेषु नरेन्द्र मोदी सर्वकारेण रक्षाक्षेत्रस्य पुनरुद्धारः सुदृढीकरणं च स्वस्य शीर्ष प्राथमिकतासु स्वीकृतम्। श्रीसिंहः अकथयत् यत् सर्वकारेण न केवलं भारतस्य रक्षाक्षेत्रं सुदृढीकर्तुं सङ्कल्पः धृतः, अपि तु रक्षा आवश्यकतानां पूर्तये देशस्य आयातनिर्भरतां न्यूनीकर्तुमपि दृढः प्रयासो विहितः।
1: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
0: संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। बहुभ्यः दिवसेभ्यः नवदिल्ल्याः जन्तर मन्तर प्राङ्गणे अनशने निरतः सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वाङ्चुकः ह्यः रात्रौ आवश्यक चिकित्सकीय सेवायै सर्वकारीय चिकित्सालयं प्रति नीतः। नवदिल्ल्याः आरक्षि उपायुक्तः सचिन शर्मा अवोचत् यत् श्री वाङ्चुक इत्यस्य उत्तरोत्तरं क्षीयमाणं स्वास्थ्यं विचिन्त्य चिकित्सकानां विशेषज्ञ परामर्शेन तथा दिल्ली उच्च न्यायालयस्य आदेशानुपालनार्थं च सः चिकित्सालयं प्रति स्थानान्तरितः। तस्मिन्नेव समये सफदरजंग चिकित्सालयस्य मुख्या अधीक्षिका डॉ. चारु बम्बा संसूचयामास यत् श्री वाङ्चुकः सम्प्रति निरन्तर चिकित्सकीय निरीक्षणे अस्ति तथा तस्मै समुचितः उपचारः प्रदीयते। डॉक्टर बम्बा इदमपि विशदीकृतवती यत् सः पूर्णरूपेण सचेतनो वर्तते। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन श्वः यावत् उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम राज्येषु अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रख्यापिता। ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय छत्तीसगढ़ उत्तराखंड राज्येषु अपि अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विभागस्यास्य आधिकारिक विवरणानुसारं अद्य बिहार मध्यप्रदेश पूर्वीय उत्तरप्रदेश हिमाचल प्रदेश झारखंड कर्नाटक केरल माहे ओडिशा राज्येषु तथा समस्त पूर्वोत्तर प्रांतेषु अतिवृष्टिः संभाव्यते। अनेनैव सह श्वः यावत् तटीय आंध्रप्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा क्षेत्रेषु वज्रपात मेघ गर्जन पुरस्सरं तीव्र झंझावातस्य अपि महती आशंका वर्तते। तत्रैव उत्तर भारते

0: दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब प्रांतेषु अद्य नागरिकाः तीव्र उष्ण आद्र वातावरणेन नितरां संतप्ताः भविष्यन्ति। टोक्यो नगर्यां जापान ओपन प्रतियोगितायाः महिला एकल वर्गस्य उपांत्य द्वंद्वं विजित्य द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री भारतस्य सुप्रसिद्धा क्रीडिका पीवी सिंधुः अद्य अंतिम चरणे स्वस्थानं सुरक्षितं अकरोत्। तस्याः प्रतिद्वंद्वी चीन देशीया चेन यू फेई प्रतियोगितायाः द्वितीय चक्रे अकस्मात् अस्वस्थता कारणात् क्रीडांगणं परित्यक्तवती, येन सिंधु अयाचितं विजयम् अवाप्य अंतिम चरणं प्रति सोत्साहं प्रातिष्ठत। अस्मिन् द्वंद्वे सिंधुः प्रथमं चक्रम् 21:19 इत्यांकांतरालेन विजित्य द्वितीये चक्रे अपि 15:10 इति अंकैः अग्रे धावन्ती आसीत्, यदा चीन देशीया क्रीडिका स्पर्धायै असमर्था संजाता। जापान ओपन उपाधिं समलंकर्तुं बद्ध परिकरा पीवी सिंधुः श्वः अंतिम चरणे जापान देशस्य अकाने यामाचुची इत्यनया सह क्रीडिष्यति। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। किसान भाई अपना कार्यक्रम सुने पंचायत घर।

0: पंचों राम राम।
1: कहो बद्री भैया, का हाल चाल बाबू?
0: अरे सुरेमन भैया, अभी समझा कि जैसे बारिश आए बा, खेते के साथे मन एकदम हरियर हो गए बा भैया।
1: अब बद्री भैया देखा, मन कहे ना हरियर होए।
0: हाँ
1: अब देखा आपन जौन है इटेम जौन है धान की जौन फसल बा,
0: हाँ हाँ
1: नर्सरी जौन किसान भैया बहनी हरिन तैयार कहले हैं।
0: हाँ
1: तो भैया देखा अपन नर्सरी जौन तैयार बा, अब साथे साथ जौन चतुर किसान रहे भैया उनके तो रोपाई धान के हो गए
0: भैया। हम देखे कि एक बार मनाई कहें कि देखा तनिक जिसे कहते नहीं अंग्रेजी में के रिस्क ले लिया, तो एक बार तनिक के किसान भाई और हैं साहस दिखाएं कहें देव राजा तो उबई करी हैं, तो तनिक के दो चार बीघा तो लगाएं ले, बाकी जब पानी आ जाए तो लगावा जाए।
1: हाँ। अब देखा जो भगवान की ओर देखा जो आशा लगाएं बा किसान भैया बहनी है।
0: हाँ
1: अब देखा ही टेम जो ने बूंदो बांदी होते कम बरसा भी होते है, तो
0: हाँ
1: किसान भैया बहनी के हरन जौन है मन हरियर बा, और साथे साथ भैया अपन जौन किसान भैया बहनी हरी न रोपाई के हिले हों, अपन तैयारी करके अपन धान के जौन है रोपाई करें, ताकि अपन देखा यह जौन है साल भर के जौन है खाए पिए में देखा सबके थाली में जौन है देखा सफेदी दिखाई दे थे हो।
0: सही कहा सुरेमन भैया। और भैया देखा धान के रोपाई के साथे साथे एक चीज के किसान भाई बहुत ध्यान दें कि यह समय भैया जो हमारे बरसात के सब्जी बची है, चाहे वो लौकी होए, नेनुआ होए, तरोई होए, करेला होए, देखा जे मचान विधि से खेती करे हैं उनके लिए तो यह समय अच्छा है कि जमीन पे पानी है लेकिन उनका जो फल है वो ऊपर लटकत है। लेकिन जेकर भैया जमीन पे फल है, आप ऐसा बारिश होए तो आप अपन जमीन यानी खेते का ऐसा निरीक्षण करा, अगर पानी भैया खेते में तनिको भरत है तो निकासी की व्यवस्था 1 घंटे के अंदर हो जाए पूरी।
1: कही गया हो बद्री भैया। अब किसान भैया बहनी हैं देखा जौन आजकल देखा बहुत सचेत बा, बहुत जानकार हैं अपन किसान भैया बहनी हरें। भैया देखा जौने माँ ढालदार खेती बा कि देव राजा बरसा करें, और बरसात से जौने कुछ देर में सारा पानी जौन है कैसे निकल के बाहर हो जाए, तो वहीं पर देखा अपन साग सब्जी के खेती कर रहे हैं। और साथ ही साथ जौन मचान वाली बात बताया हो, मचान वाली किसान खेती जौन है आजकल बहुत किसान भैया बहनी हरिन हैं, हम देखे थे अपने गांव के इर्द गिर्द बा भैया देखा सब मचान का है डोरी बांध बांध के अपन देखा तार जौन है ना पतर की बा तार होती बा

0: तो तारो बांध बांध के जौन है अपन ओहिमा देखा करैला है, नेनुआ है, तरोई है, अपन फैलाए फैलाए के अब साथे साथ लौकी के जौन बा अपन।
1: एकदम सुरेमन भैया, एकर सबसे बड़ा हम लाभ ही देखी थी कि
0: हाँ
1: देखें आप लौकी अगर आप सामान्य तरीके से जमीन पे खेते पुगाया है तो
0: हाँ
1: आप देखा तो ही कि एक बीता का लौकी भाई ओकरे बाद टेढ़ होप शुरू हो जात है।
0: कहेगा
1: लेकिन भैया मचान विधि में सबसे बढ़िया यह फायदा बा कि चूंकि हमारे फल ऐसे आसमान से जमीन की ओर लटका रहा था
0: हाँ
1: तो वो टेढ़ा हो के बजाय लंबी हो था ओहमा
0: हाँ
1: बहुत बढ़िया मोटाई आवा था, लंबाई आवा था, चमक बहुत बढ़िया रहा था और स्वाद में भैया उतनी बढ़िया बनी रहा था।
0: हाँ ये
1: अब
0: तो
1: दूसरी चीज भैया, कीड़ा लागे का चांस जौन रहा था विकल्प कि भैया जमीन में आए सड़न गलन आवत या आए कीड़ा
0: हाँ
1: ज्यादा लागत है उहू से बहुत ज्यादा सुरक्षित रहा था।
0: ये तो बहुत निक बात बताया हो बद्री भैया। और देखा अपन जौन वैज्ञानिक भैया हैं, देखा अपन जानकार हैं खेती किसानी के और साथ साथ तरह तरह के शोधों करत हैं, तो अपन किसान भैया बहनी हैं देखा अपने जौन वैज्ञानिक भैया हैं इनसे भी सलाह मशविरा कर लें। और जौन टेम तरह तरह के जौन साग सब्जियन में तरह तरह के रोग है, हाँ कीट पतंगा भी लाग जात है, बड़ा नुकसान होत है, 4 पैसा की जौन आमदनी के स्रोत बा वह में जौन है देखा कमी आवत है।
1: सही बात है।
0: तो किसान भैया बहनी हैं भैया देखा अपन साग सब्जी खेती का भी जौन है निगरानी करत रहें, और कोनो तरह के जौन है रोग बयार लागे कीड़ा पतंगा लागे तो वह के रोकथाम का उपाय भी सोचें।
1: बिल्कुल। और सुरेमन भैया एक सलाह इसमें और दे चाहब कि देखें इस बारिश के मौसम में भैया जैसे कि कीट पतंगा का आप बात करें
0: हाँ
1: तो एमा अगर आप चाह तो कोनो आवश्यक नहीं है कि मौसम में आप रसायन का छिड़काव करा।
0: हाँ
1: अगर
0: हाँ
1: आप भैया घर में राख वगैरह रखे हा तो ये समझें कि ये मौसम में राख का इस्तेमाल जैसे पत्ती पे हो तो जौन कीड़ा मकोड़ा आए के पत्ती पे बैठा रहा थे
0: हाँ हाँ
1: जब हम राख डाल दी थी भैया तो उनकर जौन प्रमाण मिले के रहा था प्रतिक्रिया हो के रहा था वो भैया कम हो जाते यानी हमारे पौधा और पत्ती सुरक्षित रह जाते हैं केवल राख के छिड़काव से।
0: हाँ
1: तो केमिकल का इस्तेमाल जितना कम करी है भैया यानी रसायन का इस्तेमाल जितना कम करी है ये मान के चले आप जेका वो फल दे वाला है वो सब्जी दे वाला है बेचे वाला है खाए वाला भैया स्वस्थ रही और आपक मन में संतोष रही कि हमारा लागत हमारा कम लागबा और मुनाफा ज्यादा हो जाता।
0: हाँ हो बद्री भैया ये तो बहुत नेक बात बताया हो कि आपन जो है लागत भी जो है कम लागे, और साथ ही साथ भैया दौन जोन बात बताया हो कि स्वास्थ्य पर जोन है जोन तरह तरह की दवा दर्पण से भी देखा जोन साग सब्जियन की खेती कर रहे हैं, और भैया देखा वो चाहते कि हमार फल जौन है बड़ा जौन है फलदार जौन है खूब बड़े हुए देखे में बहुत बहुत अच्छे लाग गए, हाँ तो चमकदार रहें, तो बहुत से ऐसे भैया तरह तरह के दवा दर्पण का प्रयोग करत हैं। तो हम तो ये कहा कि ऐसे भैया दवा दर्पण का इतना प्रयोग न करें कि जौन स्वास्थ्य पर जौन है देखा दुष्प्रभाव पड़े,
1: एकदम
0: हाँ
1: एकदम
0: और शरीर में देखा तरह तरह के नाना प्रकार के जौन है रोग भी पैदा हुई जात हैं। तो अब जैसे देखा ही टेम बरसात के महीना बा, अब टेम देखा तरह तरह के जौन अपन खेती किसानी में भी और लाग लपटियान है, साथ ही साथ देखा सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, साथ ही साथ तरह तरह के देखा अपन जौन है यह अपन त्वचा में देखा तरह
1: बिल्कुल
0: तरह के
1: बिल्कुल।
0: जौन है खुजलाहट पैदा हुई जात है,
1: ये सुरेमन
0: तरह तरह
1: भैया
0: के रोग पैदा हुई जात
1: आप
0: है।
1: बहुत अच्छी बात कहे। देखा बरसात में भैया जो रोग आवा था जैसे कि
0: हाँ
1: आप वहीं देखा पंचायत शुरू से पहले आप संचारी रोग के बारे में बतावत रहा
0: हाँ हाँ
1: तो देखे भैया ये मौसम में अपने पास एक प्राकृतिक रूप से बड़ा अच्छा विकल्प मौजूद रहा था
0: हाँ
1: ओका कहा थी नीम का पेड़ का पाती और निमकौर।
0: हाँ
1: देखें आप निमकौर को भैया सीधा इस्तेमाल आप कह सकते हो का भिगवे के एक तरह से आप जैसे रासायनिक छिड़काव करत है
0: हाँ
1: ओकर इस्तेमाल आप अपने सब्जियन की खेती में इस समय कह सकते हैं और नीम के पत्ते के इस्तेमाल भैया आप नहाते समय आप अगर ऊपर हल्का उका गर्म करके पानी उबाल लें और
0: हाँ
1: नीम को हमारा रस चला जाए पत्ती के चला जाए तो इस समझें कि जो आज के ज़माने में मनई दुनिया भर का चीज़ खरीदा थी इनकी डालन कई सारा नाम है प्रोडक्ट का ही का बताइयो का तो वो सबसे आपकी जो प्राकृतिक रूप से भैया आपके
0: हाँ
1: लिए बहुत बढ़िया पानी तैयार कर दी और जब भी आप चलें चाहे हाथ मुंह धोवे खोए और आप कई एक चीज और भैया अगर सरसों तेल लगाए ले भैया गोड़े में
0: हाँ हाँ
1: खास करके जितना हिस्सा आपका पानी में डूबे वाला है
0: हाँ हाँ
1: वो तेल आपको इतना बढ़िया फायदा करी भैया कि जो उन बेवाय फाटे कहा है और माँ फुंसी फुड़िया हो जाए कहा है उस सबसे भैया बड़ा आपका लाभ हो जाए।
0: हाँ हो बद्री भैया ये तो बहुत पते की बात बताया हो। जोन देखा आपन बहुत से देखा भैया बहनी हरिन धान के रोपाई

0: करत हूँ। देखा अपन पानी में जौन है, देखा अपन यह गोर जौन है डूबा रहा था,
1: हाँ
0: तब यहाँ तक कि देखा पानी से कंदरी का ये जो रोग हो जाते
1: सही
0: वो,
1: बात है।
0: हाँ उसे अपन चमड़ी जौन है देखा सफेद हो जाते
1: और
0: वो, ढील
1: खासकर
0: हो
1: भैया
0: जाते
1: उंगली के
0: है,
1: बीच में देखा वो सड़प शुरू हो जाते है।
0: हाँ अब बहुत जौन है खुजला तो है भैया देखा बहुत दर्दों करत है। तो अपन किसान भैया बहनी हरे अपन देखा शरीर का जौन है ध्यान रखें, ऐसे न कोनो तरह की समस्या ना आवे कि भैया देखा अपने शरीर में तरह तरह के रोग पैदा हुई जाए। और ये हो बद्री भैया
1: हाँ भैया
0: आज देखा शनिचर के दिन आए हो,
1: हाँ हाँ
0: अब
1: हाँ
0: देखा आज अपने किसान भैया बहनी हने का अपन स्वास्थ्य संबंधी सचेत रहें, हाँ ध्यान रखें, परिवार कल्याण की बातों हुई,
1: हाँ
0: हाँ और साथ ही साथ हम तो ये कही थी कि आज अपने परिवार कल्याण की बात में फिजियोथेरेपी और कब और कितना लाभप्रद बा डॉक्टर सुरेंद्र नाथ दुबे से भैया देखा बातचीत भैले बा, तो एका किसान भैया बहनी हरिन का सुनवावा जाए
1: हाँ भैया
0: मुला ए हो
1: हाँ
0: देखा ढोल नगड़िया बाज जाए। और किसान भैया बहनी हरिन सोचत हुई का देखा आगे जौन है आबे सुरताल की बात हुई जाए तो फिर आगे बात बत कही होए।
1: बहुत बढ़िया बात कहें भैया। पंचायती के तो शुरुआत अगर जब तक ढोल मजीरा ना बज जाए पंचायत लागत नहीं बैठी है।
0: हाँ हाँ
1: तो एक बार भैया पंचायत में देखें का सुनवाओ तहाँ, एक बार पंचायत में सबसे पहले लोकगीत होइन जाए।
0: हाँ बद्री भैया देखा जगदीश यादव संघातिन के जौन बा एक विकास गीत बा,
1: अच्छा भैया
0: तो पहले किसान भैया बहनी हरिन का सुनवाए दिहल जाए।
1: हाँ भैया सुनाओ।
0: हाँ

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: बद्री भैया, देखा जवन है जगदीश यादव संघातिन के विकास गीतो किसान भैया बहनी है सुनी।
4: और भैया कितना बढ़िया लागा था ना।
3: हाँ
4: भैया, ऐसा लागा था ना कि देखा जैसे खेत एक मेड़े बैठा रहे।
3: हाँ।
4: और गए घरे सोए और फिर से जैसे लोग गीत बाजा फिर उठे और फिर खेते में पहुंच गए और लहलहात फसल देख के ना भैया ऐसा लागत है कि साल भर एक मेहनत एकदम
3: कहेगा। बद्री भैया देखा गीत गम नहीं सुने से जम।
4: हाँ।
3: देखा ये तो जौन शरीर के जौन मन के थकान होत बा।
4: हाँ।
3: वहाँ दूर हुई जात है
4: एकदम भैया। और जैसे जैसे ढोल बाजा था ना गुड़ो वैसे बाजा लागत और हथवा थिरके लागत है, मन करे से चला चार कोन और गोड़े आई।
3: कहेगा बद्री भैया।
4: हाँ।
3: अब देखा जौन अपन किसान भैया बहनी है इनका जौन परिवार कल्याण की बात बतावत रहे।
4: हाँ।
3: कि भैया देखा अपन जोन परिवार बा, परिवार में अगर देखा सब निरोगी रहें, कोनो तरह के जौन है रोग ना घेरे, तो अगर परिवार स्वस्थ रहत है तो भैया देखा परिवार में खुशहाली रहत।
4: सही कहे भैया। ए भैया हम एक चीज और कहा कि देखें इस समय जोन भैया है ना।
3: हाँ।
4: देखें आजकल भैया सुबेरे जोन उठे परंपरा गांव में रही कि सूरज उठाई से पहले यानी भगवान आवत आए तो लाल लाल दिखाए से पहले घरे के चाहे छोट के लड़कियां हो चाहे बड़वार हो चाहे बुजुर्ग हो।
3: हाँ।
4: सब उठ जात रहे। ओकर एक फायदा भैया बड़ा रहा था कि हमका लोग को विटामिन डी ना जोन रहा वो बड़े आराम से हर एक व्यक्ति का हर एक घरे में व्यक्ति मिल जात रहा। और चाहे विटामिन डी हो चाहे विटामिन B12 हो उसी का होता रहा भैया कि लोग को शरीर में जो हड्डी रहत रही।
3: हाँ।
4: वो बड़ी मजबूत रहा है।

0: ना होए। लेकिन आजकल देखें भैया, छोट के दुर्घटना होती है, लोग हड्डी टूट जाती है, अचानक से लोगन के हड्डी को पूरे शरीर में सूजन आ जाती है, तो पता चलता है इनमें विटामिन का कमी हो गया है। तो
1: कहिए।
0: लोग भैया दौड़त हैं, फिजियोथेरेपी करावत हैं, कहूँ गांठ पकड़े आए, कहीं कंधा पकड़े आए, कहूँ जोड़ पकड़े आए, और लोग दौड़ दौड़ के फिजियोथेरेपी करावत हैं। लेकिन ये नहीं समझ पाते कि
1: हाँ
0: कौने चीज में फिजियोथेरेपी करावे कहा है। अरे विटामिन कम आए तो फिजियोथेरेपी करूबे तो और गड़बड़ हो जाए।
1: कह गए। अब देखा अपन शरीर के जौन, देखा जौन तत्व बा,
0: हाँ
1: वो तत्व में अगर कौनो तरह की कमी आई तो भैया शरीर के देखा अपन हड्डी पसुई जौन बा ई अपन कमजोर तो हुई जाई।
0: बिल्कुल भैया।
1: हाँ अब खान पान का विशेष किसान भैया बहनी हरिन ध्यान रखते हैं।
0: हाँ
1: हाँ अब देखा जैसे पालकी बा, पालक बा, साथे साथ भैया देखा अपन दाल बा, हाँ दूध है, तरह तरह के जौन अपन पौष्टिक आहार बा, तो ज़्यादा देर ज़्यादा जौन है प्रयोग करें। काहे कि खेती किसानी में मेहनत मशक्क़त पड़त बा,
0: कहन
1: और
0: सही
1: शरीर अगर देखा अपन कमजोर रही तो
0: बिल्कुल।
1: भैया खेती किसानी के काम धाम होए, चाहे अपन देश के देखा, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र में होए, चाहे देश की सुरक्षा क्षेत्र में होए, चाहे लड़का का देलन देखा इस टाइम जो है पढ़ाई लिखाई में भी बड़ा मेहनत लागत है, बड़ा बल लागत है, तो आपन लड़कन का देलन भी जो है मजबूत रहें, स्वस्थ रहें, खान पान का विशेष ध्यान रखें भैया, पहले से सचेत रहें कि कौनो रोग बिरामी न घेरे।
0: बिल्कुल भैया। तो देखें भैया, अगर कोनो किसान भाइयन के फिजियोथेरेपी करावे का आवश्यकता है, या चिकित्सक उनका बोले हैं, परामर्श दे हैं, करावे का है, तो
1: हाँ
0: देखा
1: हाँ
0: भैया आज अपने पंचायती में ना परिवार कल्याण में इसी विषय पे बहुत जरूरी जानकारी देता है डॉक्टर सुरेंद्र नाथ दुबे भैया। और सुरेश भैया कैसे उनसे एक छोटी छोटी बातचीत पूछे हैं कि फिजियोथेरेपी कब और कितनी लाभप्रद बा, आवा
1: हाँ
0: भैया का पंचन के साथ सुना जाए।
1: हाँ हाँ भैया देखा अपन स्वास्थ्य अगर बढ़िया होते तो अपन काम धाम भी बढ़िया तरीके से होते। तो आज अपने परिवार कल्याण की बात में भैया अपने बीच डॉक्टर एस एन दुबे भैया आए हैं, जौन फिजियोथेरेपी के जौन उपयोगिता है अपने जीवन में इस बारे में फरियाई की जानकारी दे हैं। तो पहले हम अपने डॉक्टर साहब जी का अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये फिजियोथेरेपी ई का बा, और एके कैसे जौन है इतना बड़ा महत्व बा, तो ई बारे में आप बताओ।
2: देखिए, फिजियोथेरेपी उपचार की एक पद्धति है
1: हाँ
2: जो दवाइयों से नहीं बल्कि कुछ कसरत सिकाई
1: हाँ हाँ
2: इनके माध्यम से मरीज को दिया जाता है।
1: अच्छा
2: अच्छा, दूसरा इसका जो पर्पज है वो आपके स्वास्थ्य को रिस्टोर करना,
1: जी
2: दोबारा फिर से उसको रिस्टोर करके और मेंटेन करना,
1: हाँ हाँ
2: ये भी रहे कि वो मेंटेन रहे, आपका स्वास्थ्य स्टोर हो और प्लस मेंटेन भी रहे
1: हाँ
2: और गतिशीलता बढ़े
1: जी
2: आपकी, उसमें रुकावट ना रहे, ये सिद्धांत लेकर के फिजियोथेरेपी उपचार किया जाता है।
1: और साथ ही साथ डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहते थे कि अपने जो है कौन तरह के जो है रोग बिरामी घेर ले शरीर में, तो कौन तरह के रोग में ये जो है उपचार का महत्व ज़्यादा होता है।
2: हमारे शरीर में भिन्न भिन्न तरह के सिस्टम हैं,
1: हाँ
2: जैसे कि आर्थोपेडिक सिस्टम जो होता है वो हड्डी से संबंधित सारी जानकारी को आर्थोपेडिक सब्जेक्ट में बताया जाता है।
1: हाँ हाँ
2: इसी तरह से न्यूरो सिस्टम है जिसमें आप नसों के बारे में बताया जाता है।
1: जी
2: कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, कार्डियोथोरेसिक सिस्टम, जिसमें कि हम फेफड़े और हार्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
1: हाँ
2: तो आर्थोपेडिक में फिजियोथेरेपी का ज़्यादा रोल है क्योंकि उसमें जोड़ों में दर्द या हड्डी संबंधित जो विकृतियां हो जाती हैं उनको
1: जी
2: सर्जरी से बचाने के लिए, दर्द खत्म करने के लिए यहाँ फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल होता है।
1: हाँ
2: न्यूरो में कोई नस पे दबाव होने की वजह से कभी कभी हम मुश्किल होना, तो शक्ति के संचार को लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मरीज स्वतः अपने हाथ को जितना भी हो उठाए, मुट्ठी बंद करने की कोशिश करें, हाथ को मोड़े फैलाने की कोशिश करें और कंधे से हाथ को ऊपर उठाए नीचे करें। इसी तरह से पैरों में पैर के पंजे को चलाए, उंगलियां चलाए, बैठ के किसी कुर्सी पर पैर को हिलाए और सीधा लेट के बिस्तर में पैर को सीधा ऊपर उठाए और नीचे करें। इस तरह के व्यायाम करने से मरीज को कुछ जल्दी ही दिनों में, 2-4 दिन में ही पता लगने लगेगा कि वो ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर पा रहा है। लेकिन यदि

0: लोग बैठ जाएंगे और दो लोग उसको मालिश करना शुरू करेंगे
1: हाँ
0: तो वो कसरत उन व्यक्तियों की हो जाएगी जो मालिश कर रहे हैं,
1: हाँ
0: बल्कि उसका लाभ लकवा ग्रसित मरीज को नहीं होगा।
1: हाँ हाँ
0: लोग यहाँ गलती क्या करते हैं, भैया हमारे यहाँ बीमार हो गए हैं, लकवा हो गया है, और वो सारे मोह में पड़ करके फटाफट आते हैं, अपना मालिश करना शुरू करते हैं, तो उससे मरीज की रिकवरी नहीं होती, बल्कि एक जो टाइम बाउंडेड डिजीज़ है, ये 3 महीने में रिकवरी आ जानी चाहिए,
1: हाँ
0: वो 3 महीना भी बीत जाता है और मरीज वहीं का वहीं रह जाता है। तो
1: अच्छा
0: ये चीज़ दिमाग में ज़रूर रखें
1: जी
0: कि अगर लकवा हो गया या कोई कमजोरी शरीर में आ गई है, मरीज को इंसिस्ट करिए, मरीज को बोलिए करने के लिए, भले ही ना हो उससे, वो 1 दिन करे, 2 दिन करे, 3 दिन करे, अपने आप होने लगेगा,
1: हाँ
0: लेकिन मरीज स्वतः से करे तो जल्दी से ठीक हो जाएगा।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप तो बहुत नीक जानकारी दें कि जैसे कि भैया बहनी अगर लकवा से जो उन्हें ग्रसित हो जाएं तो उनका ये चाहे कि कोशिश करें कि पहले अपने आप मालिश करें, ताकि अपने मालिश से भैया देखा दुई गुना लाभ होता है। एक तो अपन अंगुलियन भी चली चली हैं, हाथ पैर के भी जो उन्हें चलन होत रही, ताकि जौन जोड़ों की दर्द बा और साथ साथ जौन पैर हाथ में जकड़न बा शरीर में वह जो उन्हें ठीक होत रही। साथ साथ डॉक्टर साहब हम एक बात और ही जाना चाहिए थे कि जैसे भैया बहनी हरिन चिकनगुनिया है, डेंगू है और भी तरह तरह के रोग बिरामी घेर लेते हैं, तो ये फिजियोथेरेपी से कैसे लाभ मिले यह बारे में तनि से फरियाए के बताए दें।
0: देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने,
1: हाँ
0: और ये बताना बहुत ज़रूरी है
1: जी
0: कि इस समय चिकनगुनिया और डेंगू जैसे बुखार चल रहे हैं,
1: हाँ
0: और इनका जो कारण है वो मच्छर काटने से वायरस का प्रवेश कर जाना शरीर में, एक यही कारण के वजह से ऐसा हो रहा है।
1: हाँ
0: लेकिन बुखार तो 2 दिन से 8 दिन के भीतर वो ख़त्म हो जाता है और बुखार नहीं रहता मरीज़ को, पर
1: जी
0: शरीर कमज़ोर और टूट सी जाती है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है,
1: हाँ हाँ
0: और मरीज़ को चलने फिरने में, अपने नित्य क्रिया को निपटाने में और कार्य करने की क्षमता में बहुत कमी आने लगती है, ये
1: जी
0: सब दिक्कतें हो रही हैं।
1: हाँ हाँ
0: मैं सबको ये सलाह दूंगा कि
1: जी
0: अगर जोड़ों का दर्द है और वो पोस्ट चिकनगुनिया, चिकन होने के बाद हो रहा है, या डेंगू से कुछ जोड़ प्रभावित हो रहे हैं,
1: हाँ हाँ
0: तो आप चुपचाप बैठिए मत, लेटे मत रहिए, आप बिस्तर से उठिए,
1: जी
0: खड़े होइए, धीरे धीरे अपने सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करते रहिए।
1: हाँ हाँ
0: हाँ, अगर आपको चक्कर आता है, ऐसा लगता है कि आप गिर जाएंगे या ब्लड प्रेशर असामान्य होने लगता है, तब तो ऐसी स्थिति में आप लेट जाएं, लेकिन कोशिश करिए कि आप मोबाइल रहें, आपके सारे जोड़ मूवमेंट में रहें,
1: जी
0: आप चलें फिरें, अपने कार्य करते रहें, हल्का दर्द होगा लेकिन आपके जोड़ों का मूवमेंट बना रहेगा, तो वो
1: अच्छा
0: जाम नहीं होने पाएगा।
1: जी
0: अच्छा, दूसरा क्या कर रहा है कि ये वायरस अंदर शरीर के अंदर जा करके हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको घटा देता है, घटाने से हमारे जोड़ों में सूजन आ जाती है, तो
1: जी
0: उसको मेंटेन करने के लिए अपने भोजन में भी थोड़ा सा परिवर्तन करने की ज़रूरत है।
1: हाँ
0: बहुत ज़्यादा तला भुना ना लें, बहुत गरिष्ठ भोजन ना करें, हल्का भोजन जैसे आप घर में दाल चावल रोटी सब्जी बनता है
1: जी
0: उस तरह ही भोजन लें,
1: हाँ हाँ
0: ठंडे भोजन का सेवन कम करें, सिट्रस फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है, तो कुछ पेशेंट्स में तो देखा गया है कि खट्टा ठंडा लेने से दर्द बढ़ जाता है, लेकिन कुछ में इसकी रिक्वायरमेंट भी है, तो
1: हाँ
0: आप सिट्रस फ्रूट्स लेते रहें, उसको
1: जी
0: एकदम से बंद मत करिए। हाँ, दही का सेवन ना करें।
1: अच्छा
0: दूसरा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो इसके पहले, ये कभी क्या होता है कि सारे जोड़ों को इन्फ्लेम करता है, जिसको
1: जी
0: रूमेटॉइड आर्थराइटिस के श्रेणी में आने का डर रहता है, कहीं ऐसा नहीं कि वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाएगी,
1: हाँ हाँ
0: इस तरह का दर्द लोगों को आजकल हो रहा है, तो
1: जी
0: उसको धीरे धीरे कसरत करें,
1: हाँ हाँ
0: माइन्यूट एक्सरसाइजेस करें, बहुत हल्के हल्के सूक्ष्म व्यायाम जिनको कहते हैं, अपने सारी उंगलियों को चलाएं,
1: जी
0: कलाई को चलाएं, और अपने कोहनी को भी, हाथ को मोड़े फैलाएं, कोहनी की एक्सरसाइज करें, और इस तरह से हाथ को ऊपर करके अपने शोल्डर ज्वाइंट की एक्सरसाइजेस करें, ऐसे ही पैर के पंजों को चलाएं,
1: जी
0: पैर के पंजे को जहाँ भी बैठे रहें 5 बार 10 बार, 5 बार 10 बार सारे जोड़ों को चला लें,
1: जी
0: बैठ करके पैर को हिलाएं, और अपने एंकल ज्वाइंट को भी थोड़ा थोड़ा मूवमेंट दें, एक बार में 10-15

0: 15 बार करें,
1: हाँ
0: 10-15 मूवमेंट करने के बाद रुक जाएं, चाहे 2 घंटे बाद आप फिर कर लीजिए, लेकिन एक साथ बहुत ना करें, सूक्ष्म व्यायाम करते रहें। और ठंडी सिकाई करें तो बर्फ की सिकाई आप कर सकते हैं, ठंडी सिकाई कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, भोजन में थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, इनसे दर्द में निश्चित रूप से आराम मिलेगा। और हाथ पांव को चलाने के लिए आपकी वॉक जरूरी है कि आप मूवमेंट में रहें, चलते फिरते रहें।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब जैसे कि अपन ये जो शरीर के जो उन्हें उंगलियां हैं हाथ पैर के मोड़ने में, हम आपसे एक बात और ही जानना चाहिए थे कि जैसे कि व्यायाम में कोनो तरह के तेल मालिश की तो जरूरत नहीं पड़े।
0: मालिश इस सूजन में एडवाइजेबल है, हल्का हल्का आप मालिश कर सकते हैं, कड़वा तेल गरम कर लीजिए या कोई दर्द निवारक तेल गरम ले लीजिए, उसको वहाँ बहुत हल्के हाथ से मालिश करें। मालिश करने से वहाँ पे थोड़ा सा सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है और हाँ। सूजन घटने में सहायता होती है।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आएं और अपने हमारे भैया बहनी हर इनका जो फिजियोथेरेपी से जो अपने जीवन में उपयोगिता बा बारे में जो फरियाए की जानकारी दीन, ये जानकारी दे खातिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ भैया,
1: पद्री भैया,
2: देखा भैया, सबसे बड़ी बात यह का होत कि जानकारी का भाव जब रहा था ना, तो ऐसे बहुत सारे दुख विराम तो केवल जानकारी के अभाव में जे हर आदमी एक तो डॉक्टर बन जाता है। जे कहन कोनो मतलब कुछ हो गया, बुखार आएगे तो कहन एका खाई लाओ, कहन ओका खाई ला, खांसी आएगी कहन एका पी लिया, बुखार आएगी कहन एका पीस के पी लिया। ये चीज भैया कतई न करे चाहिए। अरे पूरा जो बातचीत रही भैया कि जेकर विषय नहीं है रखा रहा कि फिजियोथेरेपी कब और कितना लाभप्रद, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ दुबे से सुरेश भैया जो बतिया ने एकर अगर आप देखा कि मीमांसा करा तो साफ कहना है कि भैया हर चीज जो चीज आप करे जाता है वो अपने मन से ना करा, ओकरे बड़े विशेषज्ञ भैया हरे ना है, उनकर बात सुना, उनकर बात माना और जो उन सलाह दें ओका करा। आप लोक कथा ना सुना कि फलाने के भैया मींज मींज के ठीक के देन, लकवा ठीक हो गया, तेल पिया ठीक के देन, बुखारे मेका पी लें ठीक हो, नहीं, एकरे बड़े बकायदा डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर से बातचीत करा, सही सलाह लिया, स्वयं स्वस्थ रहा और अपने परिवार का स्वस्थ रखा।
1: हाँ हो बद्री भैया, ये तो बहुत नीक बात बताया हो कि जोनो भी काम धाम करना हो भैया वो का अपने मनमानी तरीके से ना करें, अपन भैया देखा जागरूक हुई के जानकारी लई के तब ही ने देखा दवा दर्पण का प्रयोग।
2: बिल्कुल, अब भैया एक और चीज देखा कि हम लोग अब जैसे खेती करी थी तो का अपने मन मर्जी से जाई थी, एक बीघा खेत है तो मैं 10 पुरिया यूरिया डाल दे, नहीं ना, ओ मान लगे पूरा 2 बल्टी भरे और केमिकले भर के डाल दिन रसायन की, नहीं हमारा फल बहुत बड़ा हो जाए। हमहू लोग भैया अगर विशेष जे हमारे खिया जैसे किसान भैया आवत हैं, बहुत विशेषज्ञ हैं, कृषि विभाग के डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, हमहू सभी उनकी सलाह ले थी कि भैया खेती किसानी कैसे करी, फसल का अपने कैसे बचाई, कैसे बढ़िया पैदावार करी, तो सलाह ली थी। तो ऐसे शरीरों भैया या एक स्वस्थ रखे की जिम्मेदारी हमारे आप सब का, जब हम आप स्वस्थ रह तो पूरा भारत स्वस्थ रही।
1: कह गया हो बद्री भैया, अब देखा स्वास्थ्य रहे बदे जैसे कि सवेरे सवेरे देखा अपन देखा स्वच्छ हो के
2: हाँ।
1: देखा हाँ साथे साथ व्यायाम की बहुत जरूरत पड़त है, देखा चाहे लड़का का देला हो चाहे सयाना
2: हाँ।
1: खेती किसानी के काम धाम करत बदे भैया देखा अपन किसान भैया बहनी हरिन के कुछ तो व्यायाम हो ही जात बा
2: बिल्कुल,
1: और साथे साथ भैया जौन देखा जौन मोटिया महीन काम जौन नहीं करत ही, ऐसे भैया बहनी हरिन का यह चाहिए कि भैया देखा सूर्य भगवान के जौन उदय से पहले उठाए और अपन नित्य क्रिया कर्म करत भय
2: हाँ।
1: अपन जौन है कुछ न कुछ योग है, व्यायाम है, सूर्य नमस्कार है, आसन है, तो ऐसे भी काम करके देखा आसन व्यायाम के जरिए से भी अपन शरीर स्वस्थ रही और साथ ही साथ जौन अपने हाथ पैर गांठ के जौन बा देखा सिकुड़न बा देखा जौन तरह तरह के ना कि हाँ या हाथ पैर ठीक से जौन है नहीं इधर उधर होत बा, तो व्यायाम की से बड़ा लाभ मिलत है और किसान भैया बहनी हरिन भी देखा अपन व्यायाम करत रहें, लड़कन गदेलन का सहेजें भैया देखा जौन अपन शरीर से कमजोर बा वहाँ जो उन्हें अपन व्यायाम करत।
2: बिल्कुल सुरेमन भैया एकरे साथे देखा एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश आबा।
1: हाँ हाँ।
2: कि देखा भैया हम सबे आए पंचायत लगाए।
1: हाँ।
2: और पंचायती में बहुत सारी बात होता जो अच्छी अच्छी सूचना आवा था हम लोग अपने पंच भाई किसान भाई तक पहुँचाई थी।
1: हाँ।

0: बताओ।
1: अब लेकिन देखें भैया, बहुत सारी, जैसे आज फिजियोथेरेपी की बात भय, ऐसा किसान भाइयों के, पंच भाइयों के मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे विषय होते हैं। वो चाहे खेती किसानी संबंधित हो, या स्वास्थ्य संबंधित हो, या समाज से संबंधित हो। अगर वो ऐसे कोनो विषय पे चाहता है कि हम कोनो विशेषज्ञ के अपने पंचायती में बुलाई, या कोनो चीज को उनका जानकारी चाहे, तो देखा वो अपन भैया हमका लोग को संदेशा भेज सकते हैं।
0: अब देखा संदेश भेज सकते हैं, और साथे साथ भैया देखा जौन भी अपन पंचायती की ओर से जौन कार्यक्रम बा, अपने टेम टेम से किसान भैया बहनी हरिन का सुनवाओ जाता।
1: हाँ।
0: तो अपन भैया प्रतिक्रिया भी जौन है बता सके।
1: तो सुरेमन भैया कैसे अपन प्रतिक्रिया भेजें, किसान भाई हो तो बता दे।
0: भैया देखा अपन जौन है अपन पंचायती के जौन व्हाट्सएप नंबर बा।
1: हाँ।
0: भैया नंबर बा कि 8009926250। भैया देखा एक बार और हम
1: और
0: अपने किसान भैया बहनी का बता दिया जाए कि 8009926250।
1: बिल्कुल। और सुरेमन भैया एक बार हम अंग्रेजी में बताए देते हैं, ताकि जो उन किसान भाई देखा आजकल चुन्नू मुन्नू हरन भी सुनत थे ना, कलम दवात सब लाइक बैठा थी।
0: हाँ हाँ।
1: कलम दवात तो मान लो हमारे सबके जमाना में रहा, आजकल तो भैया डार्ट पेन आ गया है, पायलट आ गया है, तो और डायरेक्ट आजकल तो मनाई मोबाइलों में नोट कर लेते हैं। तो चुन्नू मुन्नू हरन भैया नोट कर लिया, ताकि अपने जो किसान भाई यहाँ उनका रही था 8009926250, यानी 8009996250।
0: हाँ।
1: सुरेमन भैया एकरे अलावा एक सूचना बा।
0: हाँ।
1: कि देखा भैया पंचायत घर के साथे साथे आकाशवाणी प्रयागराज के नाम से फेसबुक पे हमारे लोग का पेज बा।
0: हाँ।
1: और उस पेज पे आप सारी जानकारी देख सकत है कि आजकल आकाशवाणी पे का चलत बा, पंचायत भवन में का चलत बा, पंचायत घर में का चलत बा, सारे कार्यक्रम

0: शायद घर के साथे साथे आकाशवाणी प्रयागराज के नाम से फेसबुक पे हमारे लोग का पेज बा,
1: हाँ
0: और उस पेज पे आप सारी जानकारी देख सकत है कि आजकल आकाशवाणी पे का चलत बा, पंचायत भवन में का चलत बा, पंचायत घरे में का चलत बा, सारे कार्यक्रम की जानकारी आपको मिली। तो
1: कहिया
0: हुआ भैया सुनीमन भैया लोग चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट बक्सा में अपन बात लिखें, जौन लिखी है ओका हम लोग पढ़ा व जानब कि हमारे किसान भाई लोग का चाहता है।
1: हाँ हो बद्री भैया, ये तो बहुत पते की बात बताया हो। और जौन तरीका से किसान भैया बहनी हन का देखा अपन जौन ही जानकारी दिखले अपन देखा प्रतिक्रिया दिया नहीं,
0: हाँ
1: और
0: भैया,
1: साथे साथ हम तो यहो कहो बद्री भैया कि
0: हाँ
1: देखा चला चलाओ जौन है एक ठो और जौन है लोकगीत किसान भैया बहनी हर इनका
0: हाँ
1: सुनवाई दिहल जाए हो। तो
0: हाँ
1: भैया देखा अजय कुमार के जौन है गाई गौनई बा,
0: ठीक भैया,
1: देखा एका जौन है कहरवा बा,
0: हाँ
1: तो किसान भैया बहनी हमें सुने और
0: बिल्कुल
1: गुने।
0: सुनो।

0: अपन जौन है मौसम बा
1: हाँ
0: देखा अब धीरे धीरे बदलत बा
1: हाँ
0: और धीरे धीरे देखा बूंदा बांदी बारिश भी होत बा। अब किसान भैया बहनी हरन से हम यही कही कि भैया देखा पंचायती से अपन जौन है अपन सब सामान लेके देखा चल चले के बेला हो
1: सही कहा था भैया।
0: तो किसान भैया बहन विदा लिया जाए तो
1: पंचो राम राम, राम।

0: हाँ हो बद्री भैया।
1: सुरेमन भैया देखा धान के लौगही में जब एका सुने के मिला था ना तो
0: हाँ
1: उत्साह बड़ा बढ़ जाता कि भैया चला देखा बारिश होती है और यह एक लौगही गीत भैया गावा जाता है।
0: कह गया बद्री भैया। अब
1: हाँ
0: देख।

अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: तू शायर है, मैं तेरी शायरी।
2: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
1: तू आशिक है,
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ। चिक चिक चिक चिक चिक।

0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आज बुलंदशहर में 574 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 57 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री ने संभल को 569 करोड़ रुपए की 66 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। गाजियाबाद में मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को परखा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लखनऊ में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का किया शुभारंभ। युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुलंदशहर में 574 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 57 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर भी बदल चुका है। उन्होंने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के जरिए पारंपरिक उद्योगों को नई पहचान मिल रही है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है, रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से अर्थव्यवस्था का विकास होता है, जिससे देश विकसित होता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों के सामने एक संकल्प लिया और संकल्प में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि देश इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष यानी अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा है, लेकिन भारत को अभी से अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव की तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए। यानी 100 वर्ष जब भारत की आजादी के होंगे तब हमें कैसा भारत चाहिए, ये संकल्प आज हमें लेना होगा और उसके अनुरूप आचरण करना होगा।
0: उन्होंने यहां राजीव भैया सैनिक विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृत भारत के संकल्प को याद दिलाया।
2: ये स्पीड एक केवल स्पीड नहीं है, आपके समय को कम करने का माध्यम ही नहीं है, ये स्पीड विकास की स्पीड है, ये स्पीड समृद्धि की स्पीड है। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी तेज अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और जितनी तेज अर्थव्यवस्था बढ़ेगी उतना तीव्रता के साथ रोजगार का सृजन होगा और जितनी तीव्रता के साथ रोजगार का सृजन होगा उतनी ही समृद्धि की नई ऊंचाई पर हमारा जनपद, हमारा प्रदेश और हमारा देश पहुंचेगा।
0: इसके बाद मुख्यमंत्री ने अमरोहा में 207 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 43 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है।
2: ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार चौधरी चरण सिंह जी के सपने को भी साकार कर रही है और विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर तबके को दे रही है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद संभल में 569 करोड़ रुपए लागत की 66 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले में कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, यहां के उत्पाद को वैश्विक मान्यता मिल रही है, विकास और विरासत का संरक्षण हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि राज्य सरकार जनकल्याण, सुशासन और विकास के प्रति प्रतिबद्ध है तथा जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने और विकास कार्यों को गुणवत्ता और समयबद्धता के

0: के साथ पूरा कराने के निर्देश दिये। श्री योगी ने गाजियाबाद में मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री जिले के श्री दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर भी पहुंचे और उन्होंने यहां भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि, आरोग्य और लोक कल्याण की कामना भी की। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज लखनऊ में विकसित युवा बनाएगा विकसित भारत थीम पर आधारित दो दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने के लिए युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया। इस शिविर में 190 से अधिक जिला युवा अधिकारियों और माई भारत एनएसएस पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे, प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव और भारत सरकार युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव डॉ पल्लवी जैन गोविल भी उपस्थित थीं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान आज ग्रेटर नोएडा में एक निजी शिक्षण संस्थान के मेराकी 2026 ओरिएंटेशन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है और देश का भविष्य आज के विद्यार्थियों के हाथों में सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब युवा शिक्षा, कौशल, अनुशासन, नवाचार और नेतृत्व क्षमता को अपने जीवन का आधार बनाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपित रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और मनीष यादव को पुलिस ने आज 39 घंटे के रिमांड पर लिया है। दोनों आरोपितों को सुबह जिला जेल से निकालकर पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और पुलिस लाइन लेकर पहुंची। पुलिस और जांच एजेंसी ने आरोपितों से पूछताछ की। वहीं चढ़ावा मामले को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज कानपुर में कहा कि यह मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित की है, जांच चल रही है और जो दोषी हैं पकड़े जा रहे हैं और रिमांड में लेकर के पुलिस ने पूछताछ की है। फिर भी मैं जनता से अपील करती हूँ, कुछ लोगों की गलती के कारण अपनी आस्था को कमजोर नहीं करें, क्योंकि आस्था एक स्थायी चीज है। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले।
0: भारत के पहले निजी तौर पर विकसित किए गए रॉकेट विक्रम 1 ने आगमन मिशन के अंतर्गत पेलोड को पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में 450 किलोमीटर दूर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। यह प्रक्षेपण आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12:05 पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि के लिए स्काई रूट एरोस्पेस को बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने आज गोरखपुर में जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा उपकरणों और उनके रखरखाव की जानकारी ली। उन्होंने वार्ड में पहुंचकर मरीजों का हाल भी जाना। श्री पाठक ने अधिकारियों को सुविधाएं बेहतर करने के निर्देश दिए।
2: डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, मरीजों से बात किया, उनके परिजनों से बात किया, लेकिन जो इमरजेंसी वार्ड है उसमें उमस भरा माहौल था। हमने तत्काल उसमें वातानुकूलित संयंत्र लगाए जाने के निर्देश दिए हैं और उसकी फोटोग्राफ सीएमएस और सीएमओ हमें भेजेंगे। तत्काल मरीजों को उच्चीकृत करके सेवाएं दी जाएं, कहीं कोई कमी न रखी जाए, मरीजों की सेवा में परिजनों को कोई दिक्कत न हो, यह हमारी जिम्मेदारी है।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विंध्याचल धाम पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री ने मां विंध्यवासिनी से जनकल्याण के सुख समृद्धि की कामना की। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर का निरीक्षण भी किया और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। प्रदेश में मॉनसूनी सक्रियता बढ़ने से बीते 24 घंटों में कई जनपदों में बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। हमीरपुर में बारिश से कई जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गोरखपुर में भी कल शाम से रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। एक रिपोर्ट।
3: गोरखपुर में कल शाम को हुई भारी बारिश के बाद बीती रात से ही आज सुबह तक हुई भारी बारिश में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इसके साथ ही शहर के प्रमुख जगह असुरन के राप्ती कॉम्प्लेक्स, धर्मशाला बाजार, विजय चौक, सिविल लाइन, विद्यालय रोड, जिला अस्पताल आदि जगहों पर जलभराव से लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत भी हुई। हालांकि कुछ देर बाद ही जलभराव समाप्त हो गया। मौसम विभाग ने आने वाले समय में

0: भारी बारिश की भी चेतावनी दी है। जीएन चौबे आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में आकाशीय बिजली कड़कने और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने आज बुलंदशहर में 574 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 57 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री ने संभल को 569 करोड़ रुपए की 66 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। गाजियाबाद में मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को परखा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने लखनऊ में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का किया शुभारंभ। युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा की वार्ता जन कवि नागार्जुन।
3: हमारे उत्सव धर्मी देश में जन्म से मृत्यु तक मानव जीवन में परिवार की हैसियत के अनुसार उत्सव होते ही रहते हैं, पर किसी के जीवन के 100 साल पूरे होने पर उसकी मृत्यु के वर्षों बाद भी उसकी शतवार्षिकी मनाई जाए, वह भी परिवार द्वारा ही नहीं समाज द्वारा, ऐसा कम ही होता है। इधर फैज़ अहमद फैज़, अज्ञे केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह और नागार्जुन जैसे मूर्धन्य कवियों की ताबड़तोड़ शतवार्षिकी मनाई जा रही है। यह चाहने वालों के लिए उत्प्रेरणा का समय है कि ऐसा भी समय था जब इतने सारे प्रकाश स्तंभ हमारे समाज को एक साथ राह दिखाने को तत्पर थे। इनमें नागार्जुन का विशेष महत्व है, क्योंकि इनमें से किसी की भी सामान्य जन तक वह पहुंच नहीं थी जो नागार्जुन की थी। शायद इसीलिए उनकी शतवार्षिकी केवल अकादमियों और विश्वविद्यालयों में होने वाले वाचाल सेमिनारों तक ही सीमित नहीं है। उन्हें गांव कस्बों में भी लोग अपने अपने ढंग से याद कर रहे हैं, एक जन कवि के रूप में, अपने कवि के रूप में। तो कौन है यह जन? इतना आम पर इतना अस्पष्ट। बात सीधी है, जो खास नहीं है वही आम है, जो अभिजन यानी किसी भी तरह का एलीट नहीं है वही जन है। यानी सारे मेहनतकश, सारी नारियां, सारे दलित, सारे आदिवासी, सारे अल्पसंख्यक। इस तरह बहुत थोड़े लोग बचते हैं जिन्हें जन नहीं कहा जा सकता, हालांकि वही जन को संचालित करते हैं। यह जन लगातार भ्रष्ट और नष्ट किए जाने के बावजूद अभी भी बहुत स्वाभाविक और स्वतः स्फूर्त होता है। उसकी पसंद और नापसंद मुख्यतः उसके हित से निर्धारित होती है। जो भी उसके हित साधन में सार्थक दिखाई देता है उसे वह सहज ही सिर आंख पर बिठाने को तैयार हो जाता है। इसमें उसकी समझ से अधिक उसकी अंतर्भावना कार्य करती है। नागार्जुन को जन ने उसी तरह इंस्टिंक्टिवली मानो स्वीकार किया। उसने भी जिसे पढ़ना नहीं आता, उसने कैसे स्वीकारा होगा नागार्जुन को? उसी तरह जैसे चंपारण में नीलहों ने गांधी को बिहार में स्वीकारा था और बाद में सारे देश के गांवों में लोकगीत गूंजने लगे थे, एक छोटी चवन्नी चांदी की जय बोलो महात्मा गांधी की। ऐसा विचार और कर्म दोनों के समन्वय से होता है। जन कवि कैसे बनता है कोई? जैसे कबीर बने थे, या भक्ति काल के दूसरे कवि जैसे फ्रांसीसी क्रांति के समय दक्षिणी फ्रांस के बंदरगाह मार्सई में लोक मानस से एक गीत उपजा था जो मार्क्सीय

के नाम से सारे देश में फैल गया था और जिसे नेपोलियन तक ने अपनी सेनाओं के बराबर शक्तिशाली समझा था और जो आज भी फ्रांस का राष्ट्रगीत है। जैसे यूजीन पोआतिए ने मजदूरों का आह्वान करते हुए लिखा था, उठ जाग भूख के बंदी, और वह धीरे धीरे सारी दुनिया के मेहनत कशों का इंटरनेशनल बन गया था और आज भी 1 मई को सारी दुनिया में गूंजता है। वैसे ही जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में सबकी ज़ुबान पर गीत था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बहुतों को पता भी नहीं था कि यह किसका गीत है। इस जन कवि के लिए अनिवार्य है जन स्वीकृति। यह तभी हो पाती है जब कवि की रचनाओं की अंतर वस्तु जन सुलभ और जनहित की हो तथा उसे जन ग्रहण कर ले पा रहा हो। फिर रूप में, भाषा शैली, मुहावरा, प्रस्तुति में भी जन सुलभता और सहजता का निर्वाह किया गया हो। नागार्जुन की कोई एक कविता नहीं, उनका समस्त रचना संसार जन सुलभ है। ऐसा तो पूरी तरह कबीर के बारे में भी शायद न कहा जा सके। हालांकि कबीर की तो उलट बांसियां भी जनता अपने ढंग से समझ ही लेती है, कम से कम उनका मर्म। नागार्जुन का जन्म मिथिला में प्रथम विश्वयुद्ध की तैयारी होते काल में 1911 में हुआ था। मिथिला की हरी भरी परंपरा संपन्न धरती में गांव के गरीब ब्राह्मण के बेटे के लिए भी अध्ययन की अनिवार्यता थी। उनकी विद्वत्ता बौद्ध धर्म की ओर ले गई, जिसका मूल चरित्र ही वैज्ञानिक और जनोन्मुख है। उन्हें विपन्नता ने ही यायावर बना दिया और मैथिली में वह यात्री उपनाम से ही लिखते रहे। उनके लेखन का तेवर वही रहा, चाहे उन्होंने मैथिली में लिखा या बांग्ला में या फिर हिंदी में। इन तीनों भाषाओं के अलावा उन्हें संस्कृत और प्राकृत भी आती थी, पर उन्होंने ज़्यादातर हिंदी में ही लिखा क्योंकि हिंदी ही की भाषा थी जन की, और उसमें उस ज़माने में तो वास्तव में राष्ट्रभाषा भी। उन्होंने कभी कोई बड़ी और बहुत दिनों तक चलने वाली नौकरी चाकरी नहीं की, इसीलिए उनका जन कभी उनसे बिछड़ नहीं पाया और वह आजीवन अकिंचन बने रहे। वह अपने घर में बेगाने ही रहे, पर इस देश में हजारों परिवार होंगे जिनमें सारे परिवार के वह बाबा होते थे, सबसे अधिक घर की मलकिन के। उनके जैसे असामान्य और नकचढ़े अतिथि से भी कभी कह पाना मुश्किल था, अतिथि तुम कब जाओगे। इसका मुख्य कारण यही होता था कि सबसे पहले वह रसोई और उसकी संचालिका से आत्मीय शिष्टता जोड़ लेते थे, फिर बच्चे बाबा की दाढ़ी और कहानियों के फैन हो जाते, फिर जिस पुरुष प्रशंसक के कारण उनका गृह प्रवेश होता, उनकी मजबूरी और प्रतिष्ठा साथ साथ होती कि वह एक टांग पर खड़ा होकर उनकी आवभगत करे। बात के दिनों में उनके सबसे प्रिय मेज़बान वाचस्पति हमारी बात की ताईद करेंगे। मेरी उनकी पहली मुलाकात वाचस्पति जी के ही घर पर हुई थी, जब हमने बड़े आत्मीय ढंग से उनकी शायद 78वीं वर्षगांठ मनाई थी। उनकी सहज बच्चों जैसी पुलक आज भी मन को रिझा जाती है। आइए जन कवि नागार्जुन को गले लगाएं। उनका जीवन दर्शन उनकी विख्यात कविता में मुखर है, प्रतिबद्ध हूँ, संबद्ध हूँ, आबद्ध हूँ। अपने को प्रतिबद्ध कहने वाले तो थोक के भाव मिलते हैं, पर उनकी प्रतिबद्धता शायद ही कभी उनके आचरण में अभिव्यक्त होती हो। नागार्जुन ने दो टूक कहा है और जिया है, प्रतिबद्ध हूँ, जी हाँ प्रतिबद्ध हूँ, बहुजन समाज की अनुपल प्रगति के निमित्त, संकुचित स्व की आपाधापी के निषेधार्थ। इसी तरह संबद्ध हूँ जी, संबद्ध हूँ सचर अचर सृष्टि से, और फिर आबद्ध हूँ, जी हाँ आबद्ध हूँ, स्वजन परिजन के प्यार की डोर में। ऐसी आबद्धता, संबद्धता और प्रतिबद्धता जो स्वजन से समस्त सृष्टि तक फैली हुई है, और जैसे ये एक ही प्रक्रिया के विविध

आयाम हो। सारी यायावरी के दौरान भी उन्हें पत्नी का सिंदूर तिलकित भाल नहीं भूलता। मिथिला के रुचिर भूभाग उनकी स्मृतियों को झकझोरते रहते हैं। बच्चों की दंतुरित मुस्कान दस्तक देती रहती है। उनका सौंदर्य बोध खुब गए दूधिया निगाहों में फटी बीवाइयों वाले खुरदुरे पैर तक जाता है। यही सौंदर्य बोध है जो जमुना किनारे धूप में पसर कर लेटी छौनों को दूध पिला रही मोटी तगड़ी अधेड़ मादा सुअर को भी मादरे हिंद की बेटी करार देता है। नागार्जुन का सौंदर्य बोध और सरोकार प्रकृति में भी चरितार्थ होता है। उनकी सांगीतिक समझ और संवेदना का एक उदाहरण देखें। धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे दामिनी यह गई दमक मेघ बजे दादुर का कंठ खुला मेघ बजे धरती का हृदय खुला मेघ बजे पंक बना हरिचंदन मेघ बजे हल्का है अभिनंदन मेघ बजे धिन धिन धा धमक धमक। नागार्जुन के सौंदर्य बोध के दो अनुपम ध्रुव देखने योग्य हैं। पहले तो प्रकृति से एकाकार होने का चरम बिंदु, नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है मेरी भी आभा है इसमें। भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे यह जो इतने फूल खिले हैं कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था पकी सुनहली फसलों से जो अब की यह खलिहान भर गया मेरे रग रग के शोणित की बूंदें इसमें मुस्काती हैं नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है मेरी भी आभा है इसमें। दूसरा उदाहरण तो हिंदी साहित्य में अप्रतिम लगता है। ऐसी शायद ही कोई कविता हो जिसमें एक छोटे फलक पर ही सारी ज्ञानेंद्रियों का चमत्कार महमहा उठे। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकल कंठी तान बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौलसिरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गवई पगडंडी की चंदन वरणी धूल बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद कोई ऐसा कवि जन्मता है जो एक साथ गंध रूप रस शब्द स्पर्श को इस तरह भोग पाने की सामर्थ्य रखता हो। ऐसा सामर्थ्यवान कवि जब जन की जन के लिए कविता में बात करे तो उसका जनप्रिय हो जाना स्वाभाविक था। इसके लिए जिस संवेदना समझ सरोकार संपृक्ति और संघर्षशीलता की ज़रूरत होती है वह नागार्जुन में कूट कूट कर भरी हुई थी। तभी तो रानी एलिजाबेथ के आगमन पर वह लिख सके थे आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। क्या कोई बिना सरोकार के यह लिख सकता है? कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास कई दिनों तक काली कुतिया सोई उनके पास कई दिनों तक भीत पर छिपकलियों की हुई है गश्त कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त दाने आए घर में कई अंदर कई दिनों के बाद धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद चमक उठी घर पर घर भर की आंखें कई दिनों के बाद कौवे ने खुजलाई आंखें कई दिनों के बाद अकाल के दुर्दिन में विपदा के मारों की भी आंखों में चमक बाकी है दुर्दशा के दौरान भी जिजीवशा का उच्छ्वास बरकरार है। नागार्जुन ने जन की स्थितियों परिस्थितियों मनस्थितियों को झेला था पर अपनी संवेदना समझ सरोकार और सृजनशीलता के चलते उनमें डूब जाने के बजाय उनसे उबर कर

0: जनमानस के चितेरे बन गए थे वह। उन्होंने मध्यवर्गीय सीमाओं को तोड़ वास्तव में व्यक्तित्वांतरण कर लिया था। यह एक अचूक कसौटी है कलाकारों साहित्यकारों के लिए। मूलतः और सारतः मध्यवर्गीयता में रचे बसे लेखक कलाकार जन की वकालत के बहाने अपने हितों की वकालत करने लगते हैं। इसके विपरीत नागार्जुन जनता के मानस को जनता की भाषा और मुहावरों में उजागर करते हैं। वह लिख कर कर्तव्य निर्वाह जैसी औपचारिकता से मुक्त हो जाने की बात नहीं करते। वह जनता के संघर्षों में शामिल रहे और अपनी रचनाओं को स्वयं जनता तक पहुंचाने का भी काम करते रहे। वह सही अर्थों में भारत के एकमात्र जन इतिहासकार राहुल सांकृत्यायन के शिष्य लगते हैं। उनके ही जैसी यात्रा, वैसा ही समर्पण सरोकार, वैसा ही संघर्षमय जीवन और वैसा ही विश्वास का साहस।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा की वार्ता जन कवि नागार्जुन। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं दिव्या श्रीवास्तव के गाए भजन और गीत। तो सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए मीराबाई की ये भक्ति रचना।

दिव्या श्रीवास्तव के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर देते हैं, लेकिन याद रखिए, यदि स्वास्थ्य अच्छा है ना, तो हर खुशी का आनंद लिया जा सकता है। जैसे संगीत हमारे मन को स्वस्थ रखता है, सकारात्मक रखता है, वैसे ही योग हमें शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करता है। अगर संगीत हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, तो संगीत हमारे मस्तिष्क में हमारे मन को और अधिक स्वस्थ बनाता है और संतुलित रखता है। संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं है दोस्तों, बल्कि ये हमारे मन, मस्तिष्क और आत्मा को ऊर्जा देने वाली एक अद्भुत शक्ति है। जब सुर और ताल का संगम होता है ना, तो मन की सारी थकान दूर हो जाती है। तो आइए अपने मन की थकान को दूर करते हैं और सुनते हैं फिल्म पुकार का गीत, जिसे गाया है सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल ने। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया है AR रहमान ने।

दोस्तों देखिए ना, इन दिनों कहीं कहीं तेज बारिश हो रही है, कहीं कहीं बस रिमझिम फुहारें पड़ जा रही हैं, तो कहीं कहीं उमस भरी गर्मी। अरे भाई, ये हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है, हम बीमार हो जा रहे हैं। बरसात के इस मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है दोस्तों। साफ भोजन करिए, स्वस्थ पानी पीजिए, और स्वच्छ पानी पीजिए, अगर उसमें थोड़ी भी गंदगी लगे तो उसे छानिए। प्रतिदिन कुछ समय योग और प्राणायाम के लिए अवश्य निकालिए, क्योंकि दोस्तों योग और प्राणायाम, ये यकीन मानिए, ये हमारे शरीर को निश्चित रूप से स्वस्थ रखता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर और प्रसन्न मन ही जीवन की दोस्तों सबसे बड़ी पूंजी है। फिलहाल योग और प्राणायाम आप अपने घर में करिए, और हम आपके मन और मस्तिष्क को प्रसन्न करते हैं और आपको सुनाते हैं फिल्म यहाँ।

दोस्तों, मौसम कोई भी हो, हमें कुछ न कुछ सिखा के ही जाता है। बरसात के मौसम से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर कठिनाई के बाद नई हरियाली, नई उम्मीद जन्म लेती है। जीवन में यदि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बना रहे ना, तो हर चुनौती आसान लगने लगती है। और वहीं योग हमें धैर्य, संतुलन और आत्मविश्वास देता है, जबकि संगीत हमारे दिल को सुकून पहुंचाता है। और जब ये सभी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएं, तो जीवन और भी सुंदर हो जाता है। दोस्तों, मानसून की बूंद, हर बूंद अपने साथ ताजगी और नई ऊर्जा का संचार करती है, नई ऊर्जा लेकर आती है। और यही संदेश हमें योग भी देता है कि हर दिन एक नई शुरुआत की जा सकती है। कुछ मिनट का योग, संतुलित भोजन और सकारात्मक सोच हमें अनेक बीमारियों से दूर रख सकती है। और मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि बाद में आप ये न कहें, ऐसा है ये ठीक नहीं।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म खलनायक का गीत मनहर उदास और अलका याग्निक की आवाज़ों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दोस्तों, कहते हैं कि हर खूबसूरत सफ़र की एक मंजिल होती है और हर मधुर मिलन की एक प्यारी सी विदाई। समय कब अपने पंख लगाकर उड़ गया इसका एहसास भी नहीं हुआ। फिलहाल हम आ पहुंचे हैं अपने इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर, तो आइए सुनते हैं सदाबहार और बेहद लोकप्रिय गीत फिल्म दो रास्ते से। आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की हैं। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और इसी गीत के साथ ही आज का चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सबरस। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं बेगम अख्तर की आवाज़ में ये गज़ल।

आबिदा परवीन की गाई सूफी रचना के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोर्गोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
2: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजय लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। बल्कि 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ ओडिया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
3: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटना

0: घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरो स्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। यह अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
3: Today, for the first time in the country,
4: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
3: It's a very, very significant moment.
1: हुरमुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमरीका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसैलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसैलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसैलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंताएं बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में 1 व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और

उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा एचडी कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अमरीका

0: in the world to achieve private orbital launch capability. Developed under Mission Agman, the rocket is intended to provide cost-effective and flexible launch services for small satellites. Prime Minister Narendra Modi congratulated the Skyroot Aerospace team over a telephone call. Mr. Modi said the successful launch of Vikram 1 under Mission Agman is a major milestone in India's journey towards self-reliance in the space sector.
1: Agman, Bharat, our puri team, bahut bahut badhai. Do kaam kiye hai. Ek to aasman mein naye paudhe gaad diye hai aur dusra जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ.
0: Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh also congratulated

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। बहत्तरवीं कौमी फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए ममूती और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को मुश्तरका तौर पर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिए जाने का ऐलान किया गया है। तृणमूल कांग्रेस की जो 20 सरकार ने पार्लियामेंट नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए थे, उन्हें लोकसभा में अलहदा ग्रुप के तौर पर बैठने के लिए स्पीकर की मंजूरी मिल गई है। अहमदाबाद में आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगने से 5 अफराद की मौत हो गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वाक़े पर दुख का इजहार किया है। अब नए हुरमुस के मामले पर अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई में तेजी आ गई है। अहम बुनियादी ढांचे और फौजी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ओलंपिक खेलों में तमगे जीतने वाली मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहीन ग्लासगो में होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों की इफ्तिताही तकरीब में भारत की परचम बरदार खिलाड़ी होंगी। और फीफा वर्ल्ड कप में तीसरे मकाम के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 को 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स में बेहतरीन फिल्म का अवार्ड मिला है। आज शाम नई दिल्ली में कौमी फिल्म अवार्ड्स का ऐलान करते हुए फीचर फिल्म जुमरे की ज्यूरी के चेयरमैन जयराज ने कहा कि ममूती और कार्तिक आर्यन को उनकी फिल्मों ब्रह्मयुगम और चंदू चैंपियन के लिए बेहतरीन अदाकार के जुमरे में कौमी फिल्म अवार्ड मिला है। उन्होंने कहा कि फिल्म 370 में उनकी अदाकारी के लिए यामी गौतम को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया जाएगा। गैर फीचर फिल्म के ज्यूरी के चेयरमैन असीम कुमार सिन्हा ने कहा कि सुमेरा रॉय की हिदायतकारी में भंगार को बेहतरीन गैर फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। बेहतरीन मुख्तसर फिल्म मराठी में हमसफर रही। उन्होंने कहा कि बेहतरीन हिदायतकारी का अवार्ड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए आनंद एल राय को दिया जाएगा। बेहतरीन फिल्म क्रिटिक अवार्ड संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। सिनेमा में बेहतरीन तहरीर के लिए के प्रदीप कुमार शेट्टी को उनकी कन्नड़ किताब के लिए अवार्ड दिया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए बेहतरीन हिदायतकारी का अवार्ड दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सपोर्टिंग रोल के लिए बेहतरीन अदाकार का अवार्ड मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को बेहतरीन मौसीकार का अवार्ड मिलेगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना कथा कादू को बेहतरीन बच्चों की फिल्म का अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। मजमूई तौर पर तफरीह फराहम करने के लिए काल्की 2898 एडी को बेहतरीन फीचर फिल्म करार दिया गया है। दिल्ली से दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने टीएमसी के उन 20 बागी अरकान पार्लियामेंट के लिए ऐवान में अलहदा से बैठने को मंजूरी दे दी है जो नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI में शामिल हुए थे। जनाब बिरला ने शिवसेना UBT के 6 अरकान पार्लियामेंट के महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे की क्यादत वाली शिवसेना में जम किए जाने को भी मंजूरी दे दी है। 6 अरकान पार्लियामेंट के शामिल होने के बाद पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में शिवसेना के अरकान की तादाद 7 से बढ़कर 13 हो गई है। सरकार ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल कल सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की है। ये इजलास पीर से शुरू हो रहा है। कल की मीटिंग के दौरान सरकार दोनों ऐवानों का कामकाज खुशउसलूबी के साथ चलाने के लिए सभी सियासी पार्टियों से तआवुन की अपील करेगी। पार्लियामेंट का मानसून इजलास अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। मिशन आगमन के तहत भारत का पहला निजी तौर पर तैयार करदा मदार में जाने वाला रॉकेट विक्रम-1 इंजन का आखिरी मरहला मुकम्मल करने के बाद और 450 किलोमीटर बुलंद मदार में पेलोड कामयाबी से पहुंचाने के बाद कामयाबी के साथ मदार में दाखिल हो गया है। इस रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में वाक़ सतीश धवन खलाई मरकज से आज 12:05 पर खला में भेजा गया। इस कामयाबी के साथ भारत निजी शोबे के जरिए मदार में रॉकेट लॉन्च करने की सलाहियत हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर स्काई रूट एरोस्पेस को मुबारकबाद दी। उन्होंने फोन पर स्काई रूट की टीम से बात की और इस तारीखी खलाई कामयाबी को सराहा।
2: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो

0: मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इस कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद दी है। गुजरात के शहर अहमदाबाद में रामोल गटराड रोड पर आतिशबाजी का सामान तैयार करने और इसे प्रोसेस करने के यूनिट में जबरदस्त आग लगने से 5 अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आग लगने के इस वाकये में लोगों की अमवात पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मकामी इंतजामिया मुतासरा कारकुनों को हर मुमकिन इमदाद फराहम कर रही है। जनाब मोदी ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से 2-2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी अहमदाबाद में आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री के अलमनाक वाकये पर ताजियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने कहा कि जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलत फराहम की जा रही है। मजीद तफसील हमारी नामा निगार से।
2: आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगने के अलमनाक वाकये के तनाजुर में तेजी के साथ कार्रवाई करने वाली फोर्स के अहलकार फौरी तौर पर वहां पहुंच गए और आग के शोलों में घिरे हुए, मकाम पर फंसे हुए और जख्मी होने वाले कारकुनों को बचाकर बाहर निकाला। हलाक होने वाले कारकुनों की लाशें भी बरामद कर ली गई हैं। जख्मियों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। अहमदाबाद के फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू का दौरा किया। रियासत के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने ताजियत का इजहार करते हुए मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 4-4 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। पुलिस की इब्तदाई छानबीन से मालूम हुआ है कि आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली ये फैक्ट्री गैर कानूनी तौर पर चल रही थी। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
1: आंध्र प्रदेश में पोलावरम जिले के गोला गुडयम गांव के नजदीक 5 माहीगीरों के गोदावरी दरिया में डूबने से मौत हो गई। मालूम हुआ है कि ये माहीगीर मछलियां पकड़ने के लिए दरिया में गए थे कि पानी के तेज बहाव में बह गए। 5 माहीगीरों की लाशें दरिया से बाहर निकाल ली गई हैं। हुक्काम ने बताया कि ये सभी एक ही गांव के रहने वाले थे और इनमें से 3 खवातीन थीं। इस वाकये की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू की गई है। रियासत के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इस वाकये पर दुख का इजहार किया है और सोगवार कुनबों से ताजियत जाहिर की है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल वसीले से रामनगर देहरादून एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया जो रामनगर को देहरादून से मरबूत करने वाली पहली बराह रास्त एक्सप्रेस ट्रेन है। इस नई ट्रेन की शुरुआत से उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल खित्तों के दरमियान रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की खातिर आवाम की देरीना मांग पूरी हो गई है। लोगों से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि रामनगर देहरादून एक्सप्रेस दोनों खित्तों के दरमियान रेल कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करेगी।
3: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के 2 बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
1: शिमाली रेलवे ने जम्मू डिवीजन में कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन बाजाब्ता तौर पर रखने का ऐलान किया है। इसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने बताया कि इस सिलसिले में जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि मस्कूरा स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा जो पहले के कोड KTHU की जगह लेगा। दीगर कोई तब्दीली नहीं की गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

0: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के इस महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में
1: रखे पतवा सर के डोले मनवा की ही में उठत हिलो।
0: स्मृति शेष में नमन फिल्म जगत की कुछ ऐसी हस्तियों को जो इस बीच हमसे बिछड़ गईं। जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशक विजया मेहता।
2: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, सवाल उठाना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
0: जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी। जाने माने फिल्मकार, अभिनेता, गायक और संगीतकार के भाग्यराज। और जाने माने फिल्म निर्देशक, निर्माता, लेखक और अभिनेता भारती राजा।

सबसे पहले संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष हैं। 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म हुआ था। जुलाई का महीना प्रेमचंद की याद का महीना होता है, इसलिए संपादकीय में आज हम चर्चा कर रहे हैं उन फिल्मों की जो प्रेमचंद की कृतियों पर आधारित हैं। प्रेमचंद का लेखन भारतीय समाज, भारतीय ग्रामीण जीवन, किसानों की पीड़ा और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का बाकायदा यथार्थवादी चित्रण करता है। आज भी प्रेमचंद उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं। शायद यही वजह है कि विभिन्न भाषाओं के फिल्मकार अपनी फिल्मों के लिए प्रेमचंद की कृतियों को चुनते रहे हैं। उनकी कृतियों पर बनी फिल्मों की बातें हम आगे करेंगे, पर पहले एक दिलचस्प बात। मुंशी प्रेमचंद स्वयं भी मुंबई सिनेमा जगत से जुड़े रहे थे। असल में हंस और जागरण पत्रिकाओं के संपादन की वजह से उन्हें जो नुकसान हुआ, उसके बाद उन्होंने फिल्मों के लिए लिखने और कमाई करने का मन बनाया था। सन 1934 में आर्थिक तंगी के चलते वे बंबई आए और फिल्म कंपनी अजंता सिनेटोन में लेखक के रूप में काम करने लगे। यहां उन्होंने दो फिल्में लिखी, मिल मजदूर और नवजीवन। अपने समय के विख्यात फिल्मकार नानू भाई वकील ने 1934 में उनके प्रख्यात उपन्यास सेवा सदन पर इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आई थी। उन्हें फिल्म जगत का काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपना अनुबंध तक पूरा नहीं किया और साल भर के अंदर ही बनारस लौट गए। मशहूर तमिल फिल्मकार कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम ने सन 1938 में सेवा सदन पर तमिल भाषा में इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी। हिंदी फिल्म के उलट तमिल फिल्म मूल कृति के प्रति ज्यादा ईमानदार थी। इस फिल्म में प्रसिद्ध गायिका एमएस सुब्बलक्ष्मी ने नायिका सुमन की भूमिका निभाई थी। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि पर इसी नाम की फिल्म बनी सन 1941 में। मुंशी प्रेमचंद भले ही वापस लौट गए हों, लेकिन मुंबई में उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1959 में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा पर कृष्ण चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई, हीरा मोती। इस फिल्म में बलराज साहनी और निरूपा राय मुख्य भूमिकाओं में।

मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति गोदान सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास पर सन 1963 में इसी नाम की फिल्म आई, जिसे त्रिलोक जेटली ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थीं राजकुमार, कामिनी कौशल, शशिकला और महमूद की। इस फिल्म के गाने अनजान ने लिखे और संगीत दिया जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने।

सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी ने प्रेमचंद के उपन्यास गबन पर इसी नाम की फिल्म बनाई थी। कलाकार थे सुनील दत्त, साधना, मीनू मुमताज, लीला मिश्रा और कन्हैया लाल वगैरह। संगीत शंकर जयकिशन का था।

0: बांग्ला के महानतम फिल्मकारों में गिने जाते हैं सत्यजीत रे। उन्होंने पूरे करियर में सिर्फ दो हिंदी फिल्में बनाई और संयोग देखिए कि दोनों ही फिल्में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित थीं। सन 1977 में सत्यजीत रे ने बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये सत्यजीत रे की पहली हिंदी फिल्म थी जो प्रेमचंद की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। इसमें अवध के दो कुलीन मित्रों मीर और मिर्जा की कहानी है, जो शतरंज में इतने डूबे रहते हैं कि अंग्रेजों के हाथों अपने राज्य के पतन की परवाह तक नहीं करते। मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार, सईद जाफरी, अमजद खान और शबाना आजमी वगैरह।
1: प्यादे तो ठीक है जी, तो वजीर और बादशाह भी ठीक है, लेकिन ये पीले घोड़े और रुख में गड़बड़ ना कीजिएगा। तो सुन लीजिए ना, पीला टमाटर, लीमू घोड़ा, मिर्ची रुख।
0: सत्यजीत रे की दूसरी हिंदी फिल्म थी प्रेमचंद की कहानी सतगति पर आधारित इसी नाम की फिल्म। इस फिल्म में ओमपुरी, स्मिता पाटिल और मोहन अगाशे ने अभिनय किया था।
2: विद्या की सगाई कर रहा हूँ महाराज, आप दया करके चले चलते और इसका साहित सघन विचार करें।
3: क्या खड़ा हो गया यार,
4: मैं यहाँ खाली बैठा हूँ कि जब जो जहाँ बुलाए उसी दम चल पड़ो।
0: ये कहानी जातिगत शोषण की एक क्रूर और मार्मिक कथा है। बांग्ला के दिग्गज निर्देशक मृणाल सेन ने प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन को आधार बनाकर 1977 में तेलुगु की एक फिल्म बनाई ओका उरी कथा। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। छोटे पर्दे पर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां खूब लोकप्रिय हुई। दूरदर्शन के सुनहरे दिनों में उनके उपन्यास पर आधारित एक धारावाहिक आया निर्मला, जिसे बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा गुलजार ने दूरदर्शन पर प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियों को लेकर एक धारावाहिक बनाया तहरीर मुंशी प्रेमचंद की। ये सीरियल भी काफी चर्चित रहा। इसके तहत पूस की रात, ईदगाह, ठाकुर का कुआं और नमक का दरोगा जैसी कई कहानियों को छोटे पर्दे पर शिद्दत से पेश किया गया था। भले ही प्रेमचंद को जीते जी बंबई की फिल्मी दुनिया रास नहीं आई, पर कमाल की बात यह है कि उनके जाने के बाद सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे कालजयी फिल्मकारों ने उनकी कहानियों को वो सम्मान और गहराई दी जिसकी वे हकदार थी। मुंशी प्रेमचंद की स्मृति को हमारा नमन। ये था संपादकीय मुंशी प्रेमचंद की कृतियों पर बनी फिल्में। और अब स्मृति शेष। स्मृति शेष। स्मृति शेष में आज हम चार हस्तियों को नमन करने जा रहे हैं जो हमसे बीते दिनों बिछड़ गईं। सबसे पहले नमन करते हैं जानी मानी अभिनेत्री और फिल्मकार विजया मेहता को, जिन्होंने 30 जून को इस असार संसार से विदा ली। बरसों पहले की बात है, तकरीबन 90 का दशक, दूरदर्शन पर एक सीरीज आती थी लाइफलाइन। अस्पतालों के जीवन, डॉक्टरों और इंटर्न्स के जूझने और मरीजों से जुड़े अनुभवों पर केंद्रित था ये धारावाहिक। इसकी निर्देशक थीं विजया मेहता। एक से बढ़कर एक कलाकार थे इस सीरीज में। तन्वी आजमी, के रैना, मोहन जोशी, शफी नामदार, इला अरुण, पंकज कपूर, ए के हंगल जैसी नामी हस्तियों का जुड़ाव था इस धारावाहिक से। विजया मेहता की पहचान सिर्फ लाइफलाइन टीवी सीरियल नहीं है, उन्होंने भारतीय

0: जगत को कुछ कालजयी और बेहद कलात्मक फिल्में दी हैं, पिस्टन जी, राव साहब और हमीदाबाई की कोठी वगैरह। उन्होंने रुपहले पर्दे पर कई बार अभिनय किया, खासतौर पर श्याम बेनेगल की फिल्म कलयुग में। गोविंद निहलानी की फिल्म पार्टी में दमयंती राणे की उनकी भूमिका सबको याद है। उनकी निर्देशित फिल्म राव साहेब सन 1985 में आई थी और जयवंत दलवी के मराठी उपन्यास पर आधारित थी। इसी उपन्यास पर जयवंत दलवी ने बैरिस्टर नाम का एक नाटक भी रचा था। इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। विजया मेहता को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इसी फिल्म के लिए श्याम भूतकर को मिला सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1988 में विजया मेहता ने पिस्टन जी नामक फिल्म बनाई। असल में ये फिल्म मुंबई में 50 और 60 के दशक में मौजूद पारसी समुदाय की कहानी है।
1: तूने जरू की सूरत देखी है, उसकी आवाज सुनी है? 5 वर्ष ने अंदर जरू की क्या हालत बना दी तूने। बच्चा मर गया, पप्पा स्ट्रोक थी बीमार, तू सुख नहीं बात करे। उस औरत ने तेरे को इतना सेल्फिश बना दिया है, पन खुदाए सब देखता है, याद रख जे।
0: इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम का राष्ट्रीय पुरस्कार।
2: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी,
0: जाने माने फिल्मकार और अभिनेता अमोल पालेकर,
2: इसे दिग्गज कहना भी कम होगा। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया, अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, अलग किस्म के सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया। मैं इतना ही कहूंगा कि विजया जी मेरी सीनियर थी, क्योंकि मैं सत्यदेव दुबे ग्रुप से था, उसको राइवल ग्रुप माना जाता था। मेरी और विजया जी की एक बड़ी प्यारी सी दोस्ती थी, एक बहुत अच्छा गहरा रिश्ता था।
0: विजया मेहता को हमारा विनम्र नमन। जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का 4 जून को निधन हो गया। पहलाज निहलानी की कहानी संघर्ष की दास्तान है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1948 को सिंध पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के बाद परिवार सब कुछ छोड़कर आ गया। पहलाज निहलानी का बचपन मुंबई के कोलाबा में बीता। घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पहलाज निहलानी ने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम पकड़ लिए। फिल्मों से बचपन से उन्हें लगाव रहा था। वे कोलाबा की टॉकीजों के बाहर घंटों खड़े रहते। जेब खर्च के लिए वो कभी कभी फिल्मों के टिकट ब्लैक किया करते थे। इसी रास्ते उनकी मुलाकात सिनेमा जगत के कुछ लोगों से हुई और वे फिल्म संसार में बतौर क्लैपर बॉय शामिल हो गए। यहां उन्हें समझ में आया कि अगर अच्छी जिंदगी बितानी है तो फिल्मों से जुड़ा कोई बिजनेस करना होगा। धीरे धीरे पैसे जमा करके उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। वे छोटी फिल्मों के राइट्स खरीदते और उन्हें छोटे थिएटर्स में लगवाते। कुछ ही सालों में पहलाज निहलानी बंबई और गुजरात सर्किट के एक बड़े वितरक बन गए। सन 1982 में उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी शुरू की, चिराग दीप इंटरनेशनल। उनकी पहली फिल्म थी हथकड़ी, साल 1982। कड़ी कामयाब रही और पहलाज निहलानी फिल्म जगत के दिग्गज प्रोड्यूसर्स में शामिल हो गए। सन 1985 के आसपास उन्होंने विरार के एक दुबले पतले लड़के को देखा जो कमाल का डांस करता था। उसका नाम था गोविंदा आहूजा। पहलाज निहलानी ने इस नौजवान को लेकर 1986 में बनाई फिल्म इल्जाम। इस फिल्म ने गोविंदा को सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्में की, 1992 शोला और शबनम, 1993 आंखें।
3: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।
0: पहलाज निहलानी की प्रमुख फिल्में हैं आग ही आग, पाप की दुनिया और अंदाज 1994।
4: किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो।
0: पहलाज निहलानी भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। विनम्र नमन। 27 जून को हमसे विदा हो गए तमिल सिनेमा के जाने माने फिल्मकार, गायक और

संगीतकार के भाग्यराज भारतीय सिनेमा विशेषकर तमिल और हिंदी सिनेमा के इतिहास में के भाग्यराज एक वन मैन आर्मी रहे। एक ही समय में फिल्म के लेखक निर्देशक अभिनेता और संगीतकार सब कुछ एक साथ। मणिरत्नम से लेकर शोमैन राज कपूर तक पटकथा की उनकी जादुई समझ का लोहा मानते थे। जब रजनीकांत और कमल हासन अपनी अपनी स्टाइल से अभिनय की दुनिया पर राज कर रहे थे तब के भाग्यराज एक साधारण सीधे साधे और डरपोक आम आदमी के रूप में तमिल सिनेमा में दर्शकों के दिल में उतर गए। के भाग्यराज का जन्म 7 जनवरी 1993 को तमिलनाडु के इरोड जिले के एक साधारण गांव में हुआ था। भाग्यराज का मन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वे अक्सर स्कूल से भागकर सिनेमा घरों में पाए जाते थे। उनकी इस आदत से परेशान होकर उनके पिता ने एक बार हताश होकर कह दिया था, ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। पिता की ये कड़वी बात उनके दिल को चुभ गई। उन्होंने ठान लिया कि वे फिल्मी दुनिया में नाम कमाकर सबको दिखा देंगे। कॉलेज के दिनों में असफल होने के बाद अपनी जेब में कुछ रुपए और दिमाग में ढेर सारी कहानियां लेकर वे चेन्नई आ गए। यहां भाग्यराज ने कई हफ्तों तक निर्देशकों के दफ्तरों के चक्कर काटे। उन दिनों तमिल सिनेमा में एक नए निर्देशक अपनी यथार्थवादी फिल्मों से धूम मचा रहे थे। नाम था भारती राजा। भाग्यराज जब भारती राजा से काम मांगने गए तो उन्होंने कोई भारी भरकम डायलॉग नहीं सुनाया। उन्होंने भारती राजा को अपने गांव के किरदारों और वहां के लोगों के बात करने के अजीबोगरीब लहजे को इतने मजेदार ढंग से सुनाया कि भारती राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने तुरंत के भाग्यराज को अपना सहायक निर्देशक बना दिया। के भाग्यराज ने भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्म 16 वैथिनीले में बतौर सहायक निर्देशक काम किया। इस फिल्म के कलाकार थे कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया था। 2 सालों के अंदर भाग्यराज ने अपनी काबिलियत साबित की और साल 1979 में फिल्म सुवरिल्लाद सिथिरंगल में बतौर निर्देशक और अभिनेता के रूप में एक शानदार शुरुआत की। ये फिल्म सुपरहिट रही। अस्सी के दशक में भाग्यराज का नाम फिल्म हिट होने की गारंटी बन गया था। उन्होंने तमिल सिनेमा को 2 ऐसी फिल्में दी जो आज भी फिल्म मेकिंग के छात्रों को दिखाई जाती हैं। मौन गीतोंगल सन 1981 में आई ये फिल्म पति पत्नी के अहंकार पर बनी एक परिपक्व फिल्म थी।

सन 1987 में आई अनिल कपूर की फिल्म जुदाई के कई हिस्से इसी फिल्म से प्रेरित थे। सन 1983 में के भागीराज की फिल्म आई मुंथा नई मुदिचू। एक शिक्षक और गांव की शरारती लड़की की इस कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया।

0: उनकी कुछ कामयाब फिल्में हैं चिन्ना बीडू और इधु नम्मा आलू। बहुत कम लोग जानते हैं कि 80 और 90 के दशक की हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्में के भाग्यराज के दिमाग की उपज थीं। अमिताभ बच्चन के डबल रोल वाली फिल्म थी आखिरी रास्ता। ये फिल्म असल में के भाग्यराज की फिल्म ओरू कैथियन डायरी की आधिकारिक रीमेक थी। इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन तीनों की बागडोर खुद के भाग्यराज ने संभाली थी।
1: गो

अनिल कपूर की 1983 में आई फिल्म वो सात दिन असल में के भागीराज की कल्ट तमिल फिल्म अंधा सात नाटकल की हूबहू रीमेक थी।

गोविंदा की फिल्म राजा बाबू के भागीराज की सुपरहिट तमिल फिल्म रासुकुट्टी की रीमेक थी। जितेंद्र की फिल्म मास्टर जी के भागीराज की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुथानई मुदुचू पर आधारित थी। 27 जून 2026 को भारतीय सिनेमा का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। विनम्र नमन।

के भाग्यराज को याद करते हुए हमने जिक्र किया उन्हें पहला मौका देने वाले निर्देशक भारती राजा का। कैसी विडंबना है कि इसी महीने भारती राजा भी हमसे बिछड़ गए। 10 जून को उन्होंने आखिरी सांस ली। भारती राजा भारतीय सिनेमा के उन गिने चुने निर्देशकों में से एक हैं जिन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। महान निर्देशक मणिरत्नम से लेकर पटकथा के जादूगर के भाग्यराज तक बहुत सारी फिल्मी हस्तियां हैं जो भारती राजा को अपनी प्रेरणा मानती रहीं। भारती राजा तमिल सिनेमा के वो क्रांतिकारी फिल्म मेकर हैं जिन्होंने बंद स्टूडियो के शीशों को तोड़कर फिल्मों को गांव की असली मिट्टी, खुली हवा और यथार्थ की खुशबू से सराबोर कर दिया था। 70 के दशक के दक्षिण भारतीय सिनेमा का मतलब था भव्य सेट और स्टूडियो के भीतर पूरी शूटिंग, लेकिन भारती राजा ने आकर तमिल सिनेमा का पूरा भूगोल बदल दिया। भारती राजा का जन्म 17 जुलाई 1941 को तमिलनाडु के थेनी जिले के एक खूबसूरत गांव अल्ली नगरम में हुआ था। उनका असली नाम था चिन्नासामी। गांव के खेतों, तालाबों, लोकगीतों और ग्रामीण संस्कृति ने उनके मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ी। वे अक्सर गांव के लोगों के बर्ताव को बहुत बारीकी से देखते थे। फिल्मों में आने से पहले वे स्वास्थ्य विभाग में एक क्लर्क की नौकरी पर थे, पर उनका दिल थिएटर में धड़कता था। आखिरकार नौकरी छोड़कर वे चेन्नई आ गए। सन 1977 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई 16 वैथिनिले। इस फिल्म ने तमिल सिनेमा के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। जब भारती राजा ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से आउटडोर की तो चेन्नई के कई बड़े स्टूडियो मालिकों ने कहा, ये पागल लड़का पूरी फिल्म खराब कर देगा, आउटडोर में न अच्छी लाइटिंग होती है न आवाज साफ आती है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने इतिहास रच दिया। इस फिल्म में भारती राजा ने कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी को कास्ट किया था।

इस फिल्म में पटकथा के बीताज बादशाह के भाग्यराज उनके सहायक निर्देशक थे। भारती राजा की फिल्में सिर्फ गांव की खूबसूरती नहीं दिखाती, वे गांव में फैली रूढ़िवादिता और जातिवाद पर करारा प्रहार भी करती हैं। किसक के पोगुम रेल 1978 में आई ये फिल्म एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी है, जो अलग अलग गांवों में सामाजिक ताने बाने और रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द घूमती है। 1978 में आई सिगप्पू रोजक्कल, ग्रामीण फिल्मों के उस्ताद भारती राजा ने सबको चौंकाते हुए कमल हासन और श्रीदेवी को लेकर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाई थी। ये फिल्म बहुत कामयाब रही। 1987 में आई वेदम पुदिथु, ये फिल्म जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड पर तीव्र प्रहार करती है। तमिल सिनेमा में इतिहास रचने के बाद भारती राजा

ने हिंदी सिनेमा का रुख किया। 1986 में उन्होंने बनाई सवेरे वाली गाड़ी, ये उनकी तमिल कल्ट फिल्म किसक्के पोगुम रेल का हिंदी रीमेक था। कलाकार थे सनी देओल और पूनम ढिल्लो।

0: सन 1980 में भारती राजा ने अपनी फिल्म सिगप्पू रुज़ाक्कल का हिंदी रीमेक किया रेड रोज के नाम से।
1: हम जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते।
2: पिछले एक हफ्ते से मेरी बहन घर वापस नहीं लौटी।
0: 1984 में आई आज का एमएलए राम अवतार। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शबाना आजमी ने काम किया था। 1983 में आई कुमार गौरव और पद्मिनी कोल्हापुरे के अभिनय वाली फिल्म लवर्स।

1984 में आई कानून क्या करेगा। सितारे थे सुरेश ओबेरॉय और दीप्ति नवल। भारती राजा को 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। 1982 में फिल्म अनाथा रथम के लिए, 1986 में फिल्म मुथल मरियाथाई के लिए, 1988 में फिल्म वेदम पुदिथु के लिए, 1985 में फिल्म करुथम्मा के लिए, 1996 में फिल्म अंथी मंथराई के लिए और साल 2001 में कडाल पुक्कल के लिए। भारत सरकार ने सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें साल 2004 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। विनम्र नमन।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का जुलाई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया है।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है देवव्रत मिश्र का सितार वादन। वाराणसी के प्रतिष्ठित संगीत घराने में जन्मे देवव्रत मिश्र ने अपनी मां प्रमिला मिश्रा से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और अपने पिता पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र के मार्गदर्शन में सितार की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार देवव्रत मिश्र ने ठुमरी परंपरा और बनारस घराने के गायकी की विशिष्ट बारीकियां अपने दादाजी ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्र से सीखी। इस प्रभाव ने उनके सितार वादन को एक अनूठी पहचान दी। सितार वादन की शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट और गोल्ड मेडल के साथ संगीत प्रवीण देवव्रत मिश्र ICCR के सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। उन्होंने भारत और विदेशों में कई प्रतिष्ठित मंचों पर सितार वादन की सफल प्रस्तुतियां दी हैं। इनमें तानसेन संगीत समारोह, संकट मोचन संगीत समारोह, सप्तक संगीत समारोह और अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला प्रमुख हैं। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे कई देशों में अपने सितार वादन से संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया है। देवव्रत मिश्र को नेशनल यूथ फेस्टिवल अवार्ड, स्वरमणि अलंकरण, काशी रत्न संगीत शिखर सम्मान, BHU कौस्तुभ सम्मान, जर्मन बेस्ड जैज क्रिटिक अवार्ड और वर्ल्ड म्यूजिक विजनरी अवार्ड USA से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार प्रशांत मिश्र। देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का आरंभ राग जोग से कर रहे हैं। विलंबित और द्रुतगत 3 ताल में निबद्ध हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक टुनाइट वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाय देवव्रत मिश्रा। Born into distinguished music gharana of Varanasi, Devbrat Mishra received initial music training from his mother Pramila Mishra and underwent formal training in the sitar under the guidance of his father Padmashri Pandit Shivnath Mishra. An A-grade artist of Akashvani, Devbrat Mishra received distinctive lesson of Thumri tradition and vocal style of the Banaras gharana from his grandfather, the great Thumri exponent, Pandit Mahadev Prasad Mishra, an influence that lent a unique identity to his sitar playing. Postgraduate in sitar and Sangeet Praveen with gold medal, Devbrat Mishra is also an empaneled artist of ICCR. He has delivered successful sitar performances on numerous prestigious platforms, both in India and abroad. Notable among these are the Tansen Sangeet Samaro, Sankat Mochan Sangeet Samaro, Saptak Sangeet Samaro, and the International Dhrupad Mela. He has captivated audiences with his sitar recitals in many countries, such as USA, Canada, Spain, France, Italy, and Germany. Devbrat Mishra has been honored with the National Youth Festival Award, Swarmani Alankaran, Kashi Ratna, Sangeet Shikhar, BHU Kaustubh Samman, German Best Jazz Critic Award, and the World Music Visionary Award, USA. In tonight's program, accompanying him on tabla is Prashant Mishra, an A-grade artist of Akashvani. Devbrat Mishra is beginning his sitar recital tonight with Raag Jog, Vilambit and Dhrutgat set to 3 Taal.

0: आप सुन रहे थे राग जोग। देवव्रत मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग गोरख कल्याण में सितार वादन। मध्य लय रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत तीन ताल में है।
1: यू जस्ट हर्ड राग जोग। देवव्रत मिश्रा इज नाउ प्रेजेंटिंग सितार रिसाइटल इन राग गोरख कल्याण। मध्य लय इज सेट टू रूपक ताल एंड द्रुत इज इन तीन ताल।

0: राग गोरख कल्याण के बाद देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का समापन दादरा ताल में निबद्ध राग मिश्र पीलू में धुन से कर रहे हैं।
1: आफ्टर राग गोरख कल्याण, देवव्रत मिश्रा इज कंक्लूडिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विद धुन कंपोज्ड इन राग मिश्र पीलू सेट टू दादरा ताल।

0: ये थी सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र पीलू में धुन। कलाकार थे देवव्रत मिश्र। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आपके साथ तबले पर संगति की प्रशांत मिश्र ने। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर रिकॉर्ड इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: दिस वॉज धुन इन राग मिश्र पीलू प्लेड ऑन सितार बाई देवव्रत मिश्रा। In tonight's national program of music, accompanying him on tabla was Prashant Mishra. Earlier recorded at Akashwani Varanasi, this program came to you from Delhi station of Akashwani.
2: Namaskar. Akashwani Samachar ke saath main Shakti Singh. बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई है। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
3: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती है। सेम सिचुएशन

0: वैली में।
1: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नबीदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर को और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कांडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गाताद्र रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना UBT सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र अडप्पा बीजे अनुष्ठान आज पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे से अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।